एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58.40 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। इस मंगल प्रभात में आप सभी सुनने वालों का हम स्वागत करते हैं।

0: ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 6 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ए के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4

0: सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

कार्यक्रम के आरंभ में आपने सुना समूह स्वर में देशगान। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब सुनिए पंडित गोपाल शर्मा, पंडित सुखदेव शर्मा और साथियों के स्वर में पारंपरिक हनुमान वंदना।

लता मंगेशकर के स्वर में आप सुन रहे थे पारंपरिक रचना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा के स्वर में पारंपरिक भक्ति गीत।

0: शर्मा बंधुओं के स्वर में आप सुन रहे थे काजल फिल्म का ये भजन। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 6:31 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन। आज की कड़ी में आलेख डॉक्टर सुरेश खरे का है।
1: गांधी जी की नोआखाली यात्रा से हम सभी परिचित हैं। बड़ी कठिन थी वह यात्रा। रास्ते के गांव खून और लाशों से फटे थे। गांधी जी के साथ एक युवती चल रही थी जो उनकी सेवा में रत थी। एक गांव से पड़ाव दूसरे गांव की ओर चला और पहुंचा। गांधी जी स्नान करने बैठे तो देखा कि जिस पत्थर से वे हाथ पैर घिसते थे वह नहीं है, वह पहले पड़ाव के गांव में छूट गया है। गांधी जी ने उस लड़की को बुलाया और पूछा कि यह बात कैसे हुई। वह लड़की भौंचक्की रह गई। वह पश्चाताप करने लगी और कहा कि बापू, मुझसे भूल हो गई है। गांधी जी ने उससे कहा कि तुम वापस जाओ और पत्थर लेकर आओ, क्योंकि गांधी जी कभी भूल नहीं करते थे, इसलिए वे किसी की भूल भी बर्दाश्त नहीं करते थे। लड़की गांव वापस गई। विचार कीजिए, नोआखली में चारों तरफ आग जल रही है, लाशें बिछी हैं और वह अकेली लड़की रोती घबराती वापस गांव गई और पुनः लौटी। उस पत्थर में ऐसा क्या था? वैसे 50 पत्थर उसी गांव से उठाए जा सकते थे, किंतु बापू ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। क्यों? उस पत्थर में था अनुशासन, उस पत्थर में था नियम, उस पत्थर में थी दृढ़ता। जो अपने पर पक्का अनुशासन रखता है वह दूसरों पर भी कर सकता है। किंतु आप कहेंगे कि यह भी कोई बात हुई, आदमी भूल सकता है, भूलना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, और कोई बड़ा हीरा तो नहीं भूला गया था, सिर्फ एक पत्थर ही तो था जो कहीं से भी फिर से उठाया जा सकता था। किंतु सवाल पत्थर का नहीं था, सवाल था नियम का, सवाल था दृढ़ता का। नियम का पालन होना चाहिए। यदि हम नियम, अनुशासन, सेवा, मर्यादा आदि की बातें मानने वालों के पास जाकर देखें तो एक दूसरा पहलू भी शीघ्र दिखाई देता है।

0: जितने दृढ़ वे अपने पर होते हैं उससे किसी अर्थ में कम दृढ़ता दूसरों पर नहीं होती, अर्थात वे अन्यों पर भी उतने ही दृढ़ होते हैं जितना स्वयं पर। अनुशासन जीवन और जगत की सफलता की कुंजी है। यदि हमारा अध्ययन, अध्यापन, खान पान, रहन सहन, आहार व्यवहार अनुशासित नहीं है तो हम सामाजिक जीवन में अनुशासित नहीं रह सकते। क्षेत्रीय समस्याएं, भाषावाद, उग्रवाद, हड़ताल, तोड़फोड़, महंगाई के साथ मिलावट, भ्रष्टाचार का पूरा जोर और दौर, नशेबाजी जैसे दुर्व्यसन, दहेज जैसे कुप्रचंड का तेजी से प्रसार आदि समस्याएं आज यदि किसी की मांग कर रही हैं तो सिर्फ अनुशासन की मांग कर रही हैं। प्रत्येक देश व समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं जिन पर चलना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है, किंतु देखा यह जा रहा है कि अनुशासन जैसी कोई चीज ही नहीं रह गई है। सभी अपने को स्वतंत्र समझकर अमर्यादित होते चले जा रहे हैं, उद्दंडता और उच्छृंखलता की परिधि में डूबे चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमने स्वतंत्रता का गलत अर्थ समझ लिया है। आज ऐसी आशंका होने लगी है कि धीरे धीरे अनुशासन जैसे शब्द और वस्तु दोनों ही कहीं समाप्त ना हो जाएं।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुरेश खरे का लिखा आलेख। FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बालाघाट है। इस वक्त सुबह के 6:35 और 52 सेकेंड्स हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर महेंद्र कपूर का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के लिए संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरित मानस गान। आज की कड़ी में मुख्य गायक स्वर था महेंद्र कपूर का, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:46 और 35 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी सुबह 6:50 पर आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सुबह 7:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट प्रसारित किया जाएगा। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक मुलाकात। आज इस क्रम में हम आपसे मुलाकात करवाएंगे समाज सेवी कमलजीत सिंह छाबड़ा की बातचीत। सुबह 8:30 पर समन्वित नाटक का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी भोपाल से करेंगे। सुबह 9:00 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। पत्रिका कार्यक्रम जिले की चिट्ठी सुबह 10:00 प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। कार्यक्रम आपकी पसंद में, प्रसारण समय सुबह 10:05। सुबह 11:00 से दोपहर 2:10 तक विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी मुंबई से करेंगे। हमारी दोपहर की सभा में दोपहर 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किए जाएंगे। दोपहर 2:15 पर राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। दोपहर 2:30 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से करेंगे। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारी आज की दोपहर की सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की और अब एक नज़र हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के प्रमुख कार्यक्रमों पर। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में शाम 5:00 युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युववाणी प्रसारित किया जाएगा। शाम 5:30 पर हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। शाम 6:00 का समय निर्धारित है हमारे दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट के लिए। शाम 6:30 पर हमारे स्टूडियो से सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे। चौपाल कृषि सामयिकी पर केंद्रित यह कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। कुछ खेती किसानी की बातें होंगी, कार्यक्रम होगा किसानवाणी, प्रसारण समय शाम 7:30। रात्रि 8:00 हमारे स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:30 का समय होगा पॉप म्यूजिक के कार्यक्रम का। रात्रि 9:00 से रात्रि 9:30 से विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से करेंगे। ये थी जानकारी

हमारी आज की सांध्यकालीन प्रसारण सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। एफएम बैंड पर यह प्रसारण है आकाशवाणी बालाघाट का। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में जीवन मृत्यु फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। यादों की बारात, आइए इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में। आवाज़ें इस गीत में आप सुनेंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह का लिखा हुआ यह गीत है।

सदाबहार फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में लीजिए अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अजनबी फिल्म का गीत। आर डी बर्मन के संगीत से सजा हुआ यह गीत है और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

सदाबहार फिल्म गीतों के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ों में कारवां फिल्म के गीत से। आर डी बर्मन का संगीत, मजरूह के बोल।

0: कारवां फिल्म के इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 7:10 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी भोपाल से।
1: साकार हुआ सपना।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, इंदौर में करेंगे बीएलओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और प्रदेश में देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, शहडोल और शाजापुर सहित कई जिलों में बदले गए एसपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजी सेमी OSAT सेमी कंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे, जो 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे तीनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को जल भंडारों की निगरानी और विद्युत मंत्रालय को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के सहयोग से प्रदेश एक ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य बनेगा। KfW बैंक ने बताया कि एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए करीब 1120 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंक ने फेज 2 के तहत विद्युत वितरण अधोसंरचना के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग में भी रुचि दिखाई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला प्रदेश का दौरा है। पहले दिन वे इंदौर में लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 5 जिलों के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 9 IPS

अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का नया एसपी बनाया गया है। सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में भी नए आईजी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मिथिलेश शुक्ला को सागर रेंज और चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम जोन का आईजी बनाया गया है। वहीं रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक 2 ट्रिलियन डॉलर निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जहाँ 26,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। मंत्री ने इंदौर में टेक्सटाइल टेस्टिंग फैसिलिटी और जबलपुर रीवा में नए आईसीडी स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 13 स्थानों पर करीब 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारम्भ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालय पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदी की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, इस दौरान वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे 16 ग्रामीणों को पुलिस, एसडीआरएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त अभियान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम भानपुर में खेत में गए ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर गए थे। समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि इंदौर, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस ने कल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदसौर पुलिस SP विनोद कुमार मीणा ने भी कल साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक ऐप में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा नियम विरुद्ध अटेंडेंस लगाने की गड़बड़ी पाए जाने पर CMHO भोपाल ने कार्रवाई की है। आगर मालवा जिले में आयोजित रोजगार मेले में 62 शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत सतना जिले के 262 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन कल हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना की गई। शिवपुरी जिले के कोलारस पेट सनवारा में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवैध जुताई में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और 2 कल्टीवेटर जब्त कर संबंधित पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। देवास के सिवनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में घायल हुए नरबाघ युवराज का भोपाल के वन विहार रेस्क्यू सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। जांच में बाघ के आगे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया है, जिस पर 6 टाके लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ये प्रसारण है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का और श्रोताओं आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वेव्स पर भी हम सुने जा सकते हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट।
1: नमस्कार बालाघाट।

नमस्कार बालाघाट के दिनांक 4 जुलाई 2026 के इस अंक के साथ आज मैं विनय श्रीवास्तव सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार।

हर रोज की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत सुविचार से कर रहे हैं। आज का सुविचार कहता है, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। श्रोताओं, इस एक लाइन के विचार में बहुत सी बातें कह दी। जब हम कोई भी अच्छा काम अच्छे मन से शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए इस विचार के अनुसार सारे समय अच्छे हैं, कोई भी समय बुरा नहीं है। लेकिन अक्सर होता इसका उलट है। जब हम अपनी व्यवहारिक जिंदगी में देखते हैं तो किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए अमूमन हम मुहूर्त देखना शुरू करते हैं। अच्छा मुहूर्त कब है, अच्छा दिन कब है, उसका चौघड़िया क्या है, किस तरह से ये काम होगा, कौन सा दिन शुभ होगा, ये सारी बातें। अब जो व्यक्ति इन बातों को मानता है उसके लिए तो हम कोई बात नहीं कहेंगे, लेकिन जब इस विचार पर चिंतन करते हैं तो बात सामने आती है कि कोई भी यदि अच्छा काम आप अच्छे मन से करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे समय अच्छे हैं, कोई भी समय बुरा नहीं है। अब हर जगह इस बात को लेकर अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं और उनकी मान्यताओं के, उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जब चिंतन करते हैं श्रोताओं इस विचार पर, तो एक बात और इससे जुड़ जाती है। वो कहते हैं ना कि शुभम शीघ्रम, यानी कोई भी शुभ कार्य को शीघ्रता से कर लेना चाहिए, उसके लिए व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, हर कार्य करने का अपना एक समय मुकर्रर है, लेकिन अच्छा काम यदि है और अच्छे मन से किया जा रहा है तो उसके लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। यही आज का ये विचार भी कह रहा है। और श्रोताओं, जब हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो अक्सर ये बात सुनने को भी मिलती है और हमें पढ़ने भी मिलती है कि नेकी और पूछ, यानी नेकी करना के लिए आपको पूछने की जरूरत, समय देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम यदि नेकी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। सारे दिन शुभ हैं, हर दिन शुभ है, हर समय आपका अपना है। और जब हम इस बात पर अमल करते हैं तो देखिए कि कहीं ना कहीं आप औरों से कहीं आगे निकल जाते हैं। और हम यदि यही सोचते रह जाएं

कि नहीं भाई ये काम तो अच्छा है लेकिन इसे हम कल करेंगे, उस दिन करेंगे, फलां दिन करेंगे, इस दिन हमारा शुभ होगा, तो कहीं ना कहीं आप समय से पीछे रह जाते हैं और उतने दिन आपके जाया चले जाते हैं। तो चलिए हम तो यही कहेंगे कि कोई भी अच्छा काम जो आप अपने अच्छे दिल से कर रहे हैं, अच्छे मन से कर रहे हैं, उसके लिए शुरुआत आज से कर दीजिए और उस शुरुआत के लिए हर समय आपका अपना है और कोई समय बुरा नहीं है। ये था आज का सुविचार जो हमसे कह रहा था किसी भी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। और फिर कहते भी हैं कि शुभम शीघ्रम, तो चलिए हम भी शुभ कार्य में देरी नहीं करते और हम जानते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सूचना और शिक्षा के अलावा, बातों और जानकारियों के अलावा आप मनोरंजन पसंद करते हैं। तो चलिए हम भी अच्छे काम की शुरुआत कर रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का पहला गीत और अमल करते हैं इस विचार पर और कहते हैं शुभम शीघ्रम।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में ले रहे हैं अब एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपसे साझा करेंगे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
2: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
2: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
3: मानसून धमाका।
4: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
5: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
4: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेंट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
5: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में, मेन रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
0: ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर लेकर आया है एक खास योजना आपके लिए।
6: अपने घर, दफ्तर और कंपनी की छत पर सोलर पैनल लगाएं
0: और ग्रीन एनर्जी पाएं
6: 30 साल तक की वारंटी के साथ, घर बैठे बेहद कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा।
0: जिले का एकमात्र MNRE दिल्ली अवार्डेड सोलर हाउस,
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाएं
0: और चले आए ड्रीम सोलर ग्रीन फ्यूचर, काली पुतली चौक, मार्केटिंग सोसाइटी के ऊपर, बालाघाट। संपर्क करें इंजीनियर पंकज रणगिरे,
6: मोबाइल नंबर 8770854830।
0: श्रोताओं, हम हाजिर हैं अपने वादे के मुताबिक अंतराल के बाद आपसे आज की तारीख से जुड़ा हुआ इतिहास साझा करने के लिए। आज की तारीख 4 जुलाई और इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें श्रोताओं, क्या कुछ खास है आज की तारीख का इतिहास। अव्वल नजर डाली जाए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर, तो श्रोताओं आज 4 जुलाई को अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज की तारीख में 1776 में अमेरिका को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी, यानी आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है। आगे बढ़े श्रोताओं, तो 4 जुलाई 1946 में अमेरिकी कब्जे से मुक्त होकर फिलीपींस स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो यानी आज फिलीपींस भी अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1904 में आज की तारीख में पनामा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। 1997 में आज ही की तारीख में

अमेरिकी यान पाथफाइंडर मंगल की सतह पर उतरा था। 1892 में आज ही की तारीख 4 जुलाई में दुनिया की पहली डबल डेकर स्ट्रीट कार कैलिफोर्निया के सान डिएगो में चलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के बाद श्रोताओं अब राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं पर नजर डालें तो 4 जुलाई 1881 में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच पहली टॉय ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी। 1902 में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हुआ था। आज महान दार्शनिक और भारत के सपूत स्वामी विवेकानंद जी की हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। 1991 में आज ही की तारीख में सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय मिसाइल पृथ्वी का चौथा परीक्षण सफल रहा था। 1997 में आज ही की तारीख में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 9 कंपनियों को स्वायत्तता प्रदान करते हुए उन्हें 9 रत्न कंपनियों का दर्जा दिया था। आगे बढ़े श्रोताओं राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में तो 1999 में आज ही की तारीख यानी 4 जुलाई में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने 11 घंटे के संघर्ष के बाद 16,500 फीट ऊंची चोटी टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा कर लिया था। 4 जुलाई 1999 में आज की तारीख में लियंडर पेस और महेश भूपति की भारतीय टेनिस जोड़ी ने अपना पहला विंबलडन टेनिस का युगल खिताब जीता था। श्रोताओं ये राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज थी और अब इतिहास के पन्नों से बाहर निकला जाए और आज के दिवस की बात कर ली जाए तो श्रोताओं आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस और इसके साथ ही विश्व विटिलिंगो दिवस मनाया जा रहा है जो कि त्वचा संबंधी विटिलिंगो बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। श्रोताओं ये बातें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की थी और आज के दिवस की हमने भी बात कर ली और अब आज के दिन की बात कर ली जाए तो श्रोताओं आज है दिन शनिवार और हमारे फुटबॉल प्रेमियों को इंतजार होगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो चल रहा है अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में आज के कौन कौन से मैचेस हैं। तो चलिए हम उनको बताते हैं फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के आज के मैचेस।

तो श्रोताओं, आज यानी 4 जुलाई के जो मैचेस हैं होने हैं, अर्जेंटीना और कॉब वेरेड के बीच एक मुकाबला आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कोलंबिया और घाना के बीच आज भिड़ंत होगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए। वहीं कनाडा और मोरक्को आमने सामने होंगे आज की तारीख में। इन मैचों को, फुटबॉल के मैचेस को, हमारे जो फुटबॉल प्रेमी श्रोता हैं वो दूरदर्शन के स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। और अब बात की जाए क्रिकेट की, जो कि इंग्लैंड में, भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच और T20 मैचों की श्रृंखला हो रही है। आज पहला मैच होना है भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच। T20 का पहला मैच है और ये शाम 7 बजे से इंग्लैंड में होगा। तो चलिए, हमारे क्रिकेट प्रेमी श्रोता और फुटबॉल प्रेमी श्रोताओं दोनों के लिए हमने आज के मैचेस बता दिए। ये थी इतिहास के पन्नों की बातें और आज की बातें।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत का अंदाज कुछ ऐसा है जो अब हम आपको सुनवा रहे हैं। आंखों को पढ़ने का हुनर आना चाहिए। गौर कीजिएगा, आंखों को पढ़ने का हुनर आना चाहिए। हर कोई अपने गमों को

श्रोताओं कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं रोजगार सूचना। भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग कॉरपोरेट केंद्र मुंबई द्वारा बताए जा रहे रिक्त पदों के लिए योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण और पात्रता संबंधी शर्तें इस प्रकार से हैं। पदनाम परिवीक्षाधीन अधिकारी, कुल रिक्त पदों की संख्या है 1500। इन पदों में अनुसूचित जाति वर्ग से 216, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 108, ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार से 144 और सामान्य वर्ग से 588 पद भरे जाने हैं। बकाया रिक्तियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग से 18, अनुसूचित जनजाति वर्ग से 36 रिक्तियां शामिल हैं।

इस प्रकार कुल रिक्त पदों की संख्या है 1500। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो। स्नातक अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी इस स्थिति में इस परीक्षाधीन पद के लिए आवेदन कर सकते हैं कि वे साक्षात्कार के पूर्व अपनी उत्तीर्ण परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकें। इस पद के लिए आयु सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार होगी। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाने हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट का पता है www.sbi.bank.in/careers/current-openings। ये अधिकृत वेबसाइट है जिस पर जाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र भर सकते हैं। वेबसाइट का पता एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं www.sbi.bank.in/careers/current-openings। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि

0: ये अधिकृत वेबसाइट है जिस पर जाकर योग्य उम्मीदवार आवेदन पत्र भर सकते हैं। वेबसाइट का पता एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं, www.sbi.bank.in/careers/current-openings। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। हम अपने योग्य उम्मीदवारों को बता दें कि परीक्षाधीन अधिकारी पद के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करेगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि अगस्त में और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर में होगी। वहीं साक्षात्कार चयनित जो उम्मीदवार होंगे जिन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की होगी उनका साक्षात्कार अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित है। चलिए वेबसाइट का पता एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं, www.sbi.bank.in/careers/current-openings। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। श्रोताओं, ये थी रोजगार सूचना। श्रोताओं, नमस्कार। बालाघाट कार्यक्रम का शेष भाग एक छोटे से अंतराल के बाद, बने रहिए हमारे साथ।
1: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लाल बर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
2: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी। चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
2: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबरा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बालाघाट का लोकप्रिय FM चैनल 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, आज विनय श्रीवास्तव के साथ।

सारा शहर देख लिया, सारा शहर काफी न था। कार्यक्रम के अगले गीत का अंदाज श्रोताओं को ऐसा है, सारा शहर देख लिया पर सारा शहर काफी न था, जब तेरी आंखों में देखा तो और कुछ बाकी न था।

किसान साथियों, अब कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं आज की कृषि सलाह। आज की कृषि सलाह हमारे किसान साथियों के लिए यही है कि देखिए, खरीफ का मौसम है और ऐसे मौसम में हमारे बहुत से किसान साथियों ने खार भर दी है और खार भरने के बाद वे निश्चिंत होकर बैठ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बार खार का मुआयना कर लें कि आपकी नर्सरी में किसी तरह का खरपतवार तो नहीं आ रहा है, उसके नियंत्रण के लिए आपको उपाय इस वक्त कर लेना चाहिए। भूमि के कटाव को रोकने के लिए लेमन ग्रास खेतों में लगाई जा सकती है। वहीं उद्यानिकी फसलों की हम बात करें किसान साथियों, तो आम, अमरूद, अनार, नींबू आदि पौधों के लिए पौधे तैयार करने का ये वक्त है। तैयार गड्ढों में फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। आंवला में कलिकायन का कार्य इन दिनों किया जा सकता है। फलों के पौधों में खाद और उर्वरक को पौधे की उम्र के हिसाब से डालना उचित होगा। अमरूद के पौधों में तना छेदक एवं फल सड़न की रोकथाम करने का उपाय इन दोनों करना चाहिए। टमाटर, बैंगन, मिर्च और अगेती फूलगोभी की पौध की खेती में रोपाई कर हल्की सिंचाई करने का यह वक्त है। वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करें किसान साथियों, तो कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेत के प्रारंभिक अवस्था में उर्वरक डालकर बुवाई करने का यह अनुकूल समय है। वहीं किसान साथियों, सब्जियों में कीट और रोग के रोकथाम के लिए उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों का इंतजाम करने का भी ये उपयुक्त वक्त है। हमारे पशुपालक किसान साथियों के लिए हम कृषि सलाह ये देंगे कि

परजीवियों में सीसीपीसी का टीका लगवाएं और परजीवियों से बचाव के लिए एल्बेंडाजोल की 3 ग्राम दवा इस वक्त दी जा सकती है। हरे चारे की उपयुक्त व्यवस्था के लिए पशुओं के लिए ज्वार, मक्का और लोबिया बोया जा सकता है। ये थी उपयोगी कृषि सलाह।

नमस्कार, मैं हूँ सुदेश भोसले और श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए।

0: नमस्कार बालाघाट।
1: श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट, प्रस्तुति कुंवर विक्रम सिंह की थी। सुबह के 8 बज रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन समाचार प्रभात, जिसका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में

0: अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना MSME, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में CG सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक CG सेमी औसत सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते ATS ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात ATS ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का

0: आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मुसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है।

0: ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा कर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन, टैंक, मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में मियामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है और आप हमें सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, इसके अलावा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है क्रम एक मुलाकात। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं समाज सेवी एवं ड्रीम सोंडा बालाघाट के डायरेक्टर कमलजीत सिंह छाबड़ा से शालू गांधी की ली गई बातचीत।

0: छाबड़ा जी से, जिन्हें हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो कमल जीत जी, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार जी।
0: आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: सर्वप्रथम सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कमलजीत सिंह छाबड़ा है। मेरा जन्म बालाघाट जिले में ही हुआ। मेरी स्कूली शिक्षा जो है वो बालाघाट इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय बालाघाट से पूरा किया। आफ्टर माई ग्रेजुएशन सन 2003 में मैंने होंडा का ऑथराइज सर्विस सेंटर जो है बालाघाट जिले में स्टार्ट किया एज ए बिजनेसमैन, और सन 2012 में पूरी अपनी टीम के साथ मिलकर मैंने बालाघाट जिले के अंदर में एक भव्य शोरूम अधिकृत विक्रेता के रूप में जापान की जो कंपनी होंडा उसका मैंने यहाँ पर शुरुआत की, और आज लगभग 11 नेटवर्क्स पूरे जिले में मेरे पास में हर तहसील में उपलब्ध हैं, और ऑलमोस्ट 50,000 कस्टमर्स को हम लोग ने होंडा की गाड़ी यहाँ पर बेची हुई है बालाघाट जिले में।
0: क्या बात है, मतलब हम कह सकते हैं कि आप एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे हैं बालाघाट में।
1: मैं ये जरूर कहूंगा कि शुरुआत तो बहुत छोटी थी
0: जी।
1: सपने बड़े थे, और उन सपनों को साकार करने के लिए अच्छी टीम का गठन करना और आपका विजन जो है पॉजिटिव बहुत होना जरूरी है
0: जी।
1: और उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ कि आज लगभग 50,000 गाड़ियाँ हमने अपने बालाघाट जिले में बेची हुई हैं।
0: अच्छा, तो सर आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: श्री कुलदीप सिंह छाबड़ा जी जो कि मेरे पिताजी
0: जी।
1: मेरी माता जी श्रीमती दिलीप कौर छाबड़ा हैं, जो कि काफी धार्मिक हैं और बालाघाट गुरुद्वारे के हर कार्यक्रम में वो हमेशा शामिल रहती हैं। मेरी धर्मपत्नी, मेरी अर्धांगिनी, आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ उनका विशेष सहयोग हमेशा मेरे जीवन में रहा है, जसबीर कौर, प्यार से लोग उसको रोजी छाबड़ा बोलते हैं
0: जी।
1: साथ ही मेरे दो बच्चे भी हैं, मेरी बड़ी बिटिया जो है अमनप्रीत, उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है मुंबई से।
0: अच्छा।
1: और अभी एक फैशन डिजाइनर के रूप में वो वहाँ पर जॉब करती है। साथ ही मेरा जो बेटा है अभी वो सेकेंड ईयर में है, वो बैचलर्स कर रहा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर में।
0: अच्छा।
1: और परिवार में मेरा छोटा भाई है जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए बलजीत छाबड़ा, जो बालाघाट में ही प्रैक्टिस करते हैं सीए की
0: जी।
1: उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो कि बिलासपुर में ब्याही है, रुपिंदर कौर छाबड़ा, जो कि एजुकेशनिस्ट है, वो भी एक अच्छा स्कूल वहां पर रन करती है।
0: अच्छा।
1: और जो छोटी सिस्टर है तरबजीत कौर, वो अभी आज की तारीख में हैदराबाद में है, तो मेहनत से वो भी आज जो है एक आईटी कंपनी की ओनर है और काफी अच्छा कर रही है।
0: क्या बात है, मतलब बड़ों के मार्गदर्शन में पूरे परिवार में सब लोग आगे बढ़ते जा रहे जीवन में, हम कह सकते हैं।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा शालू जी आपने कि मुख्य बिंदु यह है कि बड़ों का ही मार्गदर्शन रहता है आपको जीवन में, उनका आशीर्वाद रहता है। क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो ये बात जरूर कि जो भी मैंने जीवन से सीखा है
0: जी।
1: वो मैंने कोशिश की है अपने भाई बहन को देने के लिए और अपने बच्चों को देने के लिए कि कैसे अगर आप प्रयास करते हैं तो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं
0: जी। तो ये तो रही कमल जी जी बात आपकी फैमिली बैकग्राउंड की, और हमने देखा है कि आप बालाघाट जिले में विगत कई वर्षों से निरंतर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और लोगों की मदद को आगे आते रहे हैं। तो ये प्रेरणा जो थी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट आपको मिला?
1: सामाजिक कार्यों में रुचि आना या किसी की मदद करने के लिए आगे आना, मैं स्कूल लाइफ से ही अपने जो मेरे फूफा जी थे आदरणीय सरदार रवेल सिंह गांधी जी, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा हूँ अपने स्कूल टाइम से लेके जब मैं कैरियर में अपने आगे बढ़ रहा था। क्योंकि मैं देखता था अपने अंकल जी को कि वो काफी एक्टिव थे बालाघाट के अंदर में।
0: अच्छा।
1: हर सामाजिक कार्य में, भला वो खेल हो, भला वो किसी की हेल्प करना हो, कोई भी मेडिकल कैंप लग रहा हो, हर जगह आदरणीय रवेल सिंह गांधी जी उपस्थित रहते थे और लोगों की मदद करते थे। अभी तो वो नहीं है इस दुनिया में
0: जी।
1: तो मेरे मन में भी भाव आया कि क्यों ना जब मैं इस लायक बन जाऊं कि मैं कुछ पैसा कमा सकूं और समाज को वापस कुछ दे सकूं, इस सोच के साथ में मैंने उनकी चीजों को फॉलो किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर परिवार अगर आपका साथ नहीं देगा तो आप कोई भी सामाजिक काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको समय भी देना पड़ता है कोई भी सामाजिक काम करने के लिए।
0: सही कहा।
1: मैं काफी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं आज की तारीख में, तो उनके माध्यम से ही मैं जो है ये समाज सेवा कर पा रहा हूं।
0: जी, तो किन संस्थाओं से आप खास तौर पर जुड़े हुए हैं, हम जानना चाहेंगे आपसे।
1: मैंने शुरुआत तो 2004 में मैं रोटरी क्लब का सदस्य बना।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में पंख संस्था मेरे जीवन के अंदर आई, काफी साहित्य संस्थाएं बालाघाट की जिनके साथ में जुड़ा मैं। उसके बाद में मुल्ला खेल समिति करके यहाँ पर काफी बड़ा परिसर है खेल मैदान का
0: जी,
1: उसके साथ में जुड़ा हुआ हूँ उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर में।
0: अच्छा।
1: वेनगा क्लब करके यहाँ पर टेनिस ग्राउंड है जो कि मुझे टेनिस खेलने का काफी शौक है
0: जी।
1: तो वहां का भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर रहा।
0: अच्छा।
1: और अभी हाल ही में मैं काफी टाइम से कदम संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर मुख्य बिंदु है प्लांटेशन का, जितना हरियाली बालाघाट में उन्होंने क्रिएट की है या पूरे हिंदुस्तान में कह लो आज की तारीख में, बहुत ही गर्व महसूस होता है उस संस्था से जुड़ के कि मैं कैसे सृष्टि को

0: मेरी तरफ से क्या योगदान दे रहा हूँ प्लांट लगा के, ये बहुत ही बड़ी बात है। और लगातार मैं देखता हूँ कदम संस्था की पूरी टीम जो है वो हर हफ्ते विशेषकर संडे को प्लांटेशन करते हैं। तो ये सब ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि हम जुड़ के समाज को क्या वापस लौटा रहे हैं जो हमारा दायित्व है।
1: मतलब क्या आप हर क्षेत्र में हर संस्था के साथ जुड़ करके कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य से लगे हुए हैं, और उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है आपकी रोटरी क्लब ऑफ रॉयल, तो इसके उद्देश्य के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, इसकी कार्यशैली क्या है और किस तरह ये पीड़ित मानवता की रक्षा कर रही है।
0: रोटरी, जैसे मैंने बताया आपको कि एक बहुत ही बड़ा दायरा है समाज सेवा का और एक इंटरनेशनल संस्था है, लगभग 212 देशों में ये संस्था जो है इसके मेंबर्स क्लब्स काम कर रहे हैं।
1: अच्छा,
0: उन्हीं में से एक क्लब है रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट रॉयल। हमने नाम भी रॉयल इसलिए रखा कि इसमें सभी मेंबर्स जो हमारे हैं सदस्य कह दीजिए कि उनका बोलते ना कि जिसका दिल बड़ा तो वो काम करने में भी और दान देने में भी आगे रहता है। तो हमारे सब क्लब के मेंबर्स में बिल्कुल रॉयल हैं। और हमने जब क्लब की शुरुआत की थी आज से 3 साल पूर्व, तो चार्टर डे के दिन ही हमने बालाघाट को एक आधुनिक एसी एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई थी, जिसका उस समय अनावरण जो है माननीय कलेक्टर साहब ने किया था। और साथ ही हमने मेडिकल कैंप लगाया 2-3 बार बालाघाट के तहसील प्लेसेस के अंदर में।
1: अच्छा,
0: रिसेंटली हम लोगों ने एक इंटरनेशनल रैला प्रोग्राम किया जो कि बच्चों के लिए विशेष होता है, 13 साल से 25 साल के बच्चों के लिए, जो कि गाना में कंडक्ट किया। और ये ऐतिहासिक हमारा एक पहल थी। मैं बताना चाहूंगा बालाघाट के पूरे श्रोताओं को यहाँ पर कि इस रैला प्रोग्राम के अंदर में बच्चे जो आते हैं वो विभिन्न शहरों से आते हैं देश के, और विभिन्न देशों से भी आते हैं।
1: अच्छा,
0: लगभग 10 देशों के बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका,
1: मतलब विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर आए।
0: जी जी,
1: क्या बात।
0: तो ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल था रोटरी क्लब बालाघाट रॉयल के लिए। हमारे अध्यक्ष संदीप असाटी, साथ में उनके सचिव जो है आशीष साहू जी, और हमारे एक्टिव मेंबर कह लीजिए हमारे ट्रेजरर क्लब के राजेश गांधी जी, इन सबका विशेष सहयोग मार्गदर्शन मिलता क्लब को, तब जाके क्लब जो है ऐसे चीजें कर पाता है। रिसेंटली हमने जो बताया आपको एम्बुलेंस के साथ साथ में हम लोगों ने एक अभी हेल्पिंग हैंड के नाम से एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसके अंदर में पोस्ट सर्जरी जो मेडिकल इक्विपमेंट लगते हैं, बेड हो गया, बैसाखी हो गई, व्हीलचेयर हो गया, ये हम लोग सिर्फ नाम मात्र 2-4 रुपए ऐसा हम लोगों ने इसका चार्ज रखा है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि फ्री में दे दिया गया है करके। तो उसके लिए हमने ये प्रोजेक्ट चालू किया है और काफी अच्छा हमको इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। ये भी इस साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं।
1: क्या बात।
0: और पिछले 2-3 साल से हम लगातार गर्मियों के मौसम में, आपने देखा होगा बालाघाट के जो मेन चौक है शहर के
1: जी,
0: वहां पर प्याऊ की व्यवस्था भी हम लोग निरंतर कर रहे हैं, जो कि ऐसा प्याऊ है जहां पर हम लोग केन के माध्यम से पानी सर्व करते हैं, ना कि मटके में। बहुत हाइजीन और बहुत ठंडा पानी लगातार दिन में 3-4 बार उसके अंदर में रिफिल होता है, जिसके लिए हमको माननीय कलेक्टर साहब और एसडीएम सर ने बहुत अप्रिशिएट किया कि अकेला ये ऐसी संस्था है जो पिछले 3 साल से लगातार पानी की सेवा कर रही है।
1: क्या बात। ये तो ही सामाजिक संस्थाओं से आपके जुड़ने की बात। हम आपके हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या शौक रखते हैं आप।
0: जब मैं स्कूल में था तब तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था।
1: अच्छा।
0: मैंने लगभग 3-4 साल अपने बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल के ऊपर में क्रिकेट में।
1: क्या बात है।
0: और जब मुझे मौका मिला मैंने क्रिकेट खेला, उसके बाद में पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाया ग्रेजुएशन के अंदर में। उसके बाद जब मैं पढ़ लिख के एक बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को स्थापित किया और वेनगा क्लब का मेंबर बना, तो वहां पर मैंने जाके लॉन टेनिस खेलना स्टार्ट किया और लगभग आज 20 साल से मैं लॉन टेनिस खेल रहा हूँ। मेरा लॉन टेनिस पैशन है कह लीजिए।
1: अच्छा।
0: बहुत बड़े बड़े हम लोगों ने स्टेट लेवल के यहाँ पर टूर्नामेंट्स कराए हैं बालाघाट के अंदर लॉन टेनिस के, आदरणीय कलेक्टर साहब के और एसपी साहब के माध्यम से, उनके सहयोग से। बिकॉज हमारे जो टेनिस एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं हमारे जो एसपी पदेन रहते हैं, वो उसके अध्यक्ष रहते हैं।
1: अच्छा।
0: और काफी सफल टूर्नामेंट्स हम लोगों ने कराए हैं। तो मेरी हॉबी मोस्टली आप कह लीजिए कि टेनिस खेलना है, और जब मौका मिले तो नए लोगों से मिलना और उनके साथ में अपनी बातों को साझा करना, उनसे कुछ सीखना।
1: क्या बात है।
0: और जब मौका मिले तो समाज में कहीं पर भी कोई चीज की जरूरत पड़ रही हो, कहीं हेल्प लग रही हो। अभी बीच में हमारे बालाघाट के जो नए एसपी हैं मिश्रा सर, उन्होंने विद्यांजलि के नाम से एक प्रोजेक्ट चालू किया था। अच्छा। जिसमें जो अपने नक्सलाइट जोन के स्कूल्स थे लगभग 250 से 300 स्कूल, उसका उन्होंने पूरा रिनोवेशन किया। बच्चों को उस स्कूल के माध्यम से वो अच्छा पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी में हमने भी हेल्प करते हुए लगभग 5 स्कूल गोद लिए। एक स्कूल लगभग 1 लाख रुपए गोद का फीस था उनका।
1: अच्छा।
0: तो लगभग 5 स्कूल को सेवा करने का मुझे मौका मिला। तो मेरा शौक कह लीजिए आज की तारीख में ये हो गया कि किस रूप से इस समाज को मैं क्या वापस कर सकूं। इस समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं ऐसा मानता हूं, और मेरा दायित्व यह है कि जब मुझे मौका मिले तो मेरी हॉबी है कि मुझे समाज के साथ में वापस कुछ ना कुछ काम करना है, समाज के लिए काम करना है।
1: क्या बात है। तो आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी सामने आते रहे हैं, तो आज हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह वे भी सामाजिक कार्यों से जुड़े और आगे आए।
0: मैं तो आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि

0: ईश्वर ने अगर आपको इस लायक बनाया है, उसने आपको इतना कुछ दिया है ईश्वर ने, और समाज ने कहूंगा, एक व्यक्ति के विकास में समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, भला वो बिजनेसमैन हो भला वो नौकरी पेशा आदमी हो, तो अगर मुझे इस समाज ने सफल बिजनेसमैन बनाया है बालाघाट जिले के अंदर में, तो मेरा ये दायित्व बनता है, आप सबका दायित्व बनता है। जैसे आपने मुझसे पूछा कि क्या चीज आपको मोटिवेट करती है, दूसरे लोग कैसे समाज सेवा के लिए जुड़े, तो मैं चाहूंगा कि आप ये मान लीजिए कि समाज ने आपको खड़ा किया है, समाज ने ही आपको सब कुछ दिया है, तो जब भी मौका मिले आप समाज को वापस देने का जरूर जरूर सोचें। इसके लिए आप ये ना देखें कि पहले कौन देगा। और मैंने तो ये पाया है, मैं तो बहुत बहुत ही बेसिक फैमिली को बिलोंग करता हूँ, एक आम आदमी के परिवार से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, बट आज भगवान ने मुझे जहां कहीं भी पहुंचाया है, तो मैंने दिया है तो उसने मुझे चार गुना दिया है। अगर आपको से लगता है कि भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, तो आप बिल्कुल समाज सेवा में आगे आइए। जितना समाज सेवा करेंगे, नाम होना हो ये जरूरी नहीं है, बट ईश्वर आपको अच्छे कर्मों के लिए जरूर आपको अच्छी चीजें देगा।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कमल जी। चूंकि आप एक सफल बिजनेसमैन हैं, ड्रीम्स होंडा के डायरेक्टर हैं, तो जानना चाहेंगे आपसे कि एक सफल बिजनेसमैन या सफल व्यवसायी बनने का मूल मंत्र क्या है।
0: इस पे मैं ये कहना चाहूंगा आपसे शालू जी कि कोई भी काम को आप छोटा ना समझे, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। मैं पूर्व में बोल चुका हूँ आपको कि मैं बहुत मध्यम परिवार को बिलोंग करता हूँ
1: जी,
0: और कृपा है, आशीर्वाद है पापा जी का, बुजुर्गों का। मैंने अपने घर से आज तक एक रुपये नहीं लिया अपने व्यवसाय को करने के लिए। मैं ये बोलना चाहूंगा आज सबके सामने कि मैंने एक भी रुपये नहीं लिया घर से, और आज मैं जहां कहीं भी हूं, ड्रीम्स होंडा का संचालक हूं, या मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति प्रदान की कि मैं समाज सेवा कर सकता हूं, तो ये सब अपनी मेहनत और बुजुर्गों का आशीर्वाद कह लीजिए। कोई भी काम को आप छोटा मत समझिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप स्टार्ट जीरो से ही करेंगे, तभी आप हीरो बन पाएंगे। तो उसके लिए आप मेहनत करिए, फोकस रखिए, ईमानदार रहिए, और अच्छी टीम का गठन करिए। अगर आपको एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो आपके पास में एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। तो अपनी टीम को इम्पोर्टेंस दीजिए, तो टीम जरूर आपके साथ में आपके बिजनेस को और आपके ऑरे को आगे बढ़ाएगी
1: जी। तो यहाँ आपने टीम वर्क की बात की, तो टीम को एकजुट रखने के लिए आप क्या कुछ खास प्रयास करते हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे कमल जी। जी
0: मेरे यहाँ तो जो होंडा परिवार बोलता हूँ मैं, तो अपने परिवार को, जो भी मेरे यहाँ बच्चे काम करते हैं
1: जी,
0: और मोस्टली मेरे यहाँ पर गर्ल्स एम्पावरमेंट ज्यादा है, मेरे यहाँ 70% गर्ल्स काम करती हैं, 30% मेल स्टाफ है।
1: क्या बात है।
0: तो मैं तो कोशिश पूरी करता हूँ कि 100% ये जो है ना, ये वुमेन ड्रिवन डीलरशिप रहे पूरे इंडिया के अंदर में। कंपनी वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं कि बालाघाट जिले के अंदर में, जैसे हमको पता है कि हमारे यहाँ महिला जो है वो पुरुष से ज्यादा है
1: जी।
0: तो मैंने भी अपनी डीलरशिप के अंदर महिलाएं जो है पुरुष से ज्यादा रखी है, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, और आपस में उनको एकजुट रखने के लिए समय समय पे हम लोग पिकनिक अरेंज करते हैं।
1: अच्छा।
0: स्टाफ को मोटिवेशन के साथ साथ में हम लोग इंसेंटिव वगैरह भी प्रदान करते हैं। तो ओवरऑल स्टाफ की बातों को आप सुने, टीम की बातों को आप सुने, ऐसा नहीं कि एक ही तरफा आप बोलें कि टीम ऐसा करे। टीम के साथ में आप अच्छी तरह इंटरेक्ट हो, कोशिश करके उनके परिवार के साथ में एक आध बार साल में समय बिताएं, तो टीम जरूर फिर आपके व्यवसाय को अपना व्यवसाय मानती है और एक परिवार के रूप में काम करती है आपके लिए
1: जी। मतलब आपसी समझ रखते हुए सब एकजुटता बनाए रखते
0: हैं। सही कहा।
1: तो कमल जी, जी आप अपना अनमोल समय निकालकर यहाँ स्टूडियो आए और अपने बारे में, अपने संस्था के उद्देश्यों, इसके कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि इससे हमारे जो श्रोतागण हैं वे जरूर लाभ उठाएंगे। तो यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलने पर मैं हृदय से आभारी हूँ आकाशवाणी की पूरी टीम का, और सभी श्रोताओं को पुनः नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
2: क्रम एक मुलाकात के अंतर्गत आज आपने सुना समाज सेवी एवं ड्रीम सोंडा बालाघाट के डायरेक्टर कमलजीत सिंह छाबड़ा से हमारी सहयोगी शालू गांधी की ली गई बातचीत। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 8:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समन्वित नाटक, जिसका अनुप्रसारण हम कर रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से।
3: क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तुम्हारे ही अंदर है? क्या देखते हो औरों में जब तुम्हारा मन ही दर्पण है? सपनों की गहराई को समझो, अपने अंदर की अच्छाई को समझो, स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन में कुछ बन के दिखा डालो। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ, प्यारी प्यारी बातों के साथ

आपकी रेडियो साथी नीरजा कार्यक्रम सुरमई सवेरा में आप सभी का स्वागत करती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी एकदम मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और बिना देरी के जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं आपको गीत अरिजीत सिंह, प्रकृति कक्कड़ और अमाल मलिक के स्वर में। फिल्म का नाम सोनू के टीटू की स्वीटी। गीत लिखा कुमार ने, संगीतकार अमाल मलिक।

आज 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश भर में उन्हें श्रद्धा पूर्वक याद किया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वो युवाओं के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व माने जाते थे। उनका जीवन देश और समाज की सेवा के लिए समर्पित था।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
7: सच?
6: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
7: डॉक्टर अगर HIV पॉजिटिव आए तो
6: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
7: डॉक्टर हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
6: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
8: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
9: स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लोगों को मानव सेवा का महत्व समझाया। उनका कहना था कि दूसरों की सेवा करना ही सच्ची पूजा है। वे शिक्षा और आत्मविश्वास को जीवन में

सफलता का आधार मानते थे। उन्होंने युवाओं को अपनी क्षमता पहचानने का संदेश दिया। वे समाज में समानता और भाईचारे के पक्षधर थे। उनके विचार ने लोगों में नई जागरूकता पैदा की। आज भी उनके संदेश लोगों को प्रेरणा देते हैं।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: सन 1893 में

स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां दिए गए उनके भाषण की पूरे विश्व में सराहना हुई। उन्होंने दुनिया को भारत की संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा के बारे में बताया। उनके विचारों ने लोगों के बीच आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत किया। उन्होंने कई देशों की यात्रा करके मानवता का संदेश फैलाया। उनके प्रयासों से विश्व में भारत की पहचान और भारत का सम्मान बढ़ा।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद जी का स्वर्गवास हो गया। उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका प्रसिद्ध संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये संदेश आज भी युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उनकी शिक्षाएं आत्मविश्वास, परिश्रम और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। उनकी पुण्यतिथि हमें उनके जीवन और विचारों को याद करने का अवसर देती है। साथ ही ये दिन उनके आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा भी देता है। स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि है आज, और उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। और भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच चेस्टर ले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम रिले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम, जिनका अनुप्रसारण हम करते हैं आकाशवाणी मुंबई से।

ये कैसा इश्क है, धड़क टू फिल्म का गीत रोचक कोहली और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था, रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। एक और ब्रेक छोटा सा,

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको मोहरा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें उदित नारायण अलका याग्निक की हैं।

मोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की थी, आनंद बख्शी के बोल थे, बिजू शाह का संगीत था। दोस्तों, बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो मिट्टी की सौंध ही सी खुशबू मन को नई नई ऊर्जा से भर देती है। यही मौसम हमें प्रकृति के सबसे अनमोल उपहार वृक्षों का, पेड़ पौधों का, वनों का याद दिलाता है। इसीलिए हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ हमें केवल छाया ही नहीं देते बल्कि हमारी सांसों के, हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें प्राणवायु देते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और तमाम जीव जंतुओं का आश्रय भी बनते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने है, तब एक पौधा लगाना कितना जरूरी है। ये पर्यावरण की सेवा होगी। अगर प्रत्येक घर में हर एक इंसान या हर घर में एक कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है अपने पूरे जीवन में, तो सोचिए कितने पेड़ हो जाएंगे। तो चलिए, अब हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। ये आवाज़ें सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला की है।

0: सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

नए दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

फिर से बहुत स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज़ में और साथियों की आवाज़ों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की ये थीम है, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गदर 2 फिल्म का गीत आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

ऐसे हैं जिनमें उनकी बांसुरी ने मधुरता पैदा की है। और कई गाने ऐसे हैं जहां सुनाई देती है उनकी शहनाई की मीठी तान।

रामलाल चौधरी का जन्म 15 अगस्त 1922 को बनारस में हुआ था। बचपन से ही उन्हें शहनाई बजाने का शौक था। शहनाई और बांसुरी शौकिया तौर पर वो बजाया करते थे। मशहूर संगीतकार राम गांगुली के भाई कमल ने रामलाल की बांसुरी और शहनाई सुनी तो उन्हें बनारस से बंबई ले आए। सन 1944 में रामलाल समंदर के किनारे वाले इस शहर मुंबई में आए। 14 साल तक वो संगीतकार राम गांगुली के सहायक रहे। राम गांगुली को राज कपूर की पहली फिल्म आग मिली। 1948 में राज कपूर की फिल्म आग में संगीतकार राम गांगुली के लिए कई गानों में रामलाल ने बांसुरी और शहनाई बजाई।

रामलाल ने मुंबई में पृथ्वी थिएटर में 80 रुपए की तनख्वाह पर शहनाई वादक की नौकरी कर ली थी। पृथ्वी थिएटर में एक नाटक चल रहा था, शकुंतला। इस नाटक की संगीत टोली में काम करते हुए रामलाल का परिचय राज कपूर से हुआ था। रामलाल बांसुरी और शहनाई बजाया करते थे। इसी दौरान वी शांताराम ने रामलाल को राजकमल स्टूडियोज में काम करने की पेशकश की। तनख्वाह ज्यादा थी तो रामलाल राजकमल स्टूडियोज में आ गए और बन गए शहनाई और बांसुरी वादक। वी शांताराम की कई फिल्मों में उन्होंने शहनाई और बांसुरी बजाई है, जैसे फिल्म सुबह का तारा।

इसी दौरान राजकमल स्टूडियोज यानी वी शांताराम ने रामलाल को बाहर की फिल्में करने की इजाजत भी दे दी। स्वतंत्र संगीतकार के रूप में रामलाल को पहला मौका मिला पी एल संतोषी की फिल्म तांगावाला में। पी एल संतोषी यानी प्यारे लाल संतोषी एक गीतकार और निर्माता, आज के जमाने के निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता। फिल्म तांगावाला में मुख्य भूमिका में थे राज कपूर और वैजयंती माला। रामलाल का करियर शुरू हो रहा था लेकिन अफसोस ये फिल्म बंद हो गई। अब रामलाल बतौर बांसुरी और शहनाई वादक फिल्म उद्योग में अपना काम करते रहे। बतौर संगीतकार उनकी ख्याति अभी बननी बाकी थी लेकिन बतौर बांसुरी और शहनाई वादक उनकी बहुत ख्याति थी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी शहनाई के सुर छेड़े, जैसे फिल्म मुगले आजम।

सन 1952 में रामलाल को एक बार फिर से स्वतंत्र संगीतकार बनने का मौका मिला। फिल्म थी हुस्न बानो। इस फिल्म के गाने लिखे थे साहिर चांदपुरी ने। इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत सुधा मल्होत्रा की आवाज में।

सन 1957 में आई फिल्म नागलोक। भरत व्यास का लिखा ये बेमिसाल गाना इस फिल्म के लिए मोहम्मद रफी ने गाया था। संगीत रामलाल का था।

1960 में आई माया मच्छेंद्र, इस फिल्म के गाने पंडित मधुर ने लिखे थे। ये सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक मधुर गीत।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म माया मच्छेंद्र में संगीतकार रामलाल के सहायक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसके बाद रामलाल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक मिला। वी शांताराम ने अपनी फिल्म सेहरा में संगीत देने के लिए रामलाल को चुना और इस फिल्म के सारे गाने बेमिसाल बने। जा, जा, जा।

0: संगीतकार रामलाल बरसों पहले विविध भारती के स्टूडियो में आए थे और उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई थी।
1: शांताराम बापू हमको बुलाए, वहीं से फिर 200 रुपया शुरू हुआ। फिर बसंत देसाई साहब के साथ बाहर काम भी करना शुरू हुआ पिक्चर में, तो वहां से जरा हमको कुछ ज्यादा पैसे मिलने लगा। हमको 150 मिलता था पृथ्वी थिएटर्स में और शंकर जी को 120 मिलता था और जयकिशन जी को 80 रुपया मिलता था। कौन वो लोग बाद में आए थे, टांगा वाला पीएल संतोषी साहब ने हमको दिया था 1950 में। वो हमारे गुरु थे टांगा वाला, राज कपूर भजंती माला। उसके गाने रिकॉर्ड हुए थे मगर फिल्म नहीं बनी, उसके गाने रिकॉर्ड हुए। उस गाने से भूषण भानु बनी, वो गाना खरीद कर भूषण भानु बनाए प्रोड्यूसर।
2: गाना कौन सा था?
1: प्यार करने का आया जमाना, अब चलेगा न कोई बहाना, हो प्यार करना पड़ेगा। लता भाई ने गाया था।
0: वी शांताराम ने इसके बाद बनाई गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में भी संगीतकार के तौर पर रामलाल को चुना गया। गीत गाया पत्थरों ने एक बेमिसाल फिल्म थी। इस फिल्म के जरिए जितेंद्र ने अपनी यात्रा शुरू की थी। हीरोइन थी वी शांताराम की बेटी राजश्री। इस फिल्म का आशा भोसले का गाया ये गाना सुनिए।

जीत गया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने एक और कमाल किया, उन्होंने राजी किया जयपुर घराने की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर को एक फिल्मी गाना गाने के लिए, और ये गाना कालजयी बन गया। राग दुर्गा पर आधारित था ये गाना।

0: गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में रामलाल जी ने सी एच आत्मा से दो गाने गवाए थे। एक गाना था ये
1: मंडवे तले गरीब के दो फूल खिल रहे हैं,
0: और सी एच आत्मा का इस फिल्म में गाया दूसरा गाना था ये
1: एक पल जो मिला है तुझको जीने के लिए।
0: दिलचस्प बात ये है कि रामलाल जी ने कन्नड़ फिल्मों में रामलाल सेहरा के नाम से संगीत दिया था। उनकी कुछ कन्नड़ फिल्में हैं बलुआ प्रपन्नय मजोड़ी, दाहा और डोमरी कृष्णा। वैसे आपको बता दें कि रामलाल जी को रामलाल हीरा पन्ना कहा जाता था, और इसकी वजह भी बड़ी मजेदार थी। रामलाल जी एक कान में हीरा पहनते और एक कान में पन्ना, इसलिए वो बन गए थे रामलाल हीरा पन्ना। रामलाल जी की शहनाई कई गानों में सुनाई पड़ती है, जैसे फिल्म परिणीता का ये गाना।

0: आगे नहीं बढ़ पाया। वो बतौर वादक फिल्म उद्योग में काम करते रहे। जिंदगी चलाना मुश्किल हो रहा था। रामलाल जी के जीवन का उत्तरार्ध बहुत मुश्किल में बीता। धीरे धीरे वो गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। एक दिन उन्होंने विविध भारती के स्टूडियो में फोन किया और कहा, मैं संगीतकार रामलाल बोल रहा हूं। इस तरह से उन्हें विविध भारती में आमंत्रित किया गया और उनका ये अनमोल इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ।
1: नहीं मलाल किस बात का, उस वक्त काम होता था, पैसा कम मिलता था, बहुत आनंद था। अब अभी तो हजारों मिलते हैं, मगर उस वक्त इतना मिल के भी कुछ खिसे में पैसा रहता था। हमारे जब जगह दूसरा आदमी होता तो भाग जाता मैदान छोड़कर।
0: 4 जुलाई 2004, बारिश के दिन, संगीत की दुनिया का ये पंछी चुपचाप उड़ गया। अखबारों में छोटी सी खबर भी ना छपी। रामलाल जी गुमनामी के अंधेरों में चुपचाप दुनिया छोड़कर चले गए। आज भी गूंजते हैं रामलाल जी के गाने और संगीत के कदरदान उन्हें याद किया करते हैं। फिल्मी गानों को सुने तो हम उन गानों को रचने वाले कलाकारों को जरूर याद करें, गीतकारों को, संगीतकारों को और गायकों को। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन कलाकारों के लिए। रामलाल जी को हमारा विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार रामलाल पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का। प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी।
2: आज के फनकार।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम। सुबह के 10 बज रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।
4: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। जिले में किसानों को प्रीमियम बीमा कवरेज और दावा प्रक्रिया की भी जानकारी दी जा रही है। जिले में बीबी जी राम जी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस योजना के तहत रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। जल संरक्षण की दिशा में भिंड के उमरी गांव का उमरेश्वर तालाब अब नई पहचान बन रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद, जलकुंभी और झाड़ियां हटाई गई हैं। इससे बारिश का पानी बेहतर तरीके से रुकेगा, गांव के लोगों को साफ पानी मिल सकेगा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। भिंड जिले के शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षकों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोचिंग का संचालन सुबह और शाम दोनों समय होगा। भिंड के ITI महाविद्यालय में 30 MP बटालियन NCC द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 350 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स को हथियार संचालन, निशानेबाजी, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का समापन मेडल वितरण के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते बेहगांव और भिंड की ग्राम पंचायतों के 11 पदाधिकारियों पर कुल 48,81,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। भिंड कलेक्टर ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु काल घोषित किया है। इस दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्य खेत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को भिंड में होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। हर स्कूल से 3 विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी और ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन तथा विरासत से जोड़ना है। भिंड जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई।

हैं। अभियान के तहत जन्म से 5 साल तक के करीब 2,70,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले भर में 2,248 बूथ और हजारों स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय एमजेएस महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 153 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 6 कंपनियों द्वारा 122 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। मेगांव में आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं के हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मेगांव के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी वितरित की गई। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि इससे दूर दराज के छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों की सफलता की कहानियां कर रही है। घिरोंगी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रमोद गुर्जर ने बताया है कि सब्सिडी की मदद से प्लांट विस्तार से उत्पादन क्षमता दुगुनी हुई है, जिससे अब लगभग 150 लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। वहीं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोनू धाकड़ और पूजा धाकड़ ने सोना अधिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर काजू प्रोसेसिंग में सफलता हासिल की, जिनके तैयार उत्पाद यूएई तक निर्यात होते हैं। इस इकाई में भी प्रत्यक्ष रूप 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई योजना के तहत मिले अनुदान ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी।
1: ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम का पहला गीत शामिल कर रहे हैं फिल्म आया सावन झूम के। इस फिल्म से इस गीत में आवाज़ आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की।

आया सावन झूम के। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मुकेश की। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन आप इस गीत में सुन रहे थे। पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम इस तरह से हैं। महादेव घाट अमलेश्वर से हमें चिट्ठी लिखी थी इस गीत को सुनने के लिए डोमन ठाकुर, प्रीतम ठाकुर, प्रेम साहू और उनके श्रोता साथी। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रमिला नेताम और उनके श्रोता सदस्य। इसी गीत को सुनना चाहा था हमारे इन साथियों ने। बैहर मलाजखंड से मुन्ना लाल पटले और उनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम लालबर्रा से विक्की चौरसिया, टुक्कू चौरसिया और उनके श्रोता साथी। ग्राम बरघाट से हमें चिट्ठी लिखी थी संध्या चौरसिया और उनके परिवार के सदस्यों ने। लालबर्रा बड़ी पेनबिरी से पिंटू यादव, बबीता यादव, निकिता यादव, आकांक्षा, भेजेंद्र और मुकुल यादव ने। यहीं से बस्ताराम यादव, जानकी, पूर्वी, आरुषि यादव और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए आप सबने हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं। भाटापारा दतरेंगी से भागवत वर्मा, के आर साहू और साहू परिवार के सभी सदस्य। दतरेंगी से ही

भागवत वर्मा, देवरी से के आर साहू, भाटापारा से हमें चिट्ठी लिखी है इमकेश्वर साहू, लेवई से गुलाब दास और उनके श्रोता साथियों ने। आप सब ने सुनना चाहा है हाथ की सफाई फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इस गीत में आप सुनेंगे, गुलशन बावरा ने इस गीत को लिखा है। आइए सुने हाथ की सफाई फिल्म का ये गाना।

0: रहे हैं। अंतराल के बाद हम लौटेंगे तो आपको सुनवाएंगे खेल खेल में इस फिल्म का गीत। बने रहिए हमारे साथ।
1: एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो हमारा कल है। आइए मिलकर अपने वनों की रक्षा करें। बांस मिशन योजना के तहत अपने खेतों की मेड़ों पर बांस के पौधे अवश्य लगाएं और लाभ पाएं। एक पौधा लगाएं, उसे पोषित कर वृक्ष बनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए हरियाली की अमूल्य विरासत छोड़ जाएं। साथ ही जंगल में आग लगने, वन्य प्राणियों का हित करने या किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत निकटतम वन विभाग को जरूर दें। ये संदेश वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट द्वारा जनहित में जारी।
7: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
7: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
7: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं और फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम आपकी पसंद में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिस गीत को हमने लिया है फिल्म खेल खेल में। इस गीत में आवाज़ें आप सुनेंगे आशा भोसले और किशोर कुमार की। गुलशन बावरा का लिखा हुआ यह गीत है। आइए सुने खेल खेल में फिल्म का यह गीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हम बताएंगे गाने के बाद।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में हाथ की सफाई फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को सुनने के लिए आप सबने हमें चिट्ठियाँ लिखी थी। नैला बोर्डसरा से छत्तीसगढ़ से ये चिट्ठी है। प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी और उनके श्रोता साथी, बबली प्रियांशु साहू, अंशु और उनके सभी दोस्त, यहीं से आपने हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं। माधुरी पटले, याचना पटले, ग्राम डोंगरिया मलाजखंड से आपने हमें चिट्ठी लिखी। दुगलई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता, परभणी से सी आर कुलकर्णी और उनके श्रोता साथी। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, उससे पहले ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सो योर प्लेस और माइन।
4: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
3: कॉन्डम? लेकिन हम तो
4: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
3: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
5: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
6: पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो हमारा कल है। आइए मिलकर अपने वनों की रक्षा करें। बांस मिशन योजना के तहत अपने खेतों की मेड़ों पर बांस के पौधे अवश्य लगाएं और लाभ पाएं। एक पौधा लगाएं, उसे पोषित कर वृक्ष बनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए हरियाली की अमूल्य विरासत छोड़ जाएं। साथ ही जंगल में आग लगने, वन्य प्राणियों का हित करने या किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत निकटतम वन विभाग को जरूर दें। ये संदेश वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर आप सबका स्वागत कर रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश के लिए चिट्ठियां लिख भेजी हैं हमारे इन श्रोताओं ने। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत साहू, सीमा साहू, सूर्यकांत

0: राकेश साहू, शुभम, शिखा और शेफाली ने आपने सुनना चाहा है ढाई अक्षर प्रेम के इस फिल्म का गाना अनुराधा पौडवाल, बप्पी लहरी और साथियों की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं इस गीत को।
1: मध्य प्रदेश राज्य एड्स

ढाई अक्षर प्रेम की। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी की बाबुल सुप्रियो की आवाज़ें थी। ये इस गीत को सुनना चाह रहे थे हमारे ये श्रोता जिन्होंने चिट्ठियां लिखी। ग्राम सरोखा नैला जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश शची साव, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए आप सबने हमें चिट्ठियां लिखी हैं। पुरानी टोली जशपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती नागदेव, सोनाली नागदेवे, मयंक नागदेवे, अनिमेश मास्टर, अंसल नागदेवे और उनके बहुत सारे श्रोता साथी। आप सबकी फरमाइश पर हम कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं शिकारी फिल्म का गाना कुमार सानू का गाया हुआ।

कुमार सानू की आवाज़ में शिकारी फिल्म का ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए आप सबने हमें चिट्ठियाँ लिखी हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितेश मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत रॉय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और उनके श्रोता साथी। कालका से सुभाष चंद्र बजाज, करण लाल और जग्गी दुआ। ग्राम कन्या दमोह बालाघाट से हमें चिट्ठी लिखी है अखिलेश कुमार यादव, ज्योति, अंकित और श्रद्धा यादव ने। आप सबने सुनना चाहा है हर दिल जो प्यार करेगा, इस फिल्म का गाना। आवाज़ प्रीति, पिंकी और प्रशांत की है। आइए सुने हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म का ये गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम आपकी पसंद में ले रहे हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम? लेकिन हम तो
2: क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन

0: संबंध कर रहे हो?
1: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए आप सबने हमें चिट्ठियां लिखी हैं। जिला गोंदिया से आमगांव जिला गोंदिया से हमें चिट्ठी लिखी है यश साखरकर, शरद साखरकर, आशाताई सुहानी साखरकर और ज्ञान देवी साखरकर ने। ग्राम समनापुर से रंजीत बनोटे, खुशरंग रोकड़े।

चिट्ठियाँ लिखी हैं। ज़िला गोंदिया से आम गांव ज़िला गोंदिया से हमें चिट्ठी लिखी है यश साखरकर, शरद साखरकर, आशाताई सुहानी साखरकर और ज्ञान देवी साखरकर ने। ग्राम समनापुर से रंजीत बनोटे, खुशरंग रोकड़े और मोनू शर्मा। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खाम, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, वंदना गोस्वामी, प्रतीक कुमार और सत्या साहू। आप सबने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में इश्क हुआ फिल्म का ये गाना।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अस्तित्व फिल्म का गीत सुखविंदर का गाया हुआ। पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम भाटापारा से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव जीवन, बलदेव जैतम और मीका सिंह। आप सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा अस्तित्व फिल्म से।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद FM बैंड 101.3 MHz पर। ये आकाशवाणी बालाघाट है। सुबह के 11 बज रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती सेवा मुंबई के कार्यक्रम।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बी12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फिल्म लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खयाम साहब की संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़े ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बदरा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बदरा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है, 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज़ है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्मों में, खासतौर से हिंदी फिल्मों की ही बात चल रही है, बादल एक महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। कभी ये दूर रहने वाले प्रियतम को संदेश पहुंचाने वाले दूत का प्रतीक होते हैं, तो कभी किसी बिछड़े प्रेमी के गहरे दुख को दर्शाते हैं। कभी प्रेमिका के घने लहराते बालों की तुलना आकाश के काले भूरे बादलों से हम करते हैं, तो कभी कुछ और। ये बादल अशांत, चंचल, शरारती और कभी कभी निर्मम भी हो जाते हैं, और बहुत सारे गीतों में इनको याद किया जाता है। कभी बादल के रूप में, कभी बदरा के रूप में, कभी घटा के रूप में, कभी मेघा के रूप में, अलग अलग शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन भाव वही होता है कि हम जब किसी को याद करते हैं तो लगता है कि ये बादल शायद हमारे लिए मेघदूत का काम करेंगे। एन दत्ता के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा है। आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। ये फिल्म है धूल का फूल।

का माहौल पैदा कर देते हैं। और जैसे ही मौसम सुहावना होता है, नायिका का मन जियारा मोरा डोले अपने प्रियतम के लिए पुकारता है और उसका जिया मचलने लगता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये गीत नायिका के उस मनभावन इंतजार और अपने प्रेमी के प्रति उमड़ते प्यार को दर्शाने वाला बहुत ही प्यारा गीत है, जो बारिश के मौसम में और गहरे काले बादल के छा जाने पर ये गीत भी उतना ही गहरा हो जाता है।

तो आज हमने उन गीतों को लिया जो हमें भी मोह लेते हैं और हमारे गीतकारों को भी, यानी आसमान में छाए कारे बदरा। तो कार्यक्रम के अंत में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म बहाना का गीत जारे बदरा बैरीजा। एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है, और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रीतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है, क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

तो ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में

0: मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरल स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना, पंडित भरतव्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लेप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग

0: नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस
1: जी
0: सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
2: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंडित शिवराम के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।
4: Yeah!

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक बिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज़, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृहलक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहां हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो। लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं,

बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं तब गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

आपने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है, जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है, जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है, और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है, और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यह गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें रब नहीं होता, मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे, जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें 5 शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है, और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है, और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है, और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूँ। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आप आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारे जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी, कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश के हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात किसे पेश करूं, मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है और अंतर्मन की अनकही पीड़ा। संगीत भावुकता और शब्दों की सुंदर लय से सजी गजल हृदय को स्पर्श करती है। गजल केवल पढ़ी या सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। ये मन की उन भावनाओं का दर्पण है जिन्हें अक्सर कह पाना संभव नहीं होता। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलें जो हैं फिल्मों में केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने के लिए रखी जाती हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही निराला होता है और उन गजलों के बीच शायरी तो जैसे सोने पर सुहागे का काम करती है जो सुनने वाले के दिल को छू जाती है। गजलों में अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को इतनी गहराई से पर्दे पर उतारा जाता है कि मानो वो हमारे ही मन का हाल बयां कर रही हो। तो आज का सुरीला सफर उन्हीं बेहतरीन गजलों से भरा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी शुक्रिया कि आप गजलों को इतना पसंद करते हैं और इतनी गहराई से अपने जज्बात पेश कर रहे हैं। हमारे वो श्रोता जो इस समय हमें सुन रहे हैं और हमारे फेसबुक परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं, वो तुरंत

हमें ज्वाइन करें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर वो हमारे परिवार का, विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं मिर्जा गालिब फिल्म की गजल आवाज सुरैया की। रचनाकार मिर्जा गालिब और गुलाम मोहम्मद साहब का, यानी गुलाम मोहम्मद साहब का ये संगीत है।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा, जब तक फिल्मों में गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब का उल्लेख या कोई भी गजल न लिखी जाए तो शायद गजल को सुनने या गजल गायकी की जानकारी में कमी है, ये कहा जा सकता है। माफ करें, मेरे विचार इस मामले में अलग हैं। तलत साहब गजलों और फिल्मी गजलों के बादशाह हैं और शायद ही किसी श्रोता ने उन्हें यहाँ याद किया है। गजलों पर 10-12 कमेंट छाप दिए गए हैं बिना सोचे समझे, लेकिन गजल को किसी ने भी महसूस किया है वो नहीं दिख रहा। आज तलत साहब की गजलें शामिल होंगी, यही उम्मीद है। बिल्कुल होंगी। आप कार्यक्रम को सुनते रहिए। और आपने बिल्कुल सही लिखा कि जब गजल की बात हो तो तलत महमूद साहब को याद न किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर मुझे लगता है कि गजलें वाकई में हमारे संगीत का एक अभिन्न अंग है। जो सुरीला सफर में आज के शब्दों पर गाने होंगे वो जरूरी दिल को छू जाएंगे। गजलें तो जैसे हमारे दिल की धड़कने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि छत पर धूप का एक टुकड़ा फैला था और रिकॉर्ड प्लेयर पर लता जी की आवाज में गजल अपने ही पूरे शबाब के साथ फिजाओं में तैरती है। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गजल सुनकर कोई गहरी संवेदना मन को छूती है। ऐसे लगता है हवाओं से कोई आहट मन को सहला रही है। गजल की दुनिया बहुत बड़ी है। गजल ने अपने चाहने वालों के दिलों में एक सुंदर संसार रचा है, भावनाओं का खूबसूरत संसार बुना है गजल ने। तभी तो ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जीवन की हर उदासी में, हौसले में, विश्वास में इन गजलों ने कुछ

सीली सी आवाज में समझाइश दी है, क्योंकि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक। वाह क्या बात है, आपने तो बहुत ही क्लासिक तरीके से अपनी बात रखी है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में संभावित शब्द आपने लिखे हैं। अरे जब मैंने खासतौर से ये कोशिश की कि हम अपनी इबारत में शब्द कम लिखें और ऐसा टेक्स्ट लिखें जिसे आप समझ पाएं, तो आप अपने शब्द लेकर हमारे सामने आते हैं। चलिए आपके शब्द हैं गजलें, जज्बात, दिलों को शायरी, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प। बिल्कुल, जहां गजल है वहां ये भाव होते ही हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजलों के लिए एक प्यारी सी बात, गजलें सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। हर शेर किसी न किसी दिल की कहानी कह जाता है। वहीं श्रोता लिखते हैं कि संगीत की सृजनात्मक श्रृंखला में पुनः बिखरे मोतियों को एकत्रित कर नई माला में पिरो कर सफर को नई मनोरंजक दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की। गजल मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुंचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर, इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं। साहिर, लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीले सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, मीने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है। फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं, पर देश में निकला होगा चांद। अच्छा, ये गजल आपको बेहद पसंद है जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लू वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज़ है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गज़ल।

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम आपके जो उत्तर हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है।

कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लताजी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता

ने लिखा है कि कैफी आजमी मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूं इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली, जावेद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूँ, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आइए सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिश्वास का संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदें नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो।

इशकजादे। इस फिल्म का गीत सुनिए जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और इसे संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा, सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और पाडुना जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। झाबुआ में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनप्रतिनिधि से सीधे संवाद को सशक्त बनाने में आज सांसद गणेश सिंह ने सांसद सुविधा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन

0: फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे आणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CG सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी

0: शब्द हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुकिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधे

0: की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाएं। मातृ शक्ति ने वहां के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
2: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सुबीर सेन और लता मंगेशकर को आपने सुना। फिल्म का नाम था छोटी बहन। गीतकार थी हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म अमरदीप का ये गीत सुना। राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे, जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो आशा भोंसले की आवाज में था। फिल्म का नाम था आखिरी दाव। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे मदन मोहन। और अब जो गीत आप सुनने वाले हैं वो है फिल्म अमरदीप से, आवाज लता मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सी रामचंद्र की धुन है।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मुकुल रॉय के संगीत निर्देशन में हम आपको शैलेंद्र का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। गाने वाले कलाकार गीता दत्त और हेमंत कुमार, फिल्म का नाम डिटेक्टिव।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। फिल्म हावड़ा ब्रिज का 2 गाने सुनिए। गाने वाले कलाकार आशा भोंसले और मोहम्मद रफी हैं, शब्दकार कमर जलालाबादी और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।
3: मोहब्बत कहाँ

0: कक्ष से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म काला पानी का गीत सुनिए, आवाज लता मंगेशकर की। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

आशा भोसले की आवाज में अभी आपने फिल्म फागुन का गीत सुना। इसे कमर जलालाबादी ने लिखा था और ओपी नैयर ने धुन बनाई थी। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम मन चाहे गीत लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में लेकर हाजिर हूँ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत, आप सबकी पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत।

सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सभी। ये हैं सदर नागपुर से कमल गोलचा, अंकित, अभिषेक, प्रेमलता गोलचा और इनका पूरा परिवार। अगला खत हमें मिला है कोलार रोड भोपाल से। लिखने वाले हैं रामबाबू मालवीय, मनीषा, शीतल, उमंग मालवीय और इनके परिवार वाले। ये खत है ग्राम पंचायत काले गांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, कुमारी संचित वायल का और मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख का। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म खानदान का गीत। गीतकार हैं नक्श लायलपुरी और संगीत खयाम साहब का।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था खानदान। अगला गीत सुनना चाहते हैं, आप सबने हमें खत लिखा है, ये हैं काशी निवास बंगाली नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े, हर्षेल रंबाड़े, वैष्णवी रंबाड़े, जानवी रंबाड़े और बनर्जी और इनका टोनी बारूकर, ललिता बोरकर इनके साथी हैं ये। इन सभी के साथ मिलकर ये गीत सुनना चाहते हैं। आप हैं रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, ये खत हमें मिला है। गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले और इनके परिवार वालों का। और ये हैं नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश, निवृत्ति क्षीरसागर और संजय चौहान। आप सभी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। फिल्म का नाम है धर्मात्मा, आवाज किशोर कुमार की। गीत को इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी की है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अभी आपने फिल्म अभिमान का ये दो गाना सुना। और आइए अब सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्दकार नीरज हैं और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखा। चंडीगढ़ से आप हैं शेफाली, शेफी अरोड़ा, मास्टर डेविस।

0: उसे महारानी के भाई और राज्य के सीमावर्ती दुर्ग के रक्षक वीरसेन ने अपनी बहन की सेवा के लिए भेजा था। चित्र पर गड़ी अपने पति की लुब्ध मुग्ध दृष्टि के मर्म को महारानी धारिणी तुरंत समझ गई। बड़ा प्रबंध किया कि मालविका संगीत शाला में ही बंद रहे ताकि वो महाराज अग्निमित्र की आंखों के सामने न जा सके। और उसी दिन से महाराज मालविका की एक झलक पाने को तरस रहे थे।
1: मित्र गौतम, जिसका चित्र इतना सुंदर है वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। शीघ्र ही कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका को अपनी आंखों से साक्षात देख सकें।
0: गौतम नामधारी विदूषक उपाय ढूंढने में लग गया। मालविका से मिलने को व्याकुल महाराज अग्निमित्र का मन राजकाज में भी नहीं लग रहा था। वैसे वे पड़ोसी विदर्भ के राजा यज्ञसेन से बहुत ही रुष्ट थे, उससे उनका पुराना वैर था। अग्निमित्र ने उसके चचेरे भाई कुमार माधव सेन को अपने साथ मिला लिया था। तय पाया था कि माधव सेन की बहन का विवाह विदिशापति महाराज अग्निमित्र से होगा। इसी उद्देश्य से कुमार माधव सेन अपनी बहन को विदिशा ला रहा था कि विदर्भ राज यज्ञसेन ने रास्ते में ही उसे उसके परिवार सहित बंदी बना लिया। रुष्ट होकर अग्निमित्र ने जब यज्ञसेन से बंदियों को छोड़ने को कहा तो उसने बड़ी ही धृष्टता से उत्तर भेजा,
2: मंत्री जी पढ़िए पत्र।
3: महाराज, उस दुष्ट यज्ञसेन ने लिखा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि इस धरपकड़ में माधव सेन की बहन तो कहीं खो गई है। रही माधव सेन को छोड़ने की बात, सो आपने भी मेरे साले मौर्य सचिव को बंदी बना रखा है। यदि आप उसे छोड़ दें तो मैं माधव सेन को छोड़ दूंगा।
2: ओह, हमारे साथ ये यज्ञसेन अदला बदली का व्यवहार कर रहा है। ये दुष्ट ऐसे नहीं मानेगा। मंत्री जी,

0: अपने सीमांत रक्षक वीरसेन को आज्ञा दीजिए कि वो सेना लेकर विदर्भ पर चढ़ाई कर दे और यज्ञसेन जैसे खोटे शत्रु को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे।
1: इधर विदिशापति अग्निमित्र की सेना ने विदर्भ पर चढ़ाई की, उधर अग्निमित्र के पिता और शुंग वंश के संस्थापक सेनापति पुष्यमित्र का दिग्विजय का प्रचंड अभियान चल रहा था। सेनापति पुष्यमित्र ने अपने जीवन काल में दूसरा अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प कर रखा था और इधर अग्निमित्र का ध्यान मालविका की ओर लगा था। उनके हृदय में संगीत शाला में नृत्य सीखती मालविका की चित्रांकित छवि बसी थी। बहुत सोच विचार के बाद महाराज के मित्र विदूषक ने मालविका को उनकी प्यासी आंखों के सामने लाने का उपाय ढूंढ ही लिया। संगीत शाला में गणदास और हरदत्त नाम के दो नाट्याचार्य थे। मालविका गणदास की शिष्या थी। दोनों नाट्याचार्यों में से कौन अधिक योग्य है, इस प्रश्न को लेकर विदूषक ने गणदास और हरदत्त के बीच झगड़ा करा दिया। दोनों महाराज के पास आए। निर्णय के लिए महाराज ने बड़ी रानी धारिणी और राज प्रासाद में रहने वाली पंडिता कौशिकी नाम की परिव्राजिका को बुला लिया। परिव्राजिका से विदूषक ने पहले ही साठगांठ कर ली थी। उसी को तटस्थ मानकर निर्णय का कार्यभार उस पर सौंपा गया। दोनों नाट्याचार्यों की योग्यता अयोग्यता की जांच के लिए ये तय पाया कि दोनों ही संगीत शाला में अपनी अपनी शिष्याओं का नाट्य कौशल राजा महारानी और परिव्राजिका कौशिकी के सामने प्रदर्शित करें। निश्चय हुआ कि सबसे पहले नाट्याचार्य गणदास अपनी शिष्या मालविका का अभिनय दिखाएं।

0: अति सुंदर।
1: महाराज देखा?
0: पितृ गौतम, इसे साक्षात देखकर हम सोचने लगे हैं कि चित्रकार ने ठीक ध्यान से इसका चित्र नहीं बनाया।

0: लीजिए महाराज, इसने तो इस गीत के बहाने अपने आप को आप पर न्योछावर कर डाला।
1: मैं भी यही समझता हूँ। सब इसने हमको संबोधित करके कहा है कि नाथ विवश हूँ पर अपनी ही समझो।
2: मालविका अब तू जा।
3: ठहरो ठहरो ठहरो, अभिनय में कुछ भूल रह गई। मैं पूछना चाहूंगा कि अच्छा पहले कौशिकी जी आप ही पूछ लीजिए।
0: महाराज जी भर कर देखिए।
4: मैं क्या पूछूंगी, मैंने तो जो देखा है उसमें कहीं कोई दोष दिखाई नहीं दिया। मालविका ने गीत के सब भावों का ठीक ठीक अर्थ अंगों के अभिनय से फली भांति दिखा दिया है। आपका क्या विचार है महाराज?
1: मेरा विचार हम हरदत्त जी के अभिभावक हैं और गणदास जी की अभिभाविका है महारानी। जो देखा है उससे अपने पक्ष का हमारा अभिमान कम हो गया है।
2: गणदास जी, अपने परीक्षकों को संतुष्ट करने के लिए आपको बधाई। और हाँ आर्य गौतम, तुम क्या कहना चाहते हो?
3: महारानी, मुझे तो गणदास से ही एक बात कहनी है। जब पहले पहल अपनी सिखाई विद्या का लोगों के सम्मुख प्रदर्शन किया जाता है तो सर्वप्रथम

0: जैसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए।
1: वाह, क्या नाट्य कला के मर्म की बात पूछी है।
2: मालविका की ये मुस्कुराहट, हमें तो मनचाही वस्तु देखने को मिल गई।
0: मालविका, जब भगवती कौशिकी ने तुम्हारे अभिनय को निर्दोष और सुंदर कह दिया, तो लाओ मैं भी तुम्हें पुरस्कार स्वरूप महाराज का यह स्वर्ण कंगन देता हूँ।
3: ठहरो गौतम, दूसरे पक्ष का अभिनय देखे बिना तुम पुरस्कार स्वरूप ये कंगन कैसे दे सकते हो?
0: दे, दूसरे का है यही समझ कर दे रहा हूँ।
3: गणदास जी, आपकी ये शिष्य अपना अभिनय दिखा चुकी, अभी से अपने साथ ले जाइए। जाओ मालविका।
1: जो आज्ञा।
0: लीजिए महाराज, जहाँ तक मेरी बुद्धि की सामर्थ्य थी, मैंने आपका काम कर दिया।
2: क्या कहते हो मित्र, उसके जाने से मुझे ऐसा लग रहा है मानो मेरी आंखों का भाग्य फूट गया हो, मेरे हृदय का उल्लास ठंडा पड़ गया हो, मेरे धैर्य का द्वार बंद हो गया।
0: ओहो महाराज, आप तो निर्धन रोगी की तरह ये भी चाहते हैं कि व्यक्ति ही अपने पास ही औषधि भी दे।
3: आर्यपुत्र, अब हरदत्त की शिष्या का भी अभिनय देख लिया जाए।
2: जो देखना था सो देख लिया।
4: क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम तो देखने को उतावले हो रहे हैं।
3: तो हरदत्त जी, अब आप अपनी शिष्या को बुलाइए और

0: तो हम लोगों के भोजन का समय हो गया। वैद्यों का कहना है कि समय पर भोजन ना करने से बड़ी हानि होती है।
1: तो हरदत्त जी, आपके शिष्या का अभिनय हम कल ही देख पाएंगे, आप जाकर विश्राम कीजिए।
2: ओह आर्यपुत्र, मैं भी जाकर आपके भोजन की व्यवस्था करती हूँ।
3: महाराज, अब मुझे भी आज्ञा दीजिए, आपका कल्याण हो।
0: महाराज, सुंदरता में ही नहीं कला में भी मालविका अद्वितीय है।
1: मित्र, सच पूछो तो विधाता ने सहज सुंदरी मालविका को ललित कला का ज्ञान क्या दिया, मानो इसके हाथों में कामदेव का विष बुझा बाण ही दे दिया हो। अब तुम हमारी कुछ चिंता करो ना।
0: इस समय तो महाराज आप मेरी चिंता कीजिए, भूख के कारण मेरा पेट हलवा की कढ़ाई की तरह जल रहा है।
1: मित्र, शीघ्र कोई ऐसा उपाय करो कि हम मालविका से मिल सके।
0: महाराज, कठिनाई तो ये है कि बादलों में छिपी चांदनी की तरह मालविका का दर्शन भी तो दूसरों के हाथ में है, और इधर आप हैं कि मांस विक्रेता की दुकान पर मंडराने वाले गिद्ध की तरह उस पर ललचाए हुए भी हैं और साथ ही डरते भी हैं। आपकी ये घबराहट।
1: हमें घबराहट क्यों ना हो, वो तिरछी चितवन वाली हमारे हृदय में ऐसी बसी है कि रानीवास की तमाम रानियों से हमारा मन एकदम उचाट हो गया है। मित्र गौतम, सोचा कोई उपाय?
0: उपाय? उपाय हाँ, महारानी धारणी की दासी बकुला वलिका, उसी से सहायता लेनी होगी।
1: हम उसे मालामाल कर देंगे।
0: बकुला वलिका, समझ गई ना, यदि तुम महाराज का ये काम कर दो तो तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ
4: आर्य गौतम, महाराज से आप निवेदन कर दीजिएगा कि मुझे ये काम सौंप कर उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा की है, पर बेचारी मालविका को महारानी धारणी ने वैसे ही अपनी कड़ी निगरानी में रखा हुआ है जैसे कोई सांप खजाने पर कुंडली मारे बैठा हो। फिर भी मैं जतन करूंगी। हाँ
2: अरे मालविका, तुम आ गई।
5: दासी सेवा में उपस्थित है देवी। पांव में क्या बहुत कष्ट है?
2: ओह, इस दुष्ट गौतम के नटखटपन से मैं झूले से गिर पड़ी हूँ। दोनों पांव में ऐसी चोट आई है कि मैं उठकर चल फिर भी नहीं सकती। उधर मुझे अपने प्यारे सुनहले अशोक वृक्ष की चिंता है।

0: आज वसंतोत्सव है और उसमें अभी तक फूल नहीं आए। उसे किसी सुंदरी का पदाघात अपेक्षित है। यदि मैं स्वस्थ होती तो ये काम मैं स्वयं ही करती। अब मैं ये काम तुम्हें सौंपती हूँ।
1: मेरा अहोभाग्य जो देवी ने मुझे इस योग्य समझा।
0: तो तुम बकुला बालिका के साथ प्रमद बन जाओ।
1: जो आज्ञा।
0: यदि तुम्हारे पदाघात से मेरे सुनहले अशोक में 5 दिनों के अंदर अंदर फूल आ गए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी।
2: ये लीजिए महाराज, हम प्रमद वन में पहुंच गए। तुमने देखे तो महाराज, प्रमद वन की लक्ष्मी ने आपको लुभाने के लिए ही युवतियों के 16 श्रृंगार को भी मात करने वाला ये वसंत के फूलों का श्रृंगार किया है।
3: हाँ, हम देख रहे हैं वसंत की अनुपम शोभा। सुनो मित्र, इस मधुर कोकिल सर द्वारा वसंत ऋतु हमसे मानो पूछ रही है, क्यों प्रेम की पीड़ा से नहीं पा रहे हो क्या? ओह, ये प्रेम की पीड़ा, हे कामदेव, कहां तू?
2: कौन इधर चली आ रही है?
3: क्या क्या मालिका आ रही है?
2: तो और क्या,
3: तो समझो अब हमारे प्राण बच जाएंगे। जैसे दूर से सारस का शब्द सुनकर प्यासे पथिक को यह भरोसा हो जाता है कि वृक्षों के झुरमुट के पीछे अवश्य ही कोई नदी होगी, वैसे ही यह जानकर हमारे व्याकुल मन को भी बड़ा धीरज मिला है कि मालविका पास ही है।
2: लीजिए, वो पुष्प विहीन अशोक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गई।
3: ये सीधे सादे वस्त्रों में पहले से भी अधिक सुंदर लग रही है। देखो मित्र, इसने इन्हीं गिने आभूषण पहने हुए हैं। गाल एकदम पीले हैं, लगता है जैसे वसंत से परिपक्व पत्तों वाली किसी कुंदलता में इन्हें गिने फूल बचे रह गए हों।
2: तो इसे भी आपके जैसा ही प्रेम का रोग लग गया होगा महाराज।
3: मित्रों को ऐसा ही सुझा करता है। अरे, मालिका अपने आप कुछ कह रही है। आओ मित्र, हम लोग पास वाली उस लता के पीछे छिपकर सुने।
2: लेकिन महाराज, अब तो छोटी रानी इरावती भी आ रही होंगी।
3: मित्र, हाथी जब कमलिनी को देख लेता है तो उसे जल में छिपे घड़ियाल का ध्यान कहाँ रहता है। आओ उधर लता के पीछे।
1: दुर्लभ प्रिय है हृदय, छोड़ते तू मिलने की आशा। अरे हृदय, तू ऐसे की चाह क्यों करता है जिस पर ना तो अपना कोई अधिकार है और ना जिस तक अपनी पहुंच ही है। पूछे यूं सता कर तुझे क्या मिल रहा है?
3: प्रीत की कैसी उल्टी रीत है मित्र। इसने अभी तक अपने मन की व्याकुलता का कारण खोलकर तो बताया नहीं। अनुमान से भी इसके मन की ठीक ठीक था नहीं लग पा रही। हम कैसे समझ लें कि यह हमारे ही लिए व्याकुल हो रही है?
2: महाराज, आपके मन का संदेह अभी दूर हो जाता है। वो देखिए, वो हमारे सहायका बकुला बालिका उसके पास पहुंच गई।
3: अरे, ये बकुला बालिका साज श्रृंगार की इतनी सामग्री और नूपुर काहे को लाई है?
2: अरे, आप भूल गए महाराज कि महारानी धारिणी पांव की चोट के कारण चल फिर नहीं सकती और इधर उनका प्यारा अशोक वृक्ष अभी फूला नहीं।
3: अच्छा, तो अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंपा गया है और उसी के लिए मालविका का श्रृंगार किया जाएगा।
2: और नहीं तो क्या आपके लिए?

सखी मालविका, महारानी ने तुम्हें जो काम सौंपा है उसके लिए बस तुम ही योग्य थी। हाँ लाओ अपना पैर इधर बढ़ाओ।

0: आपस में महावर लगाकर ये नूपुर पहना दूं।
1: लो सखी, हृदय, ये सम्मान पाकर व्यर्थ भूल मत जाना। सखी, तुम्हें आज मेरे पैरों का श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसके लिए क्षमा करना।
0: वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई पराई हो।
1: अरे, तुम तो मुझे देह प्राण जैसी प्यारी हो। हाँ।
2: मित्र गौतम, प्रिया के पैर में महावर की जो रेखा खींची है वो ऐसी दिखती है मानो महादेव के क्रोध से जले कामदेव रूपी वृक्ष में नई खोपलें फूट आई हो।
3: और जैसे इसके चरण सुंदर है महाराज, वैसा ही इसे काम भी सौंपा गया है।
2: ये ठीक कहा तुमने, इस सुंदरी के सुंदर सुकुमार चरण या तो फूलने की इच्छा करने वाले इस अनफूले अशोक पर पड़ने योग्य हैं, या प्रेम में अपराध करके सिर झुकाने वाले प्रेमी के सिर पर पड़ने योग्य हैं।
3: तो समझ लीजिए महाराज, यदि आप ही अपराध करेंगे तो यही चरण आप पर भी पड़ेंगे।
2: मनचाहा भविष्य बताने वाले ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद सिर माथे।
1: अरे निपुणिका, आर्यपुत्र तो यहाँ झूला गृह में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे।
4: आर्य गौतम ने तो कहा था कि महाराज निश्चय यहाँ मिलेंगे। देवी, ध्यान से देखिए, आपसे परिहास करने के विचार से महाराज यहीं कहीं छिपे बैठे होंगे। आइए उन्हें ढूंढे।
1: अरे मदिरा कुछ इतनी चढ़ गई है कि आर्य पुत्र को देखने की अकुलाहट होने पर भी पैर आगे नहीं बढ़ रहे।
4: तो आइए हम लोग उधर अशोक के तले प्रेंगुलता मंडप में बैठे।
1: अच्छा चल।
4: अरे ये क्या, स्वामिनी?
1: क्या क्या हुआ रे निपुणिका?
4: हम चली थी आम की कोपल ढूंढने और काट लिया चींटियों ने।
1: अरे क्या कह रही है?
4: देवी तनिक उधर देखिए, उधर, वहां अशोक की छाया में महारानी धारणी की दासी बकुलावलिका मालविका के पैर रंग रही है।
1: हैं? मालविका तो इधर आ नहीं सकती, आज इसे किसने इधर आने दिया?
4: मैं समझती हूँ कि पाँव की चोट के कारण महारानी धारिणी तो आ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने स्वयं ही अनफूले अशोक पर पदाघात करने का काम मालविका को सौंप दिया होगा। नहीं तो महारानी क्या कभी अपने नूपुर उतार कर इन दासियों को दे सकती थी?
1: हाँ हो सकता है, परंतु मैं सोचती हूँ कि
4: तो क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
1: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहाँ आड़ में हो जाए।

0: क्या महाराज को अब ढूंढिएगा नहीं?
1: पता नहीं क्यों मेरे पांव आगे नहीं बढ़ रहे। आ यहां आड़ में हो जाए। कुछ संदेह सा हो गया है, संदेह का निराकरण तो होना ही चाहिए। मालविका का ये साथ श्रृंगार, इन्हीं बातों से तो मेरा जी जल जाता है।
2: क्यों सखी, पैरों पर ये महावरी रंगाई पसंद आई?
3: अपने पैरों की प्रशंसा करते मुझे लाज लगती है सखी। अच्छा सखी, ये तो बताओ कि श्रृंगार की इतनी बढ़िया कला तुम्हें सिखाई किसने?
2: सच सच कह दूं,
4: ये कला मैंने स्वयं महाराज से सीखी है।
3: सच? बड़े भाग्यवान हो, इतने पर भी तुम्हें तनिक भी घमंड नहीं।
2: पर मैंने जो कुछ सीखा है वैसी कला दिखलाने योग्य तुम्हारे सुंदर चरण पाकर आज तो मुझे अवश्य घमंड हो गया है। हाँ
3: लो, तुम्हारा एक पैर तो रंगा गया।
2: आहा, ये पैर तो लाल कमल के समान खिला पड़ रहा है। लाओ अपना दूसरा पैर तो। मैं तो मनाती हूँ कि तुम सदा महाराज के अंक में रहो।
3: सखी ऐसी बेसिर पैर की बातें ना कहा करो।
2: जो कहना चाहिए वही तो कह रही हूँ। हाँ
3: मैं तुम्हें प्यारी हूँ इसीलिए।
2: मुझे ही नहीं तुम महाराज को भी प्यारी हो।
3: ये सब झूठ है, उनका तो मुझ पर तनिक भी प्रेम नहीं।
2: सयानों का कहना है कि प्रेम की परीक्षा प्रेम से ही होती है। हाँ
3: क्या ये सब अपने मन से ही करती जा रही हो?
2: ये प्रेम पगे शब्द स्वयं महाराज ने अपने मुंह से कहे हैं।
3: सच? पर सखी उधर महारानी का व्यवहार देखती हूँ तो रही से ही आशा भी मिट जाए।
2: अरे पगले, भौरों के डर से कोई कानों में आम्रमंजरी पहनना थोड़े ही छोड़ देता है। लो इस पैर में भी महावर लग गया, अब इन दोनों पैरों में नूपुर पहना दूं? लो अब उठकर इस अनफूले अशोक की इच्छा पूरी करो। अरे क्या सोच रही हो?
3: सखी यदि कभी मुझ पर कोई विपत्ति आए तो मेरा साथ ना छोड़ देना।
2: अरे मेरा तो नाम ही बकुलावली का है, मैं तो जितनी ही अधिक मसली जाऊंगी उतनी ही अधिक सुगंध दूंगी।
5: वाह बकुलावली का वाह। मित्र बकुलावलिका ने बड़ी चतुराई से मालविका के मन की था लेकर हमारा प्रेम प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उसके नाना करने पर भी उसे एकदम पक्का कर लिया। आज हमें विश्वास हो गया कि प्रेमियों के प्राण सचमुच ही दूतियों की मुट्ठी में रहते हैं।
6: महाराज उधर देखिए, मालविका ने अशोक के कोमल पत्तों का गुच्छा कानों में लटका लिया और अब अपने बाएं सुंदर सजीले पांव से ये किया उसने अशोक पर प्रहार।
5: यदि इन चरणों की पूजा पाकर भी अशोक न फूला तो दोष इनके चरणों का नहीं ही अशोक ही निकम्मा समझा जाएगा। मित्र हम लोगों को किसी बहाने उनके पास चलना चाहिए।
6: तो आइए महाराज, मैं कुछ खेल खेलता हूं। मालविका, क्या हमारे प्यारे अशोक पर अपने पैर से प्रहार करके आपने कोई अच्छा काम किया?
3: आई गौतम, महाराज भी
6: क्यों रही बकुलावलिका, सब कुछ जानती हुए भी तुमने इन्हें ऐसी धृष्टता करने से रोका क्यों नहीं?
3: आर्य गौतम, मैं आर्य, इसने धृष्टता जानबूझकर नहीं की थी, महारानी धारणी की आज्ञा का ही इसने पालन किया है। फिर भी हम दोनों महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करती हैं।
5: अच्छा तो कोई बात नहीं, उठो मालविका, हमारा हाथ पकड़ कर उठो।
6: ठीक है ठीक है ठीक है, महारानी की आज्ञा तो माननी ही चाहिए थी।
5: क्यों भद्री, तुम्हारा ये किसलय कोमल बायां चरण अशोक वृक्ष पर लगने से दुखने तो नहीं लगा है? लजाओ नहीं विलासिनी, बोलो।
3: सखी महारानी को जाकर सूचना दे कि उनकी आज्ञा अनुसार हमने।
2: अरे

0: महाराज से जाने की अनुमति तो ले।
1: भद्री, तुम जा सकती हो, परंतु इससे पहले हमारी एक बात सुननी होगी।
2: मालविकाग्नि मित्र, महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण अभी आप सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार एवं निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गीतकार सुधाकर शर्मा से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे सामने एक खास मेहमान बैठे हैं। आप हैं सुधाकर शर्मा। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधाकर जी।
3: मंदाकिनी जी नमस्कार। मेरे सभी उन श्रोताओं को जिन्होंने मेरे गानों को सुन सुन के मुझे विविध भारती के स्टूडियो तक पहुंचा।
2: सुधाकर जी, आपके हर गीत के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और मुझे तो आप खुद एक बहुत बड़ी कहानी लग रहे हैं। कितनी सारी कहानियां, घटनाएं है ना, अनुभव आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि चुनरिया शब्द आपके लिए इतना लकी साबित हुआ और आपने इस चुनरिया पर लगभग 190 गाने लिख दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है आप टाइप्ड नहीं हुए, तो इस शब्द में ऐसी क्या खासियत थी कि हर बार आपने नए गीत नए रंग में लिख दिए?
3: देखिए, ये मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हाँ। और हरियाणा में चुनरिया एक जेवर के रूप में मानी जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो मेरी माँ के पास भी एक चुनरिया थी। वो तीज त्योहारों पे ही सब ओढ़ा करती थी। तो मैंने पहले किसी लेडीज कपड़े का नाम सुना तो वो चुनरिया ही थी। तो मेरे जहन में वो एक बात थी। तो बड़ी ही ये लक और अनलक की बात ऐसी है कि जब ये पहली चुनरिया मेरी हिट हुई, ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की, उसके बाद एक फिल्म और मिली हमको और वो फिल्म थी हेलो ब्रदर। उसमें भी सलमान भाई थे।
2: हाँ हाँ।
3: तो उसमें भी हमको एक गाना लिखने के लिए मिला। तो मैंने वहां फिर एक चुनरिया लिख दी, सर की जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई।
2: बिल्कुल।
3: वो उससे भी बड़ा साबित हुआ। हाँ। और मुझे लगा कि ये शब्द मेरे लिए लकी है क्योंकि दोनों गाने वही थे।
2: मतलब इस वाले गीत में कोई डिमांड नहीं थी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की,
3: नहीं,
2: थी
3: नहीं,
2: कि चुनरिया पर ही आपको
3: नहीं,
2: गीत लिखा।
3: मैंने खुद लिखा। उन्होंने कहा कुछ ऐसा एक रोमांटिक चाहिए। मैंने हिमेश भाई को रिक्वेस्ट किया कि हिमेश भाई हमारी चुनरिया हिट हुई है तो एक चुनरिया और दे देते हैं, क्योंकि उसको तो 4-6 महीने हो गए और इसको बनने में साल भर

0: लगेगा तब तक वो ये आ जाएगी। और उन्होंने मेरी बात मान ली, और ये हम किसी की चॉइस पे नहीं था, मेरा और हिमेश भाई का एक
1: आपस का।
0: कॉल था और हमने ये गाना लिखा।

0: उसमें जो दूसरा गाना मैंने लिखा, जो आप टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप्ड में इसलिए नहीं हुआ कि मैंने ऐसा नहीं सिर्फ चुनरिया ही लिखी। लगभग 5,000 गाने मेरे रिलीज हैं, तो 5,000 चुनरिया तो नहीं है। और मैंने हर चुनरिया अलग स्टाइल में लिखी,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल अलग मैंने किया। लक की ऐसी बात है कि एक जिस म्यूजिक डायरेक्टर के पास भी मैं गया, जिस प्रोड्यूसर के पास भी गया, उसने कहा यार एक चुनरिया मेरे लिए भी।
1: अच्छा,
0: ऑन डिमांड पे चुनरिया चलती थी। ये ऐसा हुआ कि एक बार शानुदा एक फिल्म के प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो मेरे को वो मिले दिल्ली में। दिल्ली में जब मिले तो मैंने कहा दादा आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो मैं गाना तो यार मेरे से लिखवाओ, तू लिखेगा? हाँ क्यों नहीं लिखूंगा, कल घर पे आ जा। साथ में ही फ्लाइट में थे हम लोग, तो वो शायद कलकत्ता जा रहे थे, मैं यहाँ आया और अगले दिन मैं उनके पास चला गया और हम लोगों ने 6 गाने लिख लिए। 6 गाने के बाद उन्होंने मेरे को बोला था सुबह आना पड़ेगा 7 बजे, क्योंकि 10 बजे मैं रिकॉर्डिंग में जाऊँगा। मैंने कहा सर मैं कभी 7:05 पे नहीं आऊँगा, लेकिन एक बात मैं बताऊं उस आदमी की, टाइम का क्या पंक्चुअल आदमी है। मैं घर पे बेल बजाई तो दरवाजा भाई नहीं खोला,
1: कुमार सानू
0: को जगह ही रहता था और फुल तैयार, बाजा रखो, हाँ बोल। हम लोग बैठ जाते थे, सारा जब काम हो गया तो मेरे को बोलता है, शायद भाभी ने बोला, वो अंदर से एक आवाज आई कि कंप्लीट हो गए गाने के? हाँ। ना भाई साहब इसमें आपका वो लक्की गाना तो है ही नहीं,
1: चुनरिया।
0: चुनरिया। और नेक्स्ट डे दादा ने फिर वो उस फिल्म में भी चुनरिया मुझसे लिखवाई।
1: तो कौन सा गाना था?
0: रंगलीनी चुनरिया ऐसा एक गाना था। इत्तफाक से वो फिल्म में रिलीज नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चलता रहता है।
1: तो आपने अभी जैसा कि बताया हिमेश रेशमे के साथ बहुत सारे गाने कंपोज किए और वो सब सुपर डुपर हिट हुए। इनसे पहले आप किन किन संगीतकारों की संगत में आए, उनसे भी प्रभावित हुए होंगे, उनके भी कुछ अनुभव आपसे जुड़े होंगे?
0: जी जी, मैंने पहले तो संगीत के बेताज बादशाह शंकर जयकिशन, तो शंकर जी के साथ जुड़ा और उनके साथ फिल्म की मैंने, फिर एक फिल्म मैंने की कल्याण जी आनंद जी के साथ, लेकिन वो सिटिंग तक ही रह गए गाने, वो बाहर नहीं आए। एक फिल्म मैंने नैयर साहब के साथ भी की।
1: अच्छा,
0: ये सारी फाइलें जो है ना वो सब वो है जो इसमें मेरे गाने रिलीज नहीं हुए, बट उन लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने उन लोगों के साथ जो काम किया, उनसे मैंने सीखा बहुत। भले ही वो गाने मेरे नहीं आए, लेकिन मैंने सीखा बहुत। और सीखने की हद यहाँ तक थी मेरे अंदर कि मैं हमेशा जो है ये सोचता था कि अगर मेरे पास कोई काम आ रहा है तो मैं किस म्यूजिक डायरेक्टर को लूं। जैसे एक फिल्म मेरे पास आई जिसमें मैं डायरेक्टर भी था, फिल्म थी सावन, तो मैंने कहा यार इसमें रविंदर जैन साहब को लेते हैं, तो मैं रविंदर जैन जी के पास गया। अब देखिए दादू से बड़ा राइटर मैं मानता नहीं, वो म्यूजिक डायरेक्टर और राइटर का अजीब कॉम्बिनेशन है।
1: जी, जी।
0: तो मेरे को सब लोगों ने डराया कि भाई वो उनको लेगा तो वो खुद ही लिखेंगे। मैंने कहा भाई वो तो है, लेकिन चलो मैं बात करता हूँ। मैं दादू के पास गया और एक दिन तो मैं ऐसी बातचीत उनसे कर करा के चला आया, तो मेरे को उठते हुए पूछा उन्होंने, क्या रे क्या काम से आया था? मैंने कहा दादू एक पिक्चर मिली है मुझे, आपके साथ करना चाहता हूँ। और तो करना मैंने कब मना किया है? मैंने कहा लेकिन एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गाने तू ही लिखेगा।
1: अरे क्या बात है।
0: हाँ बोले तो लिख लेना, कोई बात नहीं। हाँ? इसमें क्या है, कुछ नहीं लिख पाएगा तो मैं लिख दूंगा।
1: अरे वाह।
0: मैंने कहा दादा ठीक है, लेकिन गाना मैं लिखूंगा।
1: हाँ?
0: तो मैंने गाने लिखे और दादू ने म्यूजिक दिया और ये उनका बहुत बड़ापन था। उनके साथ जो बैठ के मैंने काम किया, और मैं ईमानदारी से बोलता हूँ कि मेरी राइटिंग में भी उन्होंने कई जगह ऐसे सजेशन दिए कि तू चाहे तो इसको ऐसा कर ले, नहीं चाहता है तो तेरा ठीक है। लेकिन मुझे उसमें एक और सम्मान देते हुए उन्होंने मुझे एक सीख दी कि अगर भाई कुछ सीनियर लोग अच्छी बात करते हैं तो उसको मानना चाहिए। उसके बाद मैंने दादू के साथ 3 पिक्चरें की, बाहर की पिक्चरें थी। मैं गीतकार था और प्रोड्यूसर को मेरे गाने पसंद आए तो बोले यार मैं रविंदर जैन से बात करूंगा, वो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जैन साहब ने मेरा कोई गाना रिजेक्ट नहीं किया।

0: और एक दिन मुझे फोन करके एक फिल्म के लिए बोले, अरे तेरा एक कागज उड़ता उड़ता इधर आ गया है। मैंने, दादू एक फिल्म में मैंने एक गाना लिखा है प्रोड्यूसर के लिए, वही आया होगा आपके पास। बोले हाँ कल रिकॉर्डिंग है आ जाना।
1: अरे वाह
0: तो इतने ग्रेट थे,
1: जी
0: वरना कहाँ रविंद्र जैन और
1: जी
0: कहाँ सुधाकर शर्मा,
1: जी
0: क्यों मेरे गाने लेंगे वो।
1: सही
0: देखिए
1: बात है
0: रविंद्र जैन इतने महान थे कि मैं बताऊं कि उनके घर में जब हम जाते थे, कभी भी बांद्रा जब अगर हमको जाना है तो एक प्यारे भाई और एक रविंद्र जैन, मतलब इनसे बिना मिले आ ही नहीं सकते।
1: जी
0: तो जैन साहब के घर जब भी हम लोग जाते थे तो जाते ही बोलेंगे, क्या रे वो शिमला वाले वो बने हैं चावल
1: अच्छा
0: और कश्मीर का राजमा है,
1: अरे
0: एक प्लेट में ला के दे। मतलब वो इस बात को जानते थे कि ये स्ट्रगलर हैं, आए
1: हाँ
0: हैं,
1: भूख
0: भूखे
1: लगी
0: प्यास लगी
1: होगी
0: होगी और ये मांगेंगे नहीं। लेकिन बिना
1: बहुत
0: खाए उस रसोई से भाभी ने, जो उनकी मिसेज थी, वो और दादू हंसते हुए विदा करते थे।
1: बहुत खूब
0: एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ, उससे पहले मुझे एक गाना आप सुनाइए।
1: हाँ
0: एक गाना है मेरा, फिल्म है शिखर,
1: गाना कौन सा है
0: गाना है नीले नीले आसमां में तू है, जगजीत जी का गाया हुआ।

0: ये गाना आपने जो सुना
1: जी,
0: ये वो एक दौर का गाना है। इसका एक अजीब किस्सा है। इंडस्ट्री में मैं किसी भी लिरिक राइटर से मिलता था तो वो बोलता था, मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, बोले मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ।
1: अच्छा
0: किसी म्यूजिक डायरेक्टर से पूछूं, मैं जॉन मैथ्यू की पिक्चर लिख रहा हूँ, वो मैं कहा सभी जॉन मैथ्यू साहब की पिक्चर लिख रहे हैं यार, तो यार क्या पिक्चर क्या होगी, अब कौन कर पाएगा वो मालूम नहीं। तो मुझे भी एक म्यूजिक डायरेक्टर, बरसात हो रही थी, सात बंगले में मिला, क्या सर मेरे लिए एक मुखड़ा और अंतरा लिख देंगे आप? मैंने क्यों? तो मुझे जॉन मैथ्यू को सुनाना है।
1: अच्छा
0: मैं
1: जी
0: बेचैन हो गया। मैंने
1: हाँ
0: कहा भाई ये रास्ता सही है, मैं भी

0: तक जाना चाहता हूँ ना, लेकिन जरिया तो मिलना चाहिए कोई। तो मैंने वो गाना किया और मैं जॉन मैथ्यू साहब के साथ अटैच हो गया और वो पिक्चर मुझे मिली। ये गाना शिखर सब गाने हो गए और जॉन साहब ने गाना पिक्चराइज कर लिया,
1: अच्छा
0: म्यूजिक बीट पे कुछ भी बोल बाल के पिक्चर करके आ गए और मुझे बुलाया, कहा कि सुधाकर मैंने गाना शूट करके ले आया हूँ। बहुत ही म्यूजिकल आदमी है वो, और बहुत ही मतलब मैं समझता हूँ कि मेरा अपना आकलन ये है कि मेरी जिंदगी में नंबर वन राज कपूर साहब और बिल्कुल पैरेलल जॉन मैथ्यू साहब, जो उनकी सोच, उनकी डायरेक्शन, उनका सब। तो मैंने कहा सर आप शूट करके आ गए, अभी मैं क्या लिखूंगा। बोले यही तो होना चाहिए, आप तो बोल रहे थे मैं कुछ भी करता हूँ, मैं ये करता हूँ मैं। और उससे पहले मेरी ट्यूनिंग इसलिए हो गई थी कि मेरे 5 गाने तो सिलेक्ट हो चुके थे। अब मैं सोचा ये गाना अगर मेरे हाथ से गया तो फंस जाऊंगा ना। तो मैंने कहा सर एक काम कर सकते हैं आप, गाना मुझे दिखाइए आप। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप देख लीजिए, तो एडिटर मुझे दिखाने लगा। तो मैंने कहा सर एक सजेशन है मेरा। हाँ बोलो। हमने कहा ये शॉट यहाँ से हटा दीजिए आप और इसको यहाँ लगाइए और इसको यहाँ लगाइए।
1: जी
0: तो एडिटर बोला इससे क्या होगा। जॉन सर बोले नहीं ये जो कह रहे हैं पहले वो करो। देखिए इतने बड़े डायरेक्टर और मैं कुछ भी नहीं, देखिए उनका पेशेंस ये था चलो मैं ऐसे कर लूंगा फिर देखता हूँ ये क्या करता है। और वो हो गया, और जैसे ही हुआ तो मैंने कहा कि ठीक है अभी गाना हो जाएगा। तो मैंने गाना लिखा नीले नीले आसमां में तू है, धरती की हलचल में तू है। वो हलचल में क्या था कि एक किसान हल चला रहा है,
1: अच्छा, धरती की हलचल।
0: हलचल। और फर्स्ट शॉट उनका था वो नीला आसमां दिख रहा था तो धरती की हलचल ये थी है। फिर एक फूलों का था नीले पीले फूलों में तू है, ऐसा मेरे को सीक्वेंस मिल गया मुखड़े का और मैंने गाना लिख दिया और ये विजू शाह ने बना दिया।
1: अरे वाह, संगीतकार
0: अब
1: विजु
0: पहली
1: शाह।
0: बार मैं संगीतकार विजू शाह के साथ काम कर रहा था तो विजू भाई भी बहुत खुश हो गए, बोले यार ये तो अच्छा बनेगा। अब अच्छा बनेगा वो बनते बनते ही बनेगा। जगजीत जी ने जब ये गाना गाया, अब जगजीत सिंह ऐसा गाना गाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन वो जॉन मैथ्यू साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए बड़े लक्की हैं क्योंकि उनकी सरफरोश की गजल उनकी सुपर डुपर हिट हुई थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग फिल्म लाइन में एक शब्द से बहुत डरते हैं, वो होता है लक्की। लकी शब्द किसी ने कह दिया तो हम चुप हो जाते हैं, अनलक्की कह दिया तो डर जाते हैं। तो लक्की सब में है ना,
1: हाँ
0: दावा नहीं कर सकते अपन।
1: जी जी
0: तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरे लिए लकी है। मैंने ठीक है
1: ओहो
0: मेरे लिए भी लकी हो गए। उनका इस तरह का गाना मतलब उन्होंने एक दिन मुझे मिले, मैंने कहा सर वो आपका जो गाना है ना डीएवी जयपुर स्कूल में प्रेयर बना हुआ है।
1: जी
0: बोले तू एक काम कर मेरे घर फोन लगा।
1: हाँ
0: मैंने उनके घर फोन लगाया मिसेज को, वही गाने की ट्यून बज रही थी। तो ये
1: ओ
0: मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था।
1: बिल्कुल,
0: तो ये इस गाने की कहानी है,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सुंदर
0: खूबसूरत गाना था।
1: जी। और जगजीत सिंह की आवाज में
0: जी जी
1: ये गाना बहुत ही गहरा गाना बन
0: और
1: गया।
0: मेरे लिए मतलब वो एक तोहफा है उनका दिया हुआ, ये एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया,
1: गाया।
0: उसके बाद कुछ हो नहीं सका।
1: सुधाकर जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे उन बातों को जानना जो हम सपनों में भी नहीं सोच सकते, और
0: जी
1: कहीं हमें ना पढ़ने को मिलेंगी ये
0: जी
1: बातें,
0: जी
1: ना जानने को
0: जी
1: मिलेंगी। एक गीत तो हम सुनेंगे आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी इससे पहले कि हिमेश रेशमिया के साथ आपने बतौर गीतकार बहुत काम किया, काफी गीत लिखे। आप दोनों ने मिलकर म्यूजिकल सिम्फनी भी बनाई थी, तो उसके
0: जी
1: बारे में भी हम जानना चाहते हैं। और हिमेश जी के साथ काम करने का जो ये अनुभव था, एक सफल अनुभव, ये कैसा था, ये भी हम जानना चाहते हैं।
0: मंदाकिनी जी आपने एक्चुअल में दुखती रग पे हाथ रख दिया। हिमेश भाई एक तरह से मेरे जिंदगी में उस टाइम पे आए फरिश्ता बन के, जब मैं बहुत ही नर्वस था, बेकार था और मुझे ये लग रहा था कि अब मुझे बंबई छोड़नी पड़ेगी।
1: अच्छा
0: और वो काम करने का अनुभव ऐसा लग रहा था कि मैं एडजस्ट कैसे कर पाऊंगा क्योंकि उनकी और मेरी उम्र में बहुत फर्क है। मैं उनके पिताजी का दोस्त हूँ, उसकी उम्र मेरे बच्चों जैसी है। लेकिन हम लोगों ने तय किया कि वो मुझे सर बोलेगा, मैं उसे सर बोलूंगा और हम लोग काम करेंगे।
1: जी
0: उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो गाना जब बनाते हैं ना खुद गाते हैं, वो गा के गाना बनाते हैं। तो उनको मालूम होता है कि ये शब्द जो जो मैं गा रहा हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। और वो ट्यून जो है ना गा गा के बनाते हैं, वो ट्यून जो है ना ऐसा

0: नहीं कि वो किसी साज के मोहताज नहीं है,
1: अच्छा,
0: साज उनका मोहताज है,
1: अरे वाह।
0: वो गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि अगर उनको एक शब्द में ऐसा लगे, जैसे एक गाना था, मेरे को एक दिन बोले, गाड़ी में हम लोग जा रहे थे कहीं, वो गाना है बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: अरे वाह।
0: तो ये गीत की कहानी ऐसी है
1: हाँ
0: कि मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए
1: हाँ
0: थे,
1: हाँ
0: तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो।
1: हाँ
0: मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है यार,
1: हाँ
0: ऐसा थोड़ी है कि कोई वर्ड ऐसा हो सकता है जो आज तक आया ही नहीं हो। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है,
1: बर्दाश्त
0: बर्दाश्त। लेकिन ये अनम्यूजिकल है यार, इसको आप बनाओगे कैसे? बोले
1: बिल्कुल।
0: मैं बनाऊंगा। मैंने कहा देखिए, हर आदमी बोलता है ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बर्दाश्त की हद हो गई, ये बर्दाश्त के आगे, बर्दाश्त
1: बिल्कुल
0: के कितने हैं?
1: बहुत
0: तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता।
1: क्या बात है,
0: फिर
1: बहुत
0: मैंने
1: खूब।
0: दूसरी लाइन की, अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने
1: एकदम
0: तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया और ये सुपर डुपर हिट गाना हुआ।
1: गजब सर, गजब गाना। क्या तो के साहब और सुनिधि चौहान ने गाया है,
0: बहुत
1: और
0: सुंदर
1: क्या म्यूजिक और क्या वर्डिंग से सर।
0: ये गाना, एक बार सुनाइए आप।
1: तो चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: भाई ये गीत तो सुधाकर जी हम बहुत बार बजाते हैं और इस गीत को सुनने के बाद तो एक अलग ही ऊर्जा हम अनाउंसर्स में भी आ जाती है।
1: ये तो ये कभी कभी कोई गीत जो है ना ऐसे भी बनता है। तो हिमेश जी के साथ काम करने का मजा इसी में था, वो इतना इन्वॉल्व होते थे, वो ऐसा नहीं करते थे यार इसको लिख के ले आना, बैठ के गाना बनाते थे। हम एक ही सोफे पे रहते थे, इस कोने पे वो और इस कोने पे मैं। उनको कुछ लगता था तो बोलता था यार ऐसा कुछ सर बताइए, इसको निभाइए, इसको ऐसा कीजिए। तो वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो हिमेश जी के बाद मुझे मिस होता है वो, कि अब जो है ना वैसा माहौल
0: मिलता
1: नहीं
0: है।
1: है।
0: ये
1: मैं
0: तो सर फीलिंग्स का एक मामला है जहां एक संगीतकार और गीतकार बैठकर एक फीलिंग्स के साथ कुछ चीज को
1: हाँ,
0: क्रिएट कर रहे
1: लेकिन
0: हैं।
1: नहीं नहीं ला पाते ना। अभी बहुत दिनों बाद ऐसा होता है, मेरे एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सतीश देहरा, जो राजस्थान से ही हैं और काफी उन्होंने हिंदी में भी काम किया है। उनके साथ जब मेरी सिटिंग होती है तो बाकायदा रविंदर जैन की थेरी पे भी चलता है, वो उन्हीं का शागिर्द है, तो ढोलक भी होती है, वो बाजे पे होते हैं, मैं लिखता हूँ। जब वो सिटिंग होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बट ऐसा भी काम करना पड़ता है, वो बोलते हैं व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप पे तो आज तक कोई गाना नहीं भेजा। मैं बोलता हूँ जब आपके पास टाइम हो आप मुझे टाइम दीजिए, मैं आ जाऊँगा और मैं आपके साथ करूँगा।
0: कितनी बड़ी बात है कि एक गीतकार खुद कह रहा है कि मैं आ
1: मैं
0: जाऊंगा,
1: आ
0: वक्त
1: जाऊँगा, तब
0: दूंगा।
1: वक्त दूंगा, तभी तो गाना होगा। अभी हम लोग निखिल कामत के साथ में बैठा था, तो उसमें अगम निगम साहब वो
0: सोनू निगम
1: गाना,
0: जी के पिताजी।
1: जी वो गाना गा रहे हैं। तो बैठे बैठे हमने उनको भी फोन कर लिया, वो भी आ गए। तो आप यकीन कीजिए मुझे कोई शर्म नहीं है। वो करते करते एक सजेशन अगम साहब ने दे दिया कि यार यहाँ कुछ ऐसा होगा ना तो मजा आ जाएगा। हमने मान लिया। तो ये जो सिटिंगों का दौर है इसलिए वो गाने याद रहते हैं। अगर आप इस तरह से सिटिंग करेंगे कि आप मोबाइल पे भेज दीजिए मैं आप पे भेज दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। हिमेश जी के साथ हमेशा मेरे को ये सब गोल्डन
0: मिला।
1: मिला कि हमने जितनी भी पिक्चरें की हमारी सब हिट हुई और हम लोग बैठ के गाना डिस्कस करते थे, हम लोग सजेशन भी देते थे, फिर हम सिंगर भी मिलके तय करते थे कौन गाएगा कौन नहीं गाएगा, वो गाएगा तो कैसा लगेगा, ये गाएगा तो कैसा लगेगा। और फिर हम लोग मतलब स्टूडियोज में भी साथ रहते थे, पूरा दिन हम साथ में रहते थे, कभी वो मुझे छोड़ते नहीं थे। बाद में मेरे पास गाड़ी भी आ गई थी तो बोलते थे इधर खड़ी कर दो, बैठो गाड़ी में। एक ही गाड़ी में मुझे लेके जाते थे, घर पे लाके छोड़ते थे, और मुझे इतना प्यार सम्मान दिया कि मैं बस वो मिस करता हूँ। काम तो चल रहा है, सबके चलते रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: उसमें कोई
0: बहुत
1: बात
0: बड़ी बात
1: नहीं।
0: आपने बताई कि किस तरह से एक गीतकार और संगीतकार और गायक कलाकार उनके बीच में एक कॉम्बिनेशन, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए,
1: जी
0: तब जाकर एक अच्छा गीत रचा जाता है। हम आपके बारे में जब पढ़ रहे थे तो पता चला कि आप जो अपने गीत लिखते नहीं हैं और वैसे ही बता देते हैं, मतलब कोई डायरी मेंटेन नहीं कर रखी है
1: नहीं नहीं
0: आपने,
1: नहीं
0: और
1: नहीं
0: आपसे कहा जाता है कि गीत लाइए, है ना,
1: हाँ जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा कुछ आप नहीं करते हैं। ये कैसे होता है, अचानक गीत आप कैसे रच देते हैं?
1: ये मुझे भी नहीं पता। वो जो अचानक जो मेरे को सूझती है वो शायद ईश्वर का कोई देन है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं कभी ऐसा कागज़ पे लिख के, अनु मलिक साहब कितनी बार मुझे बोले यार तू कुछ मुखड़े दे मेरे को, शायद उनको लगता होगा कि मैं क्यों नहीं देता, लेकिन मैंने हर बार यही बोला भाई मेरे पास मुखड़े होते ही नहीं, आप कोई सिचुएशन बताओ मैं घर आ जाता हूँ मैं लिख दूंगा।
0: आपके पास कोई अपना रिकॉर्ड नहीं है गीतों का कि ये मेरे गीत हैं, डायरी के पन्ने पलट के अगर हम पढ़ें
1: नहीं
0: आपके
1: नहीं
0: गीतों
1: नहीं
0: को?
1: नहीं नहीं अभी मेरे बेटे ने कुछ कलेक्शन किया है, जो रिकॉर्ड हो गए वो हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो मैंने एक आपको बताया कि लक और अनलक बस वो उसी पे चलता रहता। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब फर्स्ट टाइम प्यारे भाई के साथ काम करने गया था, तो मेरी एक आदत है मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ आ भाई लिखो। तो वो लिखो जैसा शब्द जो है ना मेरा बहुत फेमस है, तो या तो म्यूजिक डायरेक्टर लिख लेता है या मेरे साथ मेरा कोई असिस्टेंट होता है
0: वो लिख
1: उसको
0: लेता
1: ले
0: है।
1: जाता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ।
0: अच्छा,
1: और मैं अगर लिखता हूँ तो गाना रिकॉर्ड नहीं होता।

0: तो मैं डर के मारे भी नहीं लिखता।
1: अच्छा
0: हमने कहा फायदा क्या इसका, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। तो ऐसा है, और इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो जो चली आ रही है वो चली आ रही है।
1: हाँ
0: तो अभी मैं जब वहाँ पे गया तो उन्होंने एक ट्यून सुनाई तो मेरे मुंह से निकल गया लिखो, और मैं घबरा गया एकदम। मैंने कहा लिखो क्या, अभी तो बाहर ही निकाल देंगे। मैंने कहा सर वो मेरे पास कुछ पेन और कागज नहीं है। मैं सक पका गया, और वो इतने ग्रेट हैं वो भी समझ गए कि इसने बोल दिया। मैंने कहा प्यारे भाई वो मैं लिखता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा गोरख भाई इसका असिस्टेंट बन जा, तू लिख ले। तो वो गाना गोरख भाई ने लिखा,
1: तो
0: मैंने
1: हाथों
0: लिखा,
1: हाथ आप पंक्ति लिखवा देते हैं,
0: बिल्कुल
1: आपको
0: लिखवा देता।
1: सिचुएशन बतानी पड़ती है, ये
0: हाँ
1: एक्टर है
0: जो
1: ये
0: भी
1: एक्ट्रेस है,
0: सिचुएशन
1: बहुत
0: बताएंगे
1: खूबसूरत।
0: लिखूंगा। और फिर जब रिकॉर्डिंग होती है, मैं आज तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग मिस नहीं की है,
1: हर रिकॉर्डिंग में आप
0: हर
1: रहते
0: रिकॉर्डिंग
1: हैं।
0: में मैं रहता हूँ। और रिकॉर्डिंग खोते वक्त भी मेरी चेंजिंग चालू रहती है। मुझे लगता है कि ये मैंने लिखा तो है लेकिन सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्रिटिक बन के अपना गाना सुनता हूँ रिकॉर्डिंग में, तो कई चीज़ें जो है ना उसमें मेरी इम्प्रूव हो जाती हैं।
1: तो कभी कोई ऐसा गीत आपने लिखा हो जो आपकी इच्छा के विपरीत रहा हो, आपकी इच्छा नहीं रही हो ऐसा गीत लिखने की, लेकिन प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, संगीतकार हैं, वो चाहते हो कि सुधाकर जी इस तरह का गीत लिख कर दें, ऐसी स्थिति कभी आई?
0: ऐसी स्थिति आई थी लेकिन मैंने वो छोड़ दी,
1: नहीं।
0: लिखा नहीं हमने। हमने कहा आप किसी और से लिखवा लीजिए, क्योंकि हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे वो जब मैंने छोड़ा तो मुझे ये लगा कि अगर मैं ऐसे छोड़ूंगा तो लोग मुझे छोड़ देंगे, एक दो बार की तो ठीक है। फिर मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, अगर कोई ऐसा भी चाहता है तो उसकी बात को सुनते हुए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब मुझे कर लेना चाहिए। तो उसका जो है ना ये रहा कि जैसे कि मैंने एक पिक्चर में गीत लिखे, जैनियों की एक पिक्चर थी। अब उसमें जब मैं गीत लिख रहा था तो मुझे उस फिल्म में कहानी को गीत में पिरोना था, तो वो मुझे बताते थे कि भाई मेरे को ऐसा लाइन चाहिए, मेरे को ये लाइन ऐसी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, वो डिक्टेट करते थे बाकायदा जो डायरेक्टर थे हमारे।
1: अच्छा।
0: तो अब उसमें मैं बंध गया कि मुझे क्या करना है, बट मैंने वो भी लिखा और वो बहुत लोगों को पसंद भी आया। तो ऐसा होता तो है कि लोग जो है ना कुछ और लिखवाना चाहते हैं, लेकिन मोस्टली मैं ऐसे काम को छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरे से नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा तो काम करके क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं है।
1: तो एक गीत सुन लिया जाए आपकी पसंद
0: एक
1: का।
0: जी मेरी पसंद का एक गीत आप मुझे सुना दीजिए, ये है आपका तेरी चुनरी बन्नो लाखों की।

0: 5000 गाने लगभग लिखे और रिलीज भी हो गए, 1500-1600 एल्बम, और राजस्थानी में आपने 36 फिल्में लिखी हैं अब तक।
1: जी जी
0: इसके अलावा हरियाणवी फिल्में लिख चुके हैं आप 4-5, भोजपुरी में भी आपने 3-4 फिल्में लिखी हैं। तो इतना काम आपने किया, जैसा कि आपने बताया भी था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, मैंने फिल्में भी डायरेक्टर की और साथ में आपने भजन भी लिखे हैं,
1: जी
0: इतने सारे काम सुधाकर शर्मा कैसे कर लेते हैं और इनके अनुभव क्या रहे इतने सारे चीजों को एक साथ लेकर चलने के?
1: होता क्या है कि हम खुद एक मुसाफिर हैं और हमारी मंजिल जो है ना वो बड़ी दूर है, मतलब ठिकाने मिलते हैं, मंजिल नहीं मिलती। मंजिल तो आज भी नहीं मिली
0: जी
1: है, लेकिन ये एक ऐसा विधा है कि इसमें आप जो है ना, जैसे कि जब राजस्थानी जो फिल्मों में मैंने गीत लिखे, मैं हरियाणे का हूँ और राजस्थानी फिल्मों में मेरे सुपर डुपर हिट गाने हैं। वीना कैसेट कंपनी
0: जी
1: हमारे केसी मालू जी की है,
0: बिल्कुल,
1: वो अभी भी उनका मैं काम कर रहा हूँ, वो साल में मेरे से एक दो काम हमेशा कराते हैं और बहुत सम्मान भी देते हैं और बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। तो जो अलग अलग भाषाओं का रंग है वो अगर आपने समझ लिया तो भाव तो सब में एक ही होता है, भाव कोई अलग नहीं होता।
0: जी
1: रही भजन की बात, तो चूंकि मेरी फैमिली, मेरे पिताजी, जब से मैंने देखा है कि वो हमेशा रामायण पढ़ते हैं और पता नहीं कितनी बार वो पढ़ चुके हैं। भजन के बारे में मैं एक खास बात आपको बताऊं कि मेरे बेटे का एक म्यूजिक कंपनी है ओडली के नाम से,
0: ओडली,
1: ओडली
0: अच्छा यहाँ पर
1: म्यूजिक,
0: भी चुनरी आई,
1: चुनरिया अंडरस्टूड है।
0: हाँ जी
1: तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस कंपनी के लिए रामायण करूं, और ये रामायण करने का बीड़ा जब मैंने उठाया तो मैंने इसमें सिंगर चुने, अमित कुमार।
0: अरे वाह,
1: अब अमित कुमार को सिंगर जब मैंने लिया तो अमित

0: कमर्शियल नहीं है, मैं कमर्शियल गाना नहीं लिखूंगा आज, जो मेरे दिल में आएगी वो लिखूंगा। कहने लगे ठीक है लिखो। हकीकत यह है कि जब मैं सोचा कि क्या लिखूं, तो मैंने कहा मैं अपने जैसा गाना नहीं लिखता,
1: मतलब जो सुधाकर जी की पहचान है वैसा गाना नहीं
0: वैसा
1: होगा।
0: गाना नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा फिर। तो मैंने गुलजार साहब को याद किया कि गुलजार साहब जैसा लिखना चाहिए, बट ये सोचने बात अलग है, लिखना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मैंने एक गाना लिखा, उसमें मैंने जिंदगी को प्ले किया, तूने जिंदगी में आके जिंदगी जिंदगी बदल दी। ऐसा करते करते ये गाना जब लिख लिया मैंने, तो हिमेश भाई ने बना भी दिया। तो हिमेश भाई बोले कि सर लेकिन ये गाना आज की डेट में कौन लेगा। हमने कहा कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए, कोई ले ना ले, आप मेरे लिए बनाओ ना ये गाना। तो खैर गाना बन गया। अब ये सिचुएशन निकल गई हमराज में
1: बहुत सुंदर
0: कि
1: थी ये।
0: ऐसा एक गाना चाहिए, तो मैंने कहा हिमेश भाई इनको सुना दो ये गाना, और ये गाना हमारा लग गया। और ये गाने की जो असल कहानी है वो ये है कि ये गाना मुझे बेस्ट लिरिक राइटर के लिए फिल्म फेयर में नॉमिनेशन तक लेके गया। और
1: अरे
0: हकीकत बात और मैं बताऊं कि ये गाना जिस राइटर को मैंने सोच के लिखा था, उस साल का अवार्ड उस राइटर को मिला, मुझे नहीं मिला।
1: अरे
0: गुलजार साहब को उस साल का मिला। तो
1: जी,
0: कोई बात नहीं, वो तो हमारे
1: हाँ
0: एक लीजेंड है भाई, लेकिन इस गाने की उपज उनकी वजह से
1: हाँ
0: हुई,
1: जी।
0: हालांकि उन जैसा इसमें कुछ भी नहीं है।
1: नहीं,
0: और मैं
1: आपने
0: बस
1: उनको एक प्रेरणा स्रोत माना कि
0: हाँ,
1: मैं उनको ध्यान में रखकर अपनी एक रचना
0: वो
1: गढ़ता हूं।
0: हमेशा कुछ अलग ही करते हैं ना।
1: हाँ जी जी
0: तो
1: जी
0: मैंने जिंदगी को प्ले करके सोचा कि मैं भी कुछ करूं,
1: बहुत सुंदर
0: और वो
1: गाना
0: हो
1: है
0: गया।
1: ये। सुधाकर जी, गीत लिखने का क्या तरीका बदला है जब सोशल मीडिया आ गया है? फिल्मी गानों के प्रति हमारा टेस्ट बदल गया है, खासतौर से युवा लोगों को। क्या ऐसे में गीतकार प्रभावित हुआ है?
0: बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर एक तलवार ये होती है कि कुछ ऐसा करो कि एकदम हुक लाइन पहले होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द गाना लिखा जाता है। और उस गाने को लिखने के चक्कर में गीतकार का अपना थॉट मर गया है कि वो जो कहना चाहता है कहाँ कहे फिर। और अभी तो लोग बोलते हैं एआई से करा लेंगे, इससे करा लेंगे, उससे करा लेंगे, लोग करा भी रहे हैं,
1: अच्छा,
0: बट
1: लेकिन
0: एआई जो है ना आपको रास्ता दिखा सकता है, चल नहीं सकता, चलना आप ही को पड़ेगा। वो इमोशन नहीं ला
1: बिल्कुल,
0: पाएगा,
1: सबसे बड़ी
0: वो
1: बात है।
0: कहानी नहीं ला पाएगा,
1: वो साउंड
0: टेक्निकली
1: कर
0: वो
1: देगा।
0: साउंड कर देगा, लेकिन वैसा नहीं कर सकता वो।
1: तो एक गीतकार के सामने ये समस्या आ गई, क्योंकि युवा डायरेक्टर भी आ रहे हैं, फिल्मों के
0: जी
1: निर्माता
0: जी
1: नए नए आ रहे हैं, नई
0: बिल्कुल
1: नई तरह की फिल्में, अच्छी फिल्में भी आ रही हैं,
0: हाँ,
1: बहुत
0: बहुत
1: नए सब्जेक्ट के
0: बिल्कुल
1: साथ आ रही हैं। ऐसे में गीतों का जो फ्लेवर है वो भी बदला है, तो गीतकार को भी इसके लिए अपने आप को बदलना होगा। आप क्या इस बदलाव के लिए तैयार रहते हैं हर समय?
0: मैं बिल्कुल तैयार हूं, तभी आज तक काम कर रहा हूं। बट यहां पे थोड़ा सा एक मेरा अड़चन ये आती है कि बदलाव के लिए तो हम तैयार हैं, फोर्ड पने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो बदलाव हम थोड़ा संभाल के कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप जो है ना उसमें कुछ भी इस तरह के वर्ड डाल दें कि वो वर्ड डालने से हिट हो जाएंगे और बाद में पब्लिक उसको जूते मारे, उसका कोई मतलब नहीं होता। अभी पुराने राइटरों ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उन्होंने वो बात भी कही जो आज के फूहड़ पन्ने में कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा,
1: बहुत प्यारे तरीके
0: लेकिन
1: से,
0: बड़े प्यार से कहा, एक
1: क्लासिक
0: अंदाज
1: तरीके
0: से
1: से।
0: कहा, क्लासिकल कहा। अब आप उस चीज को नंगा कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सब चीजें जो है ना वो बहुत काउंट करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो किया है मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन सकता हूं, मेरी आने वाली पीढ़ी बोल सकती है कि मेरे दादा ने या मेरे नाना ने ये काम किया है।
1: हमारा आखिरी सवाल है आपसे। 5 पीढ़ियों के साथ आपने काम किया है, और
0: जी जी
1: ये अनुभव तो आपने हमारे साथ साझा किया। जो नए गीतकार या युवा लड़के लड़कियां इस लाइन में आना चाहते हैं, बतौर गीतकार, बतौर गायक कलाकार या संगीतकार के तौर पर भी, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मंदाकिनी जी, ये आपने धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि मैं किसी को संदेश देने लायक की स्थिति में नहीं हूं, मैं तो खुद ही संदेश लेता रहता हूं। बट मैं उनको एक ही बात शेयर करूंगा, एक तो पेशेंस रखें, दूसरा वो अपने आप को इतना बुद्धिमान न समझें कि जो उन्होंने लिख दिया
1: वो कालजयी हो गया।
0: वहां, वो ऐसा नहीं हो सकता है।
1: जी
0: दूसरा मैं आपको एक बात बताऊं, रिलेशन
1: जी
0: देखिए, आज हिमेश जी तक मैं जो पहुंचा, उनके फादर मेरे दोस्त थे, उनके साथ मैं काम करता था, और उन्होंने हिमेश जी के साथ मुझे लगाया। तो ये जो

0: पेशेंस है आपके पास, वो ऐसे ही नहीं आ गया, उसको आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं सुनील कौशिक, वो मेरे को एक दिन बोले कि यार जब भी हम लोग मिलते हैं तू मेरे को नमस्ते करता है यार, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला भाई क्यों, मैं नमस्ते करता हूँ तो अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं नहीं नहीं वो बात नहीं है, काम नहीं हो पाता यार। हमने सर काम जब किस्मत में होगा तब हो जाएगा, लेकिन संबंध तो बने होने चाहिए। तो लगभग मतलब 12-13 साल के बाद एक दिन उनका फोन आया, बोले यार एक गाना है आ जा। और छोटा भीम के लिए उन्होंने मुझसे गाने लिखवाए, और एक गाना ही नहीं समझ लो कि मैंने फिर 3 साल तक कंटिन्यूस उनके साथ काम किया। तो जो मैंने 12-13 साल नमस्ते की हो गई ना वसूल।
1: बिल्कुल
0: मैं एक बात जरूर और कहना चाहूंगा, होता क्या है नए लोगों में, जैसे कि मेरे को कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर मिलता है तो मिलते ही वो उसकी तमन्ना होती है सर मेरे लिए कुछ काम बताइए ना। भाई जो मेरे साथ 20 साल से लगे हुए हैं उनके साथ काम करूं, तू तो अभी अभी मिला है,
1: बिल्कुल
0: तुम पहले 2-4 साल मेरे साथ रहो तो सही, तो आप आइए काम।

0: ना भी मानूं, आया गया ये हुआ वो हुआ, मेरा पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो रिकॉर्ड हुआ था मेरा 82 में।
1: जी, 73 से 82 तक आपने इंतजार किया।
0: इंतजार किया, फिर 82 से 97 तक इंतजार किया।
1: दूसरे गाने का?
0: दूसरे गाने का नहीं, कोई गाना बाहर तो आए।
1: ओहो,
0: 97 में गाना बाहर आया, ओडली चुनरिया तेरे नाम की। इतना धीरज, आप डिप्रेशन में ना चले जाएं, आपका दिमाग खराब ना हो जाए, और आप ये ना सोच लें कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1: जी।
0: एक दिन की बात है कि मैं घर से निकला था और मैं बहुत परेशान था। परेशान ये था कि मैं नवरात्रे रखता हूँ,
1: अच्छा,
0: तो कंजके बिठाते हैं उसमें, और उसमें कोई 300 350 रुपए का खर्चा आता था। ये स्ट्रगल टाइम की एक बात बता रहा हूँ। तो हमने कहा कि एक काम करते हैं, व्रत तो रख लेता हूँ, कंजके वंजके नहीं बिठाएंगे, पैसा नहीं है। तो मैं घर से ऐसे ही चला, ये सोच के कि एक दुकान वाला है मेरी पहचान का, उसको बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो

0: 31 रुपए थे। तो ईश्वर पे भरोसा रखो और अपने काम पे भरोसा रखो,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ना
1: आपसे
0: कुछ
1: बात
0: होगा।
1: करके बहुत संबल मिला है सुधाकर जी,
0: जी
1: और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो भी इस बात से सबक सीखेंगे कि किसी भी काम को करने के पीछे कितनी मेहनत और मशक्कत होती है। अब आपके आने का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपने अपना इतना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला,
0: जी
1: विविध भारती के स्टूडियो आप आए, अपनी बातें, अपनी जिंदगी के वो पल, वो लम्हात हमारे साथ आपने साझा किए हैं, इसके लिए आपका हम तहे दिल से सुधाकर जी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
0: धन्यवाद मैं आपका करता हूं और विविध भारती का करता हूं, जिसे हरियाणा के खेतों से निकाल के आपके स्टूडियो तक
1: जी
0: ले आया, क्योंकि मेरा माध्यम आकाशवाणी विविध भारती यही रहा है, यहीं
1: जी
0: से मेरी शुरुआत थी।
1: जी
0: और आज मैं उस मुकाम पे हूँ कि जहाँ मैंने अपने उस्तादों को, बड़े बड़ों के मैंने देखे, बाहर सब फोटो लगे हुए हैं, हसरत साहब का फोटो लगा है, इतने सब, ये कभी मेरे ख्वाबों में थे, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि इन सब से मैं मिला हूँ।
1: जी और हम खुशकिस्मत है कि हम आपसे मिले हैं, आप विविध
0: धन्यवाद
1: भारती के स्टूडियो में आए, जिनके गानों को
0: जी
1: हम बोलते हैं कि चलिए, गीतकार हैं सुधाकर शर्मा, संगीतकार हैं हिमेश रेशमिया,
0: जी
1: आज वो सुधाकर जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है सुधाकर जी।
0: जी और श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: जी तो बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से हमारी ये महत्वपूर्ण बातचीत, और अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: ये था जाने माने गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 5 बजे हैं और अब है वक्त युवा श्रोताओं के मनभावन कार्यक्रम युववाणी का।

श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम युववाणी के आज के इस ताजा तरीन अंक के साथ मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो फ्रेंड ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोता मित्रों,

इस बारिश के मौसम का आगाज हो चुका है और इस बारिश के जो शुरुआत हुई है ना, यही मौसम को इतना सुकून से भर दिए है और सभी के दिलों में एक ठंडक सी आ गई है। श्रोता साथियों, स्टूडियो आने से पहले जब मैं अपनी छत पर चढ़ी तो मैंने देखा कि चारों ओर भीगा मौसम है। बारिश ने धरती का आंचल भिगो दिया है। प्रकृति के इस दृश्य को देखने जब हम छत पर जाते हैं या बाहर निकलते हैं तो ये जो आनंद है वो अलौकिक होता है। बारिश की नन्ही बूंदों ने पहले तो माटी को छुआ और पूरा वातावरण उसकी सौंधी महक से भर उठा। ऐसा लगा मानो इस महक को हमेशा हमेशा के लिए अपनी सांसों में बसा लूं। इसके बाद शुरू हुई रिमझिम वर्षा। ऐसा लगा कि आज तो इस वर्षा और माटी के सौंधेपन ने हमें पागल ही कर दिया है। भरपूर आनंद लिया साथियों मैंने इसका, और मौसम की इस पहली बारिश का आप भी आनंद लें इस गीत के साथ।

श्रोताओं, ये बारिश का मौसम और जब इस मौसम का आनंद लेने मैं अपनी छत पर ऊपर पहुंची तो मैंने देखा कि चारों ओर मकान पक्के नज़र आ रहे थे। पूरे मकानों में छत पर एक भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा था जो प्रकृति के इस दृश्य को देखने के लिए अपने घर से बाहर निकला हो। बाद में भले ही कुछ बच्चे भीगने के लिए छत पर आ गए, लेकिन शेष सभी कूलर की हवा में और पंखों की हवा में अपने को कैद कर रखे थे, अपना अस्तित्व छिपाए बैठे थे। क्या हो गया है इन्हें? साथियों, आज तो प्रकृति ने हमें कितना अनुपम उपहार दिया है ना, हमें यह पता ही नहीं। कितने स्वार्थी हो गए हैं हम प्रकृति से दूर होकर। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने आप से ही दूर होते जा रहे हैं? श्रोता मित्रों, एसी, कूलर और पंखों के सहारे हम गर्मी से मुकाबला करने निकले हैं। आज तो हालात ये हैं कि यदि घर का एसी या कूलर खराब हो गया हो तो उसे बनवाना सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है, चाहे इसके लिए दफ्तर से या अपने काम से छुट्टी ही क्यों न लेनी पड़े। शायद हम ये भूल गए हैं कि कूलर और एसी की बढ़ती संख्या यही बताती है कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हो रही है। आज से 50 वर्ष या यूं कहें 25 वर्ष पहले ही हम चले जाएं तो हम पाएंगे कि तब इतनी क्रूरता नहीं थी। उस समय गर्मी भी नहीं पड़ती थी और ठंडक देने वाले इतने संसाधन भी नहीं थे। पेड़ों से बने जंगल आज फर्नीचर का रूप ले करके ड्राइंग रूम में सज गए हैं, ईंधन के रूप में काम आ गए हैं। अब उसी ड्राइंग रूम में जंगल वॉलपेपर के रूप में चिपक गए हैं या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन में कैद हो गए हैं। वे हमारी आंखों को भले लगते हैं, हम उन्हें निहार कर प्रकृति का आनंद लेते हैं, लेकिन प्रकृति के समीप जाने का प्रयास नहीं करते।

0: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल सीबीएसई से संबद्ध जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, नीट और जेईई में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
1: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
0: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTech कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
1: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
0: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: श्रोताओं, कितना अजीब लगता है ना प्रकृति का इस तरह से हमारा मेहमान बनना। प्रकृति ने बरसों बरस तक हमारी मेहमान नवाजी की, हमने मेहमान के रूप में क्या क्या नहीं पाया। सुहानी सुबह शाम, पक्षियों का कलरव, भौरों का गुंजन, हवाओं का बहना और न जाने कितनों की अनोखे उपहार हमने हमारे सामने बिखरे पड़े हैं। लेकिन हम हैं कि उलझे हैं आधुनिक संसाधनों में, हम उनमें ढूंढ रहे हैं कंप्यूटर में या फिर ड्राइंग रूम में चिपके प्राकृतिक दृश्य में। श्रोताओं, अपने इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकलकर तो देखिए, बाहर एक अलौकिक दुनिया आपका स्वागत कर रही है।

श्रोताओं, हमारे सामने इतनी खूबसूरत प्रकृति है, लेकिन हुआ यह है कि हमने प्रकृति को पहचानने की दृष्टि ही खो दी है। वो तो आज भी हमारे सामने फुदकती रहती है, लेकिन हमें उस ओर देखने की फुर्सत ही नहीं है। हमने अपने भीतर ही ऐसा वातावरण तैयार कर लिया है, या यूं कहें कि ऐसा आवरण ओढ़ लिया है जिसने हमारी दृष्टि ही संकुचित कर दी है। विरासत में यही दृष्टि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तभी तो वे जब कभी आंगन में या गैलरी में लगे किसी गमले में उगे पौधों पर ओस की बूंद को ठिठका हुआ पाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे अपने पालकों से पूछते हैं कि ये है क्या? पालक भी इसका जवाब नहीं दे पाते, भला इससे भी बड़ी क्या विवशता होती होगी। हम तो चाहेंगे साथियों कि इस प्रकृति से जुड़े इस बारिश में नया पौधरोपण करें, उनकी देखभाल करें और इस खूबसूरत प्रकृति को निहारें, उसके साथ जिएं, उसकी खुशियों में शामिल हुएं और फिर देखिएगा आपकी लाइफ कितनी सुखद होती है।

श्रोताओं, आइए अब हम दे देते हैं ये अवसर की सूचना जिसका होता है हमारे युवा श्रोताओं को बेसब्री से इंतज़ार। IBPS में मैनेजमेंट ट्रेनीस, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पदों की कुल संख्या है 6,715। शैक्षणिक योग्यता है स्नातक, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें वेबसाइट www.ibps.in पर। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम युववाणी का सफर बस अब यहीं तक। अनुमति दे अपनी रेडियो फ्रेंड ममता कटरे को और स्वीकार करे हमारा स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं और अब हम लेकर आए हैं आप श्रोता साथियों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत को लेकर मैं हूं साथ आपकी हमसफर ममता कटरे, और सुरमई सफर का ये पहला तराना हम लेकर आए हैं फिल्म तेरे बिन से। गीत लिखा है समीर ने, संगीत प्रीतम का, और आवाजें हैं कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे गाया है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने। रजत अरोरा के बोल को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म चांदनी चौक टू चाइना।

राणा, हम आपके रेडियो सेट तक पहुंचाने जा रहे हैं। उसे आवाज़ी दी है उदित नारायण, अलका याग्निक और वसुंधरा ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत निर्देशन AR रहमान का और फिल्म का नाम है लगान।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली पेशकश आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते से। आवाज अरिजीत सिंह की, संगीत आदेश श्रीवास्तव का और गीत जावेद अख्तर का।

जब प्यार किसी से होता है, आइए सुनते हैं इस फिल्म का तराना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजे हैं। अब है वक्त दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट का।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।

हेलो फ्रेंड्स, आज फिर एक बार लेकर कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट की बहार। आपके साथ हूं मैं, आपकी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोता साथियों, आज हम उस शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी नायाब छाप छोड़ी है, और वो गीतकार हैं भरत व्यास। हिंदी सिनेमा में एक महान और दिग्गज गीतकार थे। चूरू के पुष्करणा ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1974 में मार्गशीर्ष कृष्णा अष्टमी को जन्मे भरत व्यास। जब वे 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया, और इस तरह कठिनाइयों ने जीवन के आरंभ में ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर दी। भरत व्यास जी बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे और उनके भीतर का कवि छोटी आयु से ही प्रकट होने लगा था। श्रोता मित्रों, भरत जी ने पहले दर्जे से लेकर हाई स्कूल तक की शिक्षा चूरू में ही प्राप्त की और चूरू के लक्ष्मी नारायण बांग्ला हाई स्कूल से हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बीकानेर के डूंगर कॉलेज में प्रवेश किया। स्कूल समय में ही वे तुकबंदी करने लगे थे और फिल्मी गीतों की पैरोडी में भी वे उन्होंने दक्षता हासिल कर ली। मजबूत कदकाठी के धनी भरत व्यास डूंगर कॉलेज बीकानेर में अध्ययन के दौरान वॉलीबॉल टीम के कप्तान भी रहे। आगे चर्चा जारी रहेगी, फिलहाल शामिल करते हैं भरत व्यास पर लिखा ये तराना।

0: मानसून धमाका।
1: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
2: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
1: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
2: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में, मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
3: सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल CBSE से संबद्ध, जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल, जहां उपलब्ध है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी। नीट और JEE में सर्वाधिक बच्चों का चयन, नर्सरी से 12वीं तक एक स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी वातावरण। प्रवेश प्रारंभ सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल, साहू टोला, लालबर्रा रोड, बालाघाट। संपर्क 6262604114।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से कार्यक्रम गुड इवनिंग बालाघाट, और चर्चा हो रही है मशहूर गीतकार भरत व्यास की, जिनकी है आज पुण्यतिथि। श्रोता मित्रों, बीकानेर से कॉमर्स विषय में इंटर करने के बाद नौकरी की तलाश में कलकत्ता पहुंचे, लेकिन उनके भाग्य में शायद कुछ ही और ही लिखा था। इस दौरान उन्होंने रंगमंच अभिनय में हाथ आजमाया और अच्छे अभिनेता बन गए। अभिनेता गीतकार भरत व्यास ने शायद ये तय कर लिया था कि आखिर एक दिन वे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा कर रहेंगे। चूरू में वे लगातार रंगमंच पर सक्रिय थे और एक अच्छे रंगकर्मी के रूप में उनकी पहचान भी बनी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहली कामयाबी उन्हें तब मिली जब कलकत्ता के प्राचीन अल्फ्रेड थिएटर से उनका नाटक रंगीला मारवाड़ प्रदर्शित हुआ। इस सफलता से भरत जी को काफी प्रसिद्धि मिली और यहीं से उनके कामयाब जीवन की शुरुआत हुई।

0: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
1: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां बीटेक कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
0: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
1: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
2: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
3: ओह लवली, वेल डन।
2: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
3: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
4: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
3: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
4: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
3: आप कौन?
5: RBI कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: श्रोता मित्रों, अपने नेक इरादे लिए कलकत्ता में ही प्रदर्शित नाटक मोरध्वज में भरत जी ने मोरध्वज की शानदार भूमिका निभाई। दूसरे विश्वयुद्ध के समय भरत व्यास कलकत्ता से लौटे और कुछ समय बीकानेर में रहे। बाद में एक दोस्त के जरिए वे अपनी किस्मत चमकाने सपनों की नगरिया मुंबई पहुंच गए, जहां उन्हें अपने गीतों के जरिए इतिहास बनाने का अवसर मिला।

0: मानसून धमाका।
1: रंगलानी वस्त्र भंडार लेकर आया है शानदार ऑफर, एक खरीदी पर दो दो फायदे।
2: जी हाँ, यहाँ मिलेगा फैंसी पैटर्न साड़ी 325 रुपए में दो पीस, बनियान 85 रुपए में दो पीस, प्रीमियम जॉर्जेट साड़ी 600 में दो, सिल्क साड़ी 750 में दो, सिंगल बेडशीट 150 में दो, डबल बेड का 2600 में दो पीस।
1: रेडीमेड शर्ट गीजा कॉटन 699 में दो पीस, सिंगल बेड 2425 में दो, डिजाइनर प्रिंटेड कुर्ता 500 में दो, इम्पोर्टेड टॉवल 140 में दो, डोरमेट 28 में दो, रेडीमेड ट्राउजर 999 में तीन पीस, और भी बहुत कुछ।
2: तो चले आए रंगलानी वस्त्र भंडार, आनंद रेडियो के बाजू में मेन रोड बालाघाट। मोबाइल नंबर है 9425139615।
3: क्या आप किसी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज की तलाश में हैं जो आपको न सिर्फ शिक्षण दे बल्कि साथ में दे रोजगार?
4: तो अब आपकी तलाश हुई पूरी, चले आइए AICTE से मान्यता प्राप्त और RGPV भोपाल से संबद्ध सतपुड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहां BTEC कंप्यूटर साइंस, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल में डिग्री प्राप्त की जा सकती है।
3: हमारा पता है सतपुड़ा कैंपस, लालबारा रोड, गर्रा, बालाघाट।
4: मोबाइल नंबर 6262604111 और 9425836824।
5: श्रोताओं, फिल्म निर्देशक और अनुज बीएम व्यास ने भरत जी को फिल्मी दुनिया में ब्रेक दिया। फिल्म दुहाई के लिए उन्होंने भरत जी का पहला गीत खरीदा और 10 रुपये बतौर पारिश्रमिक दिए। भरत जी ने इस अवसर को खूब भुनाया और एक से बढ़कर एक गीत लिखते चले गए। सफलता उनके कदम चूमती गई और वे फिल्मी दुनिया के ख्यातनाम गीतकार बन गए। आधा है चंद्रमा रात आधी, जरा सामने तो आ छलिए, ए मालिक तेरे बंदे हम, जा तो से नहीं बोलूं, घूंघट नहीं खोलूं, चाहे पास हो चाहे दूर हो, तू छुपी है कहाँ, मैं तड़पता यहाँ, जोत से जोत जलाते चलो, कहा भी न जाए चुप रहा भी न जाए, जैसे भरत जी की कलम से निकले जाने कितने ही गीत हैं जो आज बरसों बीत जाने के बाद भी उतने ही ताजा हैं और सुनने वाले को तरोताज़ा कर जाते हैं।

0: पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो हमारा कल है। आइए मिलकर अपने वनों की रक्षा करें। बांस मिशन योजना के तहत अपने खेतों की मेढ़ों पर बांस के पौधे अवश्य लगाएं और लाभ पाएं। एक पौधा लगाएं, उसे पोषित कर वृक्ष बनाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए हरियाली की अमूल्य विरासत छोड़ जाएं। साथ ही जंगल में आग लगने, वन्य प्राणियों का अहित करने या किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत निकटतम वन विभाग को जरूर दें। ये संदेश वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट द्वारा जनहित में जारी।
1: श्रोता साथियों, भरत जी ने जब फिल्मी गीत लिखना शुरू किया उस दौर में गीतों में उर्दू का असर ज्यादा था। ऐसे में भरत जी ने अपने समकालीन गीतकारों को साथ लेकर फिल्मी गीतों में हिंदी के प्रयोग का आंदोलन खड़ा कर दिया। भरत जी के गीतों की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से कम ही गीत लिखे। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखी जो बाद में फिल्मों में शामिल की गई। उन्होंने फुहड़ता और अश्लीलता का कभी साथ नहीं दिया और यथासंभव इसका विरोध ही किया। हिंदी गीतों के अलावा इन्होंने राजस्थानी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। भरत जी करीब 125 फिल्मों में गीत लिखे और हमेशा एक लोकप्रिय और सफल गीतकार के रूप में इंडस्ट्री में छाए रहे।

श्रोता मित्रों, भरत व्यास ने अपने गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग वियोग, भक्ति और दर्शन का ही समावेश नहीं किया, बल्कि उनके गीतों में सुरम्यता और भाषा शैली का भी जोरदार समावेश रहा। उनकी प्रसिद्धि की वजह थे बड़े बड़े निर्माताओं की फिल्मों में गीत लिखने का अवसर उन्हें मिला। भरत व्यास के लिखे अधिकांश गीतों को मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक समय तो वी शांताराम का निर्माण निर्देशन और पंडित भरत व्यास के गीत एक दूसरे के पर्याय बन गए थे और सफलता की गारंटी भी। वैसे भरत व्यास ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, बसंत देसाई, आर डी बर्मन, सी रामचंद्र और दिग्गज संगीतकारों के लिए भी गीत रचना की, लेकिन उनकी जबरदस्त हिट जोड़ी एस एन त्रिपाठी साहब से बनी। बहुआयामी प्रतिभा के धनी भरत व्यास ने न केवल अपने गीतों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और बलिदान का संदेश दिया, बल्कि प्रेम से परिपूरित भावनाओं के भी गीत लिखे। नवरंग, सारंगा, गूंज उठी शहनाई, रानी रूपमती, बेदर्द जमाना क्या जाने, प्यार की प्यास, स्त्री, परिणीता और भी ऐसी कई फिल्म प्रसिद्ध फिल्में रही जिनमें उनकी कलम ने प्रेम भावनाओं से ओतप्रोत गीत लिखे। 4 जुलाई साल 1982 को हमसे जुदा हुए भरत व्यास आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे गीत आज भी चारों ओर गूंज रहे हैं। उनके गीतों के रस में डूबने को उतावला मन रानी रूपमती फिल्म के लिए भरत व्यास के लिखे इस गीत की तर्ज पर बस यही गुनगुनाता है, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।

0: बस अब यहीं तक, क्योंकि घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि ली जाए आपसे विदा, इस वादे के साथ कि कल एक नए अंक को रंगीले अंदाज में लेकर आपसे होगी पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त ममता कटरे को और स्वीकार करें हमारा स्नेहिल नमस्कार।
1: गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट, गुड इवनिंग बालाघाट।
0: ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत की ओर, और कार्यक्रम का पहला नजराना हम लेकर आए हैं उस्ताद सुल्तान खान और के एस चित्रा की आवाज में।

श्रोताओं भी आपने आनंद लिया उस्ताद सुल्तान और चित्रा की आवाज का। कार्यक्रम में एक बार फिर लुत्फ उठाते हैं उस्ताद सुल्तान खान और के एस चित्रा की आवाजों का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही अनुमति दे कार्यक्रम सुगम संगीत से अपनी दोस्त ममता कटरे को। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजने को है। कुछ ही पल में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर, जहां आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार, और 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे प्रादेशिक समाचार। उससे पहले आइए हम आपको बता दें आज की सभा के शेष प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले होगा अंग्रेजी समाचार। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। 7:21 पर लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम चौपाल का। 7:30 पर आप सुनेंगे किसान साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम किसानवाणी। रात्रि 8:00 एक बार फिर आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत का। 8:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम पॉप म्यूजिक। 8:45 पर हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

9:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे स्पॉटलाइट समाचार। 9:30 से रात्रि 10:30 तक आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर आप आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत का। रात्रि 11:00 हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये तो थी आज की सभा के शेष प्रसारित और रिले कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं आइए अब हम आपको कल की सभा के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बता दें। कल प्रातः 6:05 पर आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। विचारों का मंथन कार्यक्रम चिंतन आप सुनेंगे 6:30 पर। 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का आप संगीतमय पाठ सुन सकते हैं। 6:50 पर होगा कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

7:20 पर कार्यक्रम नमस्कार बालाघाट आप सुन सकते हैं। 8:00 समाचार प्रभात रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर लुत्फ उठाइएगा कार्यक्रम सुगम संगीत का।

8:30 पर आप सुन सकते हैं महिला बहनों का अपना कार्यक्रम महिला जगत। 9 बजे से 10 बजे तक VBS के कार्यक्रम का आप आनंद ले सकते हैं। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। 10:05 पर आपके फोन कॉल्स और फरमाइशी गीतों से सजा कार्यक्रम आपके फोन आपके गीत का आप आनंद लीजिएगा। 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से और 2:15 पर हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। दोपहर 2:30 पर पुनः आप विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थी आज की सभा के और कल की सभा के शेष प्रसारित और रिले कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। 7:05 हुए हैं। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अंग्रेजी समाचार और 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: के 2 दिन के दौरे पर हैं। इंदौर में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ किया संवाद और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिलौने के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग $120 अरब है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज कहा कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि योजना 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में सुविधा प्रदान करेगी। इससे लाखों लोगों की हवाई यात्रा का सपना साकार होने के करीब आएगा और एक उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं को जोड़ा जा सकेगा। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार ने आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। इंदौर पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों BLO ने मिलकर SIR का काम बहुत किया है।
2: हम मध्य प्रदेश के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके माध्यम

0: से मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहूंगा कि इस बार जो भी हमारे चुनावी कर्मियों ने सीईओ साहब के नेतृत्व में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, ईआरओज और बीएलओज ने मिलकर इतना बढ़िया एसआईआर का कार्य किया है जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री श्री परमार इसके बाद सीधा रीवा इंजीनियर और रीवा आयुर्वेद कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रश्न पत्र चोरी होने के कारण बीटेक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित की गई है, संबंधितों के खिलाफ एफआईआर कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहाँ रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितग्राहकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैतूल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मिलित होंगे। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू निरोधक माह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक मनाया जा रहा है। पन्ना जिले के प्राचीन मंदिरों और निजी संग्रहों से 64,000 से अधिक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां खोजकर ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। नीमच के रेडक्रॉस भवन में 6 जुलाई को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और धार, खंडवा, रायसेन और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:21 हुए हैं और अब है वक्त किसान साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का।

0: और इस क्रम में हम बातचीत करेंगे समसामयिक कृषि कार्य पर।
1: जी, समसामयिक चर्चा तो तूफान भी हम लोग करेंगे। थोड़ी खुशी की बात यह है कि बारिश बहुत अधिक मात्रा में आ रही है, लेकिन ये देख रहे हैं हम लोग कि किसान साथियों की जो कृषि कार्य है वो बोनी के, वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाए थे, क्योंकि अगर बहुत पहले अगर बारिश होती तो लोग खेतों की अच्छी खासी जुताई करते, उसके बाद ही बोनी का कार्य प्रारंभ करते, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल सही कहा आपने। कहा जाता है ना, कभी खुशी कभी गम।
1: जी,
0: तो आपने खुशी की बात कहे थे लेकिन गम बन गया। कोई बात नहीं किसान भाइयों, ये प्रकृति का नियम है, सुख के बाद दुख आते रहता है। और प्राकृतिक आपदाओं को तो कोई नहीं जानता, यह किसी के बस में भी नहीं है, लेकिन हम परिस्थितियां और समय के अनुसार अगर उसमें ढल जाते हैं, उस कार्य को कर लेते हैं, तो हमारा कोई भी काम बड़े सरलता के साथ हो जाता है।
1: बिल्कुल। और हम लोग कार्यक्रम के माध्यम से यही बताते हैं कि आपने किसान साथियों को सलाह के रूप में हो या फिर जो भी है, वो लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं इस कार्यक्रम को, और यहाँ से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने कृषि कार्य में वह आजमाते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही।
1: यहाँ तक है कि अभी जैसे कि हमारे यहाँ तकनीक इतनी अच्छी हो गई कि आए दिन बारिश का पता लग जाता है कि आज कितने औसतन बारिश होगी, कल कितनी होगी, तो जैसे मौसम विज्ञान के अनुसार लगभग कि यह 7 तारीख तक लगभग बारिश के अनुमान बहुत ज़्यादा है, तो तब तक किसान थोड़ा संयम बरते। अब जैसे बोनी का समय है, तो जैसे बवार की बात है या खार की अगर बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा विलंब से करें, क्योंकि अगर पुनः अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो आपकी कीमती जो बिजाई है वो कहीं ना कहीं सड़ गल जाएगी, तो इन बातों का विशेष का ध्यान रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ किसान भाइयों, अपने खेतों की मेड़ों की बात करें तो यह भी काम बिल्कुल जिनका नहीं हुआ है, तो मेड़ों पे जो तुवर की फसल है, इन फसलों को भी लगा सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: तिल्ली की फसलें भी लगा सकते हैं, मूंग की फसल भी लगा सकते हैं, तो यह काम को भी अभी बड़े आसानी से किया जा
1: हाँ,
0: सकता
1: ये दलहनी फसलों के
0: है
1: लिए
0: ना।
1: बहुत अच्छा समय
0: और
1: है।
0: यह समय बहुत अच्छा है किसान भाइयों। इन दौरान हम यह भी बातों को कहना चाहेंगे कि किसान लगभग लगभग मेरा ऐसा मानना है सूखे में भी काफ़ी काम कर लिया है।
1: जी,
0: उसमें सूखे में इन फसलों को लगाकर वह बड़े निश्चिंत भी हो चुके हैं।
1: जी
0: कुछ कुछ जगह तो इतनी अच्छी तैयारियां हैं कि इस जो वर्षा हुई, अधिक वर्षा हुई, इसका अच्छा लाभ भी किसान उठा रहा है। कुछ
1: जी
0: क्षेत्रों में देखा जाए तो पराह रोपाई का भी काम शुरू हो गया
1: हाँ, कुछ लोगों ने जो पहले
0: है ना।
1: जिनके पास साधन
0: और
1: थे।
0: जिनके पास लगभग लगभग ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, समय हैं, ऐसे अपने अपने साधन हैं, उनके हिसाब से वह अपना काम कर रहे हैं। और किसान भाई इसमें बिल्कुल सजग हैं और तत्परता से नियमित निगरानी भी खेतों की कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। तूफान भैया, हम अपने किसान साथियों को बताना चाहेंगे कि एक अच्छी फायदे की बात भी है,
0: जी
1: कुछ ऐसे खरपतवार नाशक जो पौधे हैं या जो बीज है वो लेट निकला हुआ है, तो अभी जब बारिश होगी तो ये लेट आएगा, और उसके बाद अगर जुताई करते हैं किसान तो खरपतवार नाशक भी हो सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो उसके लिए किसान साथी चिंता ना करें। और रही बात कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, तो हम क्यों ना एक प्यारा सा लोकगीत सुन लें और किसान साथियों का थोड़ा सा मनोरंजन करवाएं।

0: चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके अपने मित्र युगल किशोर भगत
1: और तूफान सिंह हरिन खड़े का नमस्कार। युगल भाई, हमारी चौपाल प्रतिदिन की तरह आज भी सजी हुई है।

तो इस प्यारे से लोकगीत के बाद अब हम लोग तूफान भैया चौपाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और अपने किसान साथियों को बता दें कि आज हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम जो कि अभी बस कुछ ही क्षणों बाद उसकी शुरुआत होगी, तो श्रोता लोग हमसे जुड़ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ के साथ। तो हम लोग चौपाल कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और अगले क्रम हेलो किसान वाणी की ओर चलते हैं।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ।

0: मिट्टी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
1: पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डालें।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच
1: है, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान भाइयों, आपका पुनः स्वागत है अपने क्रम किसानवाणी कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आज सजीव फोन इन कार्यक्रम का आज जो कार्यक्रम रखा गया है, और इसका हम बात करें, आज के विषय की हम बात करें तो फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण पर बातचीत होगी। और मैं आज आपके साथ हूं तूफान सिंह हरिनखेड़े,
7: और मैं हूं युगल किशोर भगत, और आज हमारे समक्ष विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजू कुमार पांसे सर, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय मुरजड़ फार्म। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
8: जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
7: जी जी, और तमाम श्रोता हमसे जुड़ने के लिए, श्रोता शायद जुड़ गए हैं, बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम का। हेलो
9: जी, आकाशवाणी बालाघाट।
7: जी आकाशवाणी केंद्र बालाघाट से बोल रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय बताइए।
9: मैं डॉक्टर विक्रम चौहान, जैविक कृषक बालाघाट से, गर्रा से, और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पांसे जी से मैं कुछ जानकारी
7: जी जी जी जी चौहान जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए, सर सुन रहे हैं आपको।
9: मैं जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा मानसून लेट हुआ है और सभी किसानों का अभी जो है कृषि कार्य लेट हो गया है, उस आधार पे हम अभी हमारी जो खरीफ की फसलें हैं, जिसको धान और अन्य जो हमारी दलहनी तिलहनी फसलें और सब्जी वर्गीय फसलें, उनमें हम जैविक रूप से कीट प्रबंधन और पोषण प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, तो जैविक और प्राकृतिक तरीके से हम किस प्रकार से इसमें प्रबंधन कर सकते हैं और कीट प्रबंधन कर सकते हैं।
8: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने प्रश्न किया है और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि जैविक कीट प्रबंधन या जैविक नियंत्रण, इसके बारे में तो आजकल हमारी बहुत आवश्यकता भी है। चूंकि मानसून थोड़ा लेट हो गया है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा कीट नियंत्रण को लेके, जैविक विधियों को लेके हम अगर देखते हैं, तो जैविक कीट नियंत्रण में जैसे हमारे पास में नीम की निमोली रहती है, ये नीम की निमोली का हम जो तेल निकल जाता है उस आयल केक को भी हम अभी डाल सकते हैं, तो हमको वो रस चूसने वाले कीड़े और जो हमारे यहाँ पे स्टेम बोरर लगता है उनको भी हम रोक सकते हैं। और अगर हमको केक नहीं मिलता है तो हम नीम की निमोली का पाउडर को हम 24 घंटे भिगाने के बाद में उसको निचोड़ ले और उसका अर्क बना के उसको हम 8 से 10 ml के हिसाब से 1 लीटर पानी में मिक्स करके हम स्प्रे करें, तो भी हमको रस चूसने वाले कीड़े और दूसरे जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं उससे बहुत अच्छे से निजात मिलता है। इसके अलावा हम जैसे कुछ मित्र कीट होते हैं, मित्र कीट का संरक्षण करने के लिए हम अपने खेत की मेड़ में हम फूल के पौधे या मतलब ऐसे कुछ फूल वाले पौधे को हम मेंटेन करेंगे, तो हमको अभी जो लेट मानसून हो गया है तो उसमें हमको सहायता मिलने की पूरी संभावना रहेगी, बनस्पत की हम जो रासायनिक का उपचार करते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, उसके जगह पे हम जैविक विधियों का भी उपयोग कर सकते हैं और भी

0: बहुत सारे जैविक विधियां हैं हमारे पास में, और हम अभी बातचीत के दौरान में उसको बातचीत भी करेंगे। तो इस प्रकार से हम जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग कर
1: जी
0: सकते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी, आप जुड़े और काफ़ी हमारे पुराने श्रोता हैं, हमेशा सवाल जवाब करते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग विषय पे आते हैं कि आज जो है कि रोग एवं कीट का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रारंभिक तौर से सर हमें क्या क्या करना चाहिए?
0: जैसे अभी किसान भाई, जैसे अगर हम बालाघाट की बात करेंगे तो ये धान बाहुल्य क्षेत्र है, तो धान में जैसे अभी परा लगा अभी नर्सरी डालने के बाद में जब परा लगाएंगे, तो हम परा लगाते समय ही परा को उखाड़ने के पहले हम खेत में कुछ दानेदार कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। या फिर जैविक कीट नियंत्रण में जाए तो हमारे पास में जैसे महुआ की खली हो गई या फिर नीम की खली हो गई, जो भी कड़वे तेल की खली होती है उसको अगर हम मतलब उखाड़ने के 2 दिन 4 दिन पहले अगर डाल दे और फिर उखाड़े हम, और उसके बाद में मेन मुख्य खेत में उसकी रोपाई करें, तो स्टेम बोरर का, लीफ होल्डर का, या फिर जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनका नियंत्रण हम इफेक्टिव कर सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब हम नर्सरी में से पौधे उखाड़े और उसके बाद में उसको मुख्य खेत में रोपाई करें, तो पौधे के ऊपर का जो 4 से 5 सेंटीमीटर का या 8 सेंटीमीटर तक का जो पत्तियां होती है उसको हम तोड़ के वो गड्ढा करके उसको गाड़ दे या फिर हम उसको जानवर को खिला दे। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि धान में क्या होता है कि जो तना छेदक का जो पहली पीढ़ी होती है वो नर्सरी से ही चालू हो जाती है, और नर्सरी में पूरे आपको एक पत्ती के ऊपर 250 से 300 अंडे आपको मिल जाएंगे। तो वो हम उसको तोड़ के फेंक देंगे तो खेत के अंदर हम 250 से 300 पौधों को हम सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी
1: सर आपको रोकना चाहूँगा सर, ये जैसे आपने बताया सरसों की खली, तो
0: जी।
1: सरसों की खली को पीस के डालना है या उसको हम लोग पानी में अगर भिगो देते हैं तो उस पानी का अगर छिड़काव करें तो ज़्यादा अच्छा
0: हाँ,
1: होगा?
0: वो भी बहुत अच्छा है। अगर स्प्रे करना है तो हम खली को भिगो के वो उसका स्प्रे करें, या फिर हम खली को डायरेक्ट खेत में डाल सकते हैं।
1: जी
2: सर, हमारे बीच हमारे एक किसान भाई हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी, हम जाने आपका परिचय।
3: मैं ग्राम सुरगांव से बोल रहा हूँ, राजकुमार गावरे जी।
2: जी कावरे जी, बोलिए, स्वागत है जी आपका इस क्रम में। और क्या प्रश्न है, क्या जिज्ञासा है आपके, हमने बताएं।
1: गांव का नाम क्या बताए?
3: सिरेगा, सिरेगा लांजी।
1: सिरेगा लांजी, धन्यवाद
2: जी, बोलिए अपना प्रश्न क्या है
3: प्रश्न ये है सर जी,
2: जी।
3: अभी मानसून लेट हो गया और अखाड़ हमने अभी डाले हैं, अरे
2: अच्छा
3: बारिश तो मनमानी हो रही है, अब खार तो अभी जम नहीं पाया है, तो इसलिए अब कैसा क्या करना चाहिए अब?
2: ठीक है, हमारे विशेषज्ञ महोदय हमारे बीच में हैं, आपके प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं।
0: जैसे अभी
3: जी
0: आपने खार डाली है और ऊपर से पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, तो उसके
3: जी
0: उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जैसे खार को आप गोबर की खाद से मतलब खार जो डाली है उसकी ऊपर की पूरी मिट्टी को आप गोबर की खाद से ढक दीजिए, तो क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी तो आपकी खार में मतलब बहुत जल्दी पौधे ऊपर आएंगे, पहली चीज़। और दूसरा, गोबर की खाद के अंदर जो पोषक तत्व, संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो भी आपके खार को जल्दी से उगाने की कोशिश करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊपर से जो पानी बरस रहा है इस पानी को रोकने के लिए आप उसके ऊपर थोड़ा सा ना प्लास्टिक का उस प्रकार से कोई झोपड़ी टाइप का टेम्पररी कुछ ना कुछ कर दीजिए, ताकि जो ऊपर से डायरेक्ट पानी की बड़ी बूंदें आ रही है या पानी की ज़्यादा तीव्रता है, तो वो डायरेक्ट तीव्रता आपके खार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जब भी बड़ी पानी की बूंदें आती है तब तो उसको ढक दो, और जब आपको लगता है कि मौसम खुला हो गया तो उसको थोड़ा सा हटा दो। तो ये एक अपने खार को इस कंडीशंस में हम रोक के अच्छी खार खेत में पैदावार कर सकते हैं हम।
3: जी।
2: इस तरह
3: और एक
2: किसान
3: प्रश्न
2: भाई,
3: है सर जी,
2: हाँ जी बोलिए। हाँ
3: जैसा मान ले जाए अगर खार अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो
0: हाँ
3: इसमें क्या है, खारों में तनक छेद लग जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: हाँ खार अगर आपकी बड़ी हो गई, वैसे तो खार को अधिक से अधिक 25 दिन, 20 से 25 दिन की खार लगा देना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश बड़ी हो जाती है, तनाछेदक आ जाता है, तो आप खार को उखाड़ने के पहले अगर आप रासायनिक दवा का

0: उपयोग करते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान आता है, फिप्रोनील आता है, ये दवाई आती है, तो इसको आप 1 एकड़ की खार में 1 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान या फिर फिप्रोनील की मात्रा खार में उखाड़ने के 1 दिन पहले डाल दीजिए, तो आपका तनाछेदक पूरा खत्म हो जाएगा और मुख्य खेत में भी कम से कम 20 से 25 दिन तक उसको रोक के रखेगा। या फिर आप जैविक दवाइयों में जाते हैं, तो आप नीम का तेल है या फिर नीम की खली है, जो भी कड़वी खली
1: बिल्कुल
0: आती है, उसको आप खार में मिक्स कर दो 4 दिन पहले उखाड़ने के, फिर उसके बाद में आप खार को उखाड़ के मुख्य खेत में रोपाई कर सकते हैं।
1: जी सर जी, धन्यवाद सर
2: जी,
1: जी।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ़ोन लगाया और अपने प्रश्नों के जवाब पाए। जैसा कि सर हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, किसान भाइयों की जो जिज्ञासा है वह बिल्कुल पूर्णतः रहना भी चाहिए। क्या है, समस्याएं भी होती है, मन में कुछ विचार भी होते हैं, ये ज़रूर पूरे करने का आज बहुत अच्छा मौका है। हेलो किसानवाणी कार्यक्रम जो है हमारा बिल्कुल अभी रात के 8 बजे तक चलता रहेगा, और आज का हमारा सजीव फोन इन का जो नंबर है वह किसान भाइयों को बताना चाहेंगे 0736-322-9217 पर फोन करके आप अपने जिज्ञासा, अपने प्रश्न, विषय से संबंधित जो भी हैं, जैसे कि खरीफ फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण आज का विषय है और हमारे डॉक्टर साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। सर मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा,
0: जी
2: खरीफ फसलों में ऐसी कौन सी फसलें आती है?
0: खरीफ फसलें, जैसे अपने मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो
2: जी
0: खरीफ में मुख्य रूप से धान को लगाया जाता है,
2: जी
0: फिर मक्का लगाते हैं, फिर और उसके बाद में सोयाबीन लगाते हैं।
2: जी
0: अपने मध्य प्रदेश में वैसे ये 3 मुख्य फसल है, इसके अलावा फिर बहुत सारी जैसे मूंग है, उड़द है, ये भी लगाते हैं, कहीं पे कोदो कुटकी भी लगाते
2: जी
0: हैं, सब्जी भाजी की भी कुछ कुछ फसलें लगाते हैं, तो
2: जी
0: इनको हम लगाते हैं, लेकिन ये जनरली मुख्य रूप से धान, मक्का और हमारा सोयाबीन का ही क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में।
2: जी जी जैसे डॉक्टर साहब बात करें जैसे कीटों की, तो कीट जो है, कीट हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और कीट के बचाव के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय किए जा सकते हैं कि ना आए कीट?
0: हाँ बिल्कुल, कीट के बचाव के लिए अगर हम शुरू से बात करेंगे तो सबसे पहले हमको खेत की तैयारी के समय हम ध्यान रख ले कि खेत की तैयारी करते समय जैसे गहरी जुताई करें हम,
2: जी
0: या फिर खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से हम जुताई करें, तो
2: जी
0: खेत के अंदर जो भी बीमारी और कीड़े फैलाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनकी जो सुसुप्तावस्था होती है वो धूप से या फिर धूप से ख़त्म हो जाएगी, या फिर उसको दूसरे जो पक्षी रहते हैं वो खा जाते हैं,
2: जी
0: तो ये हम कर सकते हैं। फिर कीट की रोकथाम के लिए हमको कीट और बीमारी की रोकथाम के लिए हमको बीज उपचार करना चाहिए।
2: जी
0: बीज उपचार का भी बहुत ही अच्छा वैज्ञानिक तरीका आजकल सभी किसान भाइयों को पता है, या फिर सोशल मीडिया में या फिर किसी कृषि वैज्ञानिक से पता करके बीज उपचार बहुत ही जरूरी होता है बीज
2: जी
0: उपचार।
3: हेलो, हाँ कुछ श्रोता जुड़े हैं साहब।
0: जी
4: हेलो,
0: हेलो, हाँ बोलिए।
4: हेलो सर, नमस्ते।
0: हाँ सर
2: जी, अपना परिचय बताइए।
4: मैं बलीराम भैरम जालीवाड़ा से बोल रहा हूँ सर।
2: जी, भैरम जी आपका स्वागत है इस क्रम में, क्या प्रश्न है बताएं।
4: सर मेरा प्रश्न है कि मानसून लेट होने से मैंने धान की बुआई अभी किया नहीं है,
2: जी
4: और मुझे बोवार विधि से बुआई करना है,
2: अच्छा
4: तो लेट बुआई होने से कौन से कीट लग सकते हैं, और उनकी रोकथाम के लिए बुआई के समय धान में किसी दवाई का उपयोग कर सकते हैं क्या, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये आपका जो प्रश्न है वैसा सभी किसानों के मन में प्रश्न जरूर होगा, क्योंकि मानसून लेट है, हमारे यहाँ भी हम 15 से 20 दिन लेट हो गए हैं, और लेट जब फसल होती है तब मुख्य रूप से 2 प्रकार के कीड़े बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। एक तो हमारे यहाँ जिसको हम आ, आ, आ, पोंगा बोलते हैं, हम लोग गालमीज बोलते हैं, आप लोग पोंगा बोलते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में इस साल आने की संभावना रहेगी, क्योंकि लेट जितनी फसल होती है उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होने की संभावना रहती है। और दूसरा तना छेदक का भी इस वर्ष कम से कम 4 पीढ़ियाँ होने की संभावना है, नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ 2 ही होती है, लेकिन चूंकि लेट हो चुके हैं तो उसको एक फायदा मिलेगा। तो इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले बीज उपचार बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए आपको आपके पास में क्लोरोपाइरी

0: खास दवाई आती है, बहुत ही सिंपल दवाई है। इसको हम बीज उपचार, 1 किलोग्राम बीज में 5 ml के आसपास क्लोरपाइरीफास का ले ले और उसको हम मिक्स कर दे और छाया में सुखा दे, और उसके बाद में जो है वो हम दूसरा कल्चर का यूज़ करना है तो उसका भी कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लेट कंडीशन में कीड़े आते हैं, तो कीड़ों की रोकथाम के लिए हमको उसका सही से हमको पहचान होना ज़रूरी है। तो आप जब भी कीड़े आते हैं तो आप थोड़ा सा किसी की सलाह लेके आप उनकी पहचान कीजिए, या फिर कृषि महाविद्यालय, आपके झालीवाड़ा से तो पास में ही है कृषि महाविद्यालय बालाघाट वाराशिवनी में, तो आप वहाँ पे अपना समस्या लेके आएंगे तो आपको सही दवाई की जानकारी मिल जाएगी और उसके बाद आप दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि अभी से हम दवाई नहीं बता सकते हैं कि ये दवाई लगेगी, जब कीड़े आएंगे, जैसे गाल मिर्च के लिए, पोंगा के लिए जो दवाई आती है वो कार्बोफ्यूरान है, फिप्रोनील है, क्लोरपाइरीफास आता है, क्लोरएंटेनिलीप्रोल आता है, बहुत सारी दवाई आती है, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तनाछेदक के लिए आपके पास करटाफ हाइड्रोक्लोराइड की दवाई होती है, उसका उपयोग कर सकते हैं आप। लेकिन ये जब कीड़े आएंगे तब हम आपको सही अवस्था में सही दवाई का नाम बता पाएंगे। अभी तो आप सिर्फ बीज उपचार के ऊपर ध्यान दीजिए और आपके माइंड में ये रखिए कि गाल मिर्च और हमको तनाछेदक से इस बार ज़्यादा सामना करना
1: जी
0: है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद भैरव जी, आप जुड़े। सर ये बताइए तूफान भैया, आपने जो सवाल पूछे थे उसके बाद भी और किसानों की क्या क्या समस्याएं हो सकती है अभी?
2: बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे मुख्य समस्या मेरे को एक बात समझ में आ रही है किसानों के बीच में, जैसे डॉक्टर साहब अगर मान लो आम व्यक्ति अगर स्वस्थ है और बीमार होता है
0: जी
2: तो वो आदमी के डॉक्टर के पास जाता है।
0: जी जी जी
2: उसके बाद अगर मान लो पशु चिकित्सा की बात करें, पशु बीमार हुए तो पशु चिकित्सा यानी उसके डॉक्टर के पास जाता है।
0: जी जी जी
2: लेकिन जो खेती किसानी की बात आती है और खेती किसानी में जो फसलें लगी हैं वो बीमार होती है, रोगग्रस्त होती है, तो उसके लिए क्या ऐसा किसान निश्चित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या डॉक्टर के पास जाता है और वो पर्चे के हिसाब से दवा लेता है या इलाज कराता है? मैं इस बारे में जानना
0: जी
2: चाहूँगा।
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आपने जो बोला कि जब पशु की बात आती
1: एक
0: है।
1: श्रोता जुड़े हैं हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: सवाल तो आपका है, जवाब भी
0: जी
1: देंगे डॉक्टर साहब।
0: जी
1: हाँ, हेलो।
3: हेलो, आकाशवाणी केंद्र बालाघाट।
1: जी नमस्कार, आकाशवाणी केंद्र बालाघाट से बोल रहे हैं, आपका परिचय बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: हम राजेश बिसेन, जिला बालाघाट, लालबर्रा तहसील, नेवर गांव से बोल रहे हैं।
1: जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए राजेश जी।
3: जी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया अभी कि जैविक विधि से अगर रोपे को अपन उपचारित करना है
0: जी
3: तो उसे कैसे करें, और वो डॉक्टर साहब ने बताया कि नीम की निवोली वो अपने यहाँ उपलब्ध फार्म पे मिल सकेगी क्या हमको?
0: नहीं, चूंकि हमारे यहाँ क्या है, ये कॉलेज है और हम लोग का कोई उत्पादन केंद्र नहीं है, तो हम लोग के पास में नीम की निमोली नहीं मिल पाएगी। नीम की निमोली का उपयोग कैसे करना है इसकी जानकारी हम बता सकते हैं आपको। नीम की निमोली तो आपको अब कहीं कोई एकत्रित करता है उनके पास से ले सकते हैं, या फिर गर्मी के समय में किसान खुद ही उपयोग उसका एकत्रीकरण कर सकते हैं। जहाँ तक खली की बात रही है, तो नीम की निमोली से जो तेल निकल जाता है वो खली का आप उपयोग कर सकते हैं, 7 किलोग्राम के आसपास में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है खली। और उसको डालने का तरीका, जैसे आप केचुए की खाद हो गए या फिर गोबर की खाद हो गई, आप उसमें पाउडर करके मिक्स करके डाल सकते हैं, या फिर अगर गर्मी में नहीं डाल पाए अभी अगर आपको डालना है तो जैसे उसका जो खली है उसको आप पानी में रख दीजिए, रात भर आपको 24 घंटे रहेगा, और उसका जो अर्क है उसका अर्क का भी आप 10 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। रही
3: जी
0: बात
3: धन्यवाद।
0: रही बात जैसे आपने बोला कि उपचार करने की, तो उपचार की भी एक मैं आपको विधि बता देता हूँ कि जब आप परहा लगाते हैं तो उस परहा की जो जड़ें हैं उस जड़ों को अगर आप आधा घंटा इस घोल में जो खली खली से बनाया वो घोल रहेगा, और उसको आधे घंटे तक आप उसकी जड़ों को डुबो के रखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तनाछेदक से, गंगई से, और आपका रस चूसने वाले कीड़ों से भी मिल जाएगा।
1: जी जी धन्यवाद। तुम्हारे

0: भैया आपने जो सवाल किया था तो डॉक्टर साहब
1: जी,
0: वो कुछ अधूरे में रह गया था।
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि हम जब पशुओं की बारी आती है, हमारी बारी आती है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, जब पौधे की बारी आती है तो हम डॉक्टरों के बारे में पास में ना जाके आजू बाजू से पूछते हैं किसी से भी, तो वो बड़ा गलत ट्रेंड है। हमको भी ना पौधों के डॉक्टरों के पास में जाना चाहिए, पौधों को ले जाना चाहिए। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है हम उसको ले जाते, तो ऐसे पौधों को ले जाना चाहिए। तो उसके अंदर पोषक तत्व की कमी, लगने वाली बीमारियाँ कौन सी है, लगने वाले कीड़े कौन से है, क्या क्या समस्या है, वो आपको जो भी डॉक्टर रहेगा, जो कृषि वैज्ञानिक रहेगा, उसको देख के बता सकता है, जिसकी वजह से किसान का उत्पादन भी बढ़ेगा और खर्चा भी कम होगा, और इस प्रकार से हम सुरक्षा उसकी कर सकते
0: इन
1: हैं।
0: बातों से डॉक्टर साहब एक बात ध्यान आया कि जब भी किसान, हमने देखा है कि जब कृषि केंद्र जाता है
1: जी जी
0: तो कृषि केंद्र वाला ये कहता है कि इसके साथ ये वाली दवाई मैच कर लेगी, इसके साथ ये वाला अच्छा ग्रुप हो जाएगा।
1: जी
0: तो ये कहीं ना कहीं इसको क्या कहेंगे, यानी ये गलत है या सही है?
1: नहीं, अगर कृषि केंद्र में सही एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो वो आपको थोड़ा बहुत हद तक बता सकता है कि भाई आपके पौधे में कीड़े लगे हैं, कीड़ों की वजह से कमज़ोर हो गया, तो एक कीड़े के साथ में टॉनिक भी ले जाइए, ये यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर जानकार नहीं है तो इसमें हानि या नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
0: और कहीं ना कहीं वहां पर जो रेट दर्ज होती है वो कहीं ना कहीं उसमें किसान को कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना भी
1: जी
0: पड़ता
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो इन बातों को हमारे जो किसान साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, दवाइयां किसी भी कृषि केंद्र से लीजिए, बशर्ते किसी कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से, जैसे तुपान भाई ने कहा कि कृषि के डॉक्टर से मिलिए, सीधे बात, तो वो ज़्यादा अच्छी सलाह देंगे और उनके अनुसार ही दवाइयाँ आप लोग अपने खेतों में छिड़काव करें तो ज़्यादा अच्छा होगा कीट नियंत्रण के लिए। तो अगला सवाल तूफान भैया और हमारे किसान साथियों के लिए, आप उनके तरफ से क्या पूछना चाहेंगे?
2: मैं और एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे किसान भाइयों के बीच में एक बात बड़ी खनकती है कि वो सोचते हैं कि भाई हम जो खेत में, खेत से हम पौधे को उखाड़ के कैसे लाएं। कुछ किसान भाई सोचता है कि नहीं, वो जो दुकान वाला है उसने जो दे दिया वही सत्य है। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उन्हें कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, या सही जानकारी नहीं है, या उन्हें कहीं ना कहीं किसी प्रकार के इस प्रकार के कोई संगोष्ठी नहीं हुई है। यानी कुछ
1: जी
2: ना कुछ तो एक आम समस्या है जो किसान क्यों नहीं जा रहा है। हम इस बारे में भी थोड़ा सोचें,
1: जी
2: कहीं
1: जी
2: ना कहीं विभाग इसमें इस टाइप के कुछ कार्यक्रम करें,
1: जी
2: शायद जागरूकता आएगी तो शायद किसान जरूर विशेषज्ञ से मिलेगा।
1: जी जी बिल्कुल आपकी बात सही है कि बहुत बार क्या होता है, किसान ये बोलता है कि हम पौधों को उखाड़ के कैसे लाए, तो बिल्कुल समस्या आती है कि इतने बड़े पौधों को उखाड़ के हम कैसे लाए। तो उस कंडीशन में किसान भाई अपने पौधों को जो समस्याग्रस्त एरिया है वहाँ से फ़ोटो निकाल के ला सकता है, फ़ोटो भेज सकता है कृषि वैज्ञानिक के पास, उससे सलाह ले सकता है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है, किसान जाता तो है कृषि वैज्ञानिक के पास, सलाहकार के पास, लेकिन उसको उचित निदान नहीं मिल पाने की वजह से वो निराश होकर जब लौटता है तो उसके मन में ये चीज़ें खटकती है कि मुझे सही जानकारी नहीं मिली। तो ये ज़रूर है कि जब तक आप पौधों को, कृषि वैज्ञानिक पौधों को नहीं देखेगा तब तक उसका निदान अच्छे से नहीं बता पाता है। तो किसान भाइयों को थोड़ा सा या तो फोटो के माध्यम से, या फिर वो हो सके तो कभी कभी कृषि वैज्ञानिक को अपने खेत में बुलाना भी चाहिए,
2: जी
1: और जो भी ग्राम सेवक रहते हैं या कृषि विभाग के लोग रहते हैं उन लोगों को भी पर्याप्त जानकारी होती है, उनसे उनसे संपर्क करके फिर सलाह लेने के बाद ही दुकानदार के पास में जाके दवाई खरीदना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। इस तरह किसान भाइयों, जो यह छोटी छोटी जो बातें हैं बड़ी प्रमुख है और बहुत ही लाभप्रद है। क्यों ना हम थोड़ी सी जागरूकता लाएं, सही मायने में दवाओं का उपयोग करें। और हम जो खेती में कभी कभी सोचते रहते हैं कि खर्चा बहुत बढ़ गया है,
1: जी जी
2: और हमारी सरकार भी चाहती है कि किसान की आय बढ़े और खर्चा कम हो, सर इसके लिए आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, एक अर्थशास्त्र के बड़े दो सिंपल नियम हैं।
2: जी
1: अगर आपको मतलब आपकी आमदनी बढ़ाना है
2: जी
1: तो उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना है तो आमदनी बढ़ेगी, या दूसरा नियम है कि आपको खर्चे कम करना है तो भी आमदनी बढ़ेगी।
2: जी बिल्कुल सही।
1: तो अब मेहनत करना एक सीमित है
2: जी,
1: लेकिन खर्चे कम करना हमारे हाथ में है।
2: राइट।
1: तो किसान भाई अगर खर्चे कम करे अपनी, और हमारी सरकार की भी बड़ी यही मंशा है कि खेत की आमदनी दोगुनी करना है, तो हमको खर्चों को कम करना पड़ेगा।
2: जी
1: हमको बाहर

0: ये जो इनपुट्स खरीद के लाते हैं उनके ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। इसलिए आजकल प्राकृतिक खेती का भी कॉन्सेप्ट आया है कि प्राकृतिक खेती में हम अपने खेत पर ही जो साधन है उसी का उपयोग करके हम खेती करें
1: जी।
0: तो हमारे खर्चे कम होंगे। जैसे खाद के ऊपर है, दवाई के ऊपर है, ये जो खर्चे हो रहे बड़े बड़े इनको हम कम करें। तो कम करने के लिए या तो हम अपने खेत पे ही खाद और दवाई बनाएं या फिर इन खाद और दवाइयों का संतुलित और आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करें। तो इससे हमारे खर्चे कम हो गए, खर्चे कम हो गए तो हमको आमदनी अच्छी होगी और हमको फायदा भी ज़्यादा मिलेगा।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो किसान भाइयों, यह भी कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रहा है, जिसके कारण हम जरूर सोचते हैं कि खेती में उतना लाभ नहीं मिल रहा है। तो यह जो हमारे डॉक्टर साहब ने सलाह बताए, जानकारी बताएं, आप इसको ज़रूर अमल करें। इसके अमल करने से हमारे आर्थिक सुधार होगा और कृषि करने में मन भी लगेगा
2: जी।
1: और किसी भी काम को करने के लिए मन का बहुत ज़रूरी है। और मन की बात, मन का विचार, मन का सोच और मन बना लें तो शायद कोई

0: नहीं है जिसमें पाया नहीं जा सकता और लाभ नहीं लिया जा सकता।
1: जी
0: डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बात पे भी?
2: हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला कि जब किसी काम में या किसी चीज में अगर आदमी का, इंसान का मन जुड़ जाता है तो वह
0: जी
2: सफलता को कोई नहीं रोक सकता है।
0: जी
2: इसलिए आप हर चीज में मन लगा के करिए, जो भी कृषि कार्य है आपका या कहीं से सलाह लेना है तो आपका मन वहाँ होना जरूरी है। क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि जब सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम और बहुत सारी जागरूकता के कार्यक्रम जब लगाए जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि किसान मतलब उस कार्यक्रम के अंदर अपना मन नहीं लगा के रखते। उनको
0: जी
2: ये लगता है कि कुछ फ्री का मिल जाए तो हम यहाँ बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ी एक वो होती है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्री का तो आपको थोड़ा सा देगा लेकिन आपका मन नहीं है, वहाँ जो सलाह बट रही है उसके ऊपर मन लगना बहुत ज़रूरी है।
0: जी डॉक्टर साहब आपका कहना बिल्कुल जायज है। मतलब फोकट की चीज़ के लिए अपने
2: हाँ
0: को उतना ध्यान नहीं लगाना
2: नहीं
0: है,
2: बिल्कुल
0: मन लगाना है कि उससे हम अपने कृषि से लाभ कैसे लें, इस
2: बिल्कुल
0: बात पे
2: बिल्कुल
0: कहना है।
2: जी।
0: हमारे युगल भाई बहुत सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ उनके मन में विचार हैं बताइए।
1: सवाल तो बहुत कुछ है, समय अब हो चला है क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज जो सवाल जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से हुई है, खरीफ फसलों में रोग एवं कीट नियंत्रण किस प्रकार से करें, और आज हमारे साथ विशेषज्ञ थे डॉक्टर राजू कुमार पांसे सर, सहायक प्राध्यापक कृषि महाविद्यालय मुरजट फार्म वाराणसी, और तमाम हमारे साथ श्रोता जुड़े और लगभग लोग, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया है कि जो किसान खेती में लेट हुए हैं या जिनकी बोनी अगर लेट हो रही है तो उनसे हम लोग उनकी कीट नियंत्रण किस प्रकार से करें। तो तमाम जानकारियों के साथ अब हम इस कार्यक्रम से तूफान भैया विदा लेना चाहेंगे, और इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में ज़रूर हम कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। तो आज हमें तकनीकी सहयोग दिया रतनलाल कटरे जी और अंकित चाकुले, और मैं साथ में युगल किशोर भगत,
0: और मैं आपके साथ तूफान सिंह हरिणखेड़े, और हमारे
2: मैं
0: साथ हमारे डॉक्टर पांसे साहब। पांसे साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर,
0: आपने
2: आपने
0: बहुत
2: मुझे
0: सरल और सजग रूप से जानकारी दिए,
2: जी
0: और इस कार्यक्रम से हम लेते हैं विदा। और इस
1: स्वीकारे
0: कार्यक्रम में प्रस्तुति थी
1: कुंवर विक्रम सर की,
0: इसी के साथ हमारे स्वीकारे,
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
2: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का कार्यक्रम किसानवाणी। इसके अंतर्गत आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8 बजे हैं और अब है वक्त कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम फिल्म संगीत को लेकर मैं हूं आपके साथ, आपकी ध्वनि मित्र ममता कटरे। कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम सुधी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन। श्रोता मित्रों, करते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का आगाज फिल्म सौदागर के इस गीत के साथ, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, संगीत और गीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म सरगम के इस गीत के लिए संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

संगम, आइए सुनते हैं इस फिल्म का तराना लता मंगेशकर की आवाज में। शंकर जयकिशन का संगीत, गीत हसरत जयपुरी का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत अपनी ध्वनि मित्र ममता कटरे के साथ। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए हम सुनते हैं फिल्म रुदाली से। भूपेंद्र हजारिका की आवाज, संगीत भी भूपेंद्र हजारिका का और गीत गुलजार का।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों का फिल्म रोटी में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हुए हैं और अब है वक्त कार्यक्रम पॉप म्यूजिक का। कार्यक्रम का पहला नजराना हम लेकर आए हैं तुलसी कुमार की आवाज में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम पॉप म्यूजिक यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। कुछ ही पल में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की ओर।

0: ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का प्रसारण। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांसद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांसद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे

0: बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि साणद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी।
0: मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है, यानी हर दिन 1.5 करोड़ से ज्यादा। मेरा पक्का विश्वास है कि आप उसे बहुत जल्द हासिल करके रहेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया। उन्होंने कहा कि साणद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर संयोजन और जांच केंद्र, घरेलू चिप निर्माण व्यवस्था मजबूत होने के साथ तकनीकी आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगा और वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति में इससे सुधार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि साणद संयंत्र केवल 27 महीने में पूरा हो गया।
2: आज भारत का तीसरा सेमीकंडक्टर प्लांट चालू हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी को पहला प्लांट चालू किया और 31 मार्च को दूसरा प्लांट चालू किया और आज 4 जुलाई को तीसरा प्लांट। जिस तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 12 प्लांट अप्रूव किए और 12 प्लांट में से 3 में कॉमर्शियल प्रोडक्शन चालू हुआ, आज दुनिया भर में भारत की सेमीकंडक्टर क्षमता पर एक नया विश्वास उठ खड़ा हुआ है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह के औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। ये चिप जापान, अमरीका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है।
0: ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर

0: पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
1: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, लोकतंत्र, सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों

संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खामेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है।

0: भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 बजे पाराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand, Gujarat to strengthen chip manufacturing ecosystem. Prime Minister Modi says, India successfully overcame West Asia crisis through timely decisions, effective diplomacy and prudent management of national resources. Monsoon session of Parliament to be held from 20th of this month to 13th August. India's defence exports reach a record high of over 38,000 crore rupees, says Defence Minister Rajnath Singh. Heavy rain disrupts normal life in many parts of Maharashtra, several rivers in spate, and in men's cricket, India set a target of 191 runs for hosts England in second T20 in Manchester. Vaibhav Suryavanshi becomes youngest debutant in international cricket. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated CG Semi's state-of-the-art outsourced semiconductor assembly and test OSAT plant in Sanand, Gujarat. The event was attended by Union Minister Ashwini Vaishnaw and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel along with global tech leaders. Developed with a massive investment of over 7,500 crore rupees, the advanced facility will have an annual production capacity of up to 5 billion semiconductor chips. Addressing a large gathering, Prime Minister Modi emphasized that this development is the next step in India's massive electronics revolution, which has already established the country as the world's second largest mobile phone manufacturer. He stated that the CG Semi OSAT facility in Sanand will not only strengthen the domestic chip manufacturing ecosystem, but also boost technological self-reliance and elevate India's position in the global semiconductor value chain.
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमी कंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: Lauding the diverse workforce at the plant, the Prime Minister described the complex as a mini India where engineers and professionals from various states are working under one roof.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू अंगुली माल।

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा, द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार राजा विक्रम, संगीतकार सी रामचंद्र के लिए स्त्री दाल में काला, कारीगर नवरंग।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीरजी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

बसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरत व्यास पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

वो नूर की बूंद जो चांद से टूटकर बिखरी थी मेरे वजूद पर, अब तक भीग रहा है जिस्म मेरा उसी में, छाया है धड़कनों में उसी का सुरूर सा। चांद से मिलने चला था, तेरा चेहरा नजर आ गया, कहकशां तेरे कदमों पर बिछाने की ख्वाहिश जो की, सितारों में सिमटा तेरा हुस्न महफिल में छा गया। तेरे लबों की जुम्बिश, तेरी सांसों की हरारत, निगाहों में है मस्ती और अदाओं में शरारत। शोखी तेरे हुस्न की है सबसे जुदा, हर अंदाज लाजवाब है और आंखों में है वफा।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से।

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींचकर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मद भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो। छोड़

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बालाघाट केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब है वक्त सदाबहार फिल्मी गीत का। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत में आपकी ध्वनि मित्र ममता कटरे का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म नौरंग के इस तराने के साथ। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों को धुन दी है सी रामचंद्र ने और गीत लिखा है भरत व्यास ने।

श्रोताओं, सदाबहार फिल्मी गीत कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। एस एन त्रिपाठी का संगीत, भरत व्यास का गीत और फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं मुकेश की आवाज का, सरदार मलिक का संगीत, भरत व्यास का गीत और फिल्म है सारंगा।

श्रोताओं आप आनंद ले रहे हैं गीता दत्त की आवाज का, जिसे संगीत से सजाया है वसंत देसाई ने, गीत लिखा है भरत व्यास ने और फिल्म का नाम है गूंज उठी शहनाई।

श्रोताओं, अभी आपने लुत्फ उठाया फिल्म सती सावित्री के इस तराने का, जिसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर ने। संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा था भरत व्यास ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

साथ ही श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। ध्वनि तरंगों की लहर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। ये एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में

0: 91 runs for England. In reply, England scored 191 runs for 6 in 19 overs. Opting to bat first, India posted 190 runs for the loss of 7 wickets in the allotted 20 overs. Jacob Bethell was declared player of the match. And that's the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र का प्रसारण। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी के बालाघाट केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर अपनी प्रातःकालीन सभा के साथ आपसे होगी पुनः भेंट। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि। जय हिंद।